0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் மியூசிக். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் சிவஸ்தோத்திரம். த டைட்டில் இஸ் சிவ சஹஸ்ர நாமாவளி ஃப்ரம் சிவ ரகசியா, பிரசன்டட் பை ஸ்ரீ சுப்பிரமணியன் சர்மா, சென்னை. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
1: நமஃ சிவாய. ஸ்ரீ சிவரஹஸ்யே பர்காக்யே பஞ்சமாம்சே சத்வாரிம்சோத்யாயே சிவசஹஸ்ரநாமாவலிஹி. தியானம். கைலாசே சுஹிரண்யவிஷ்டரவரே தேவ்யா சமாலிங்கிதம் நந்த்யாதைர்கணபைஹி சதா பரிவ்ருதம் வந்தே சிவம் சுந்தரம். ஓம்கார நிலையாத்மஸ்தாய நமஃ. ஓம்காரார்த்தைகவாசகாய நமஃ. ஓம்காரேஷாக்ருதயே நமஃ. ஓமிதி சப்தக்ருதஸ்துதயே நமஃ. ஓம்காரகுண்டநிலயலிங்கபூஜனபாபஹ்ருதே நமஃ. நமிதாசேஷதேவாதயே நமஃ. நதீபுலினசம்ஸ்திதாய நமஃ. நந்திவாத்யப்ரியாய நமஃ. நித்யாய நமஃ. நாமபாராயணப்ரியாய நமஃ. மகேந்திரநிலயாய நமஃ. மாணினே நமஃ. மானசாந்தர பாபபிதே நமஃ. மயஸ்கராய நமஃ. மகாயோகினே நமஃ. மாயாசக்கர பிரவர்த்தகாய நமஃ. சிவாய நமஃ. சிவதராய நமஃ. சீதாய நமஃ. சீதாம்சு க்ருத பூஷணாய நமஃ. தனுஷே நமஃ. சரகராய நமஃ. த்யாத்ரே நமஃ. தர்மா தர்ம பராயணாய நமஃ. ஆத்மனே நமஃ. ஆதாரியாய நமஃ. ஆலாத்யாய நமஃ. அனங்கசரகண்டனாய நமஃ. ஈஷானாய நமஃ. ஈட்யாய நமஃ. ஈத்ர்யாய நமஃ. இபமஸ்தக சம்ஸ்துதாய நமஃ. உமா சம்ஸ்லிஷ்ட வாமாங்காய நமஃ. உஷீர நர நிருபார்ச்சிதாய நமஃ. உதும்பர ஃபலப்ரீதாய நமஃ. உமாதிசுர பூஜிதாய நமஃ. ரிஜீஷீ க்ருத பூசக்ராய நமஃ. ரிபு பிரமோதனோர்ஜிதாய நமஃ. லிங்கார்ச்சக ஜனப்ரீதாய நமஃ. லிங்கினே நமஃ. லிங்கசமப்ரியாய நமஃ. லிபிப்ரியாய நமஃ. பந்துஹீனாய நமஃ. லீலாக்ருத ஜகத்ரயாய நமஃ. ஐந்திரீ திக்பதி சம்யுக்தாய நமஃ. ஐஸ்வர்யாதி பலப்ரதாய நமஃ. ஔத்தான பாத பூஜ்யாங்க்ரயே நமஃ. ஔமிதி சுரபூஜிதாய நமஃ. கல்யாணாச்சல கோதண்டாய நமஃ. காமிதார்த்த பலப்ரதாய நமஃ. கஸ்தூரி திலக பிரீதாய நமஃ. கற்பூரா பகலேவராய நமஃ. கரந்தம சுத பிரீதாய நமஃ. கல்பாதி பரிவர்ஜிதாய நமஃ. கல்பிதானேக பூதாதயே நமஃ. கலி கல்மஷ நாசனாய நமஃ. கமலாபல சந்நேத்ராய நமஃ. கமலாபதி பூஜிதாய நமஃ. ககோல்க தித்ய வரதாய நமஃ. கண்டிதாராதி மண்டலாய நமஃ. கந்தர்வ கண சுப்ரீதாய நமஃ. கந்ததிருஷே நமஃ. கர்வநாசகாய நமஃ. கங்காதராய நமஃ. கோகணேஷாய நமஃ. கணேஸ்வர புத்திரகாய நமஃ. கதிதாய நமஃ. கதக்னே நமஃ. கந்தினே நமஃ. கந்தமால்ய வரார்ச்சிதாய நமஃ. ககணஸ்தாய நமஃ. கணபதயே நமஃ. ககணாபோக பூஷணாய நமஃ. கண்டாகர்ண பிரியாய நமஃ. கண்டினே நமஃ. கடஜஸ்துதி சுப்ரியாய நமஃ. கோடக பிரியபுத்ராய நமஃ. கர்மகாலாய நமஃ. கணாக்ருதயே நமஃ. கணவாஹனாய நமஃ. கிருதாத்யக்ஷாய நமஃ. கணகோஷாய நமஃ. கடேஸ்வராய நமஃ. கடநாதகர பிரீதாய நமஃ. கடீபூத மஹாகிரயே நமஃ. சந்திரசூடாய நமஃ. சந்திரகராய நமஃ. சந்திரநார்த்ராய நமஃ. சதுஷ்பதாய நமஃ. சமசோத்பேத மத்யஸ்தாய நமஃ. சண்டகோபாய நமஃ. சதுர்முகாய நமஃ. சக்ஷுஸ்ரோத்ர மஹாஹாராய நமஃ. சண்டிகேஸ்வர பிரதாய நமஃ. சேதோ ஜன்மஹராய நமஃ. சண்டாய நமஃ. சாதுர்ஹோத்ர பிரியாய நமஃ. சராய நமஃ. சதுர்முக முகஸ்துத்யாய நமஃ. சதுர்வேதாய நமஃ. சராசராய நமஃ. சண்டபானுகராந்தஸ்தாய நமஃ. சதுர்மூர்த்தி வபுஸ்திதாய நமஃ. சாதிதானேக லோகாதயே நமஃ. சந்தசாம் கணமத்யகாய நமஃ. சத்ரசாமர சோபாட்யாய நமஃ. छन्दोगतिदायकाय नमः, जङ्गमा जङ्गमाकाराय नमः, जगन्नाथाय नमः, जगद्गताय नमः, जह्नुकन्याजटाय नमः, जप्याय नमः, जेत्रे नमः, जत्रवे नमः, जनार्तिघ्ने नमः, जम्भारातये नमः, जनप्रीताय नमः, जनकाय नमः, जनिकोविदाय नमः, जनार्दनार्दनाय नमः, जामिजात्यादिपरिवर्जिताय नमः, झनघ्नाङ्घ्रिजारावाय नमः, झङ्कारोज्झितदुष्क्रियाय नमः, टङ्कप्रियाय नमः, टङ्कृतिकाय नमः, टङ्क्भेदिने नमः, टकारकाय नमः, टादिवर्णप्रियाय नमः, ठान्ताय नमः, डक्कानादप्रियाय नमः, रसाय नमः, डामरीतन्त्रमध्यस्थाय नमः, डमरुध्वनिशोभिताय नमः, डक्काध्वनिकृतानल्पबधिरीकृतदिङ्मुखाय नमः, नकाराय नमः, नणुकोत्तादये नमः, नान्तकृण्णातिमोचकाय नमः, तस्कराय नमः, ताम्रकाय नमः, तार्क्ष्याय नमः, तामसादिगुणोर्जिताय नमः, तरुमूलप्रियाय नमः, ताताय नमः, तमसां नाशकाय नमः, तटाय नमः, स्थानासुरहराय नमः, स्थात्रे नमः, स्थानवे नमः, स्थानप्रियाय नमः, स्थिराय नमः, दात्रे नमः, दानपतये नमः, दान्ताय नमः, दन्तशूकविभूषिताय नमः, दर्शनीयाय नमः, दीनदयाय नमः, दण्डितारातिमण्डलाय नमः, दक्षयज्ञहराय नमः, देवाय नमः, दानवारये नमः, दमोदयाय नमः, दत्तात्रेयप्रियाय नमः, दण्डिने नमः, दाडिमीकुसुमप्रियाय नमः, धात्रे नमः, धनाधिपसखाय नमः, धनधान्यप्रदाय नमः, धनाय नमः, धामप्रियाय नमः, अन्धसाम्नाथाय नमः, धर्मवाहाय नमः, धनुर्धराय नमः, नमस्कारप्रियाय नमः, नाथाय नमः, नमिताशेषदुःखहृते नमः, नन्दिप्रियाय नमः, नर्मसखाय नमः, नर्मदातीरसंस्थिताय नमः, नन्दनाय नमः, नमसामीशाय नमः, नानारूपाय नमः, नदीगताय नमः, नामप्रीताय नमः, नामरूपगुणकर्मविवर्जिताय नमः, पत्तीनां पतये नमः, पार्याय नमः, परमात्मने नमः, परात्पराय नमः, पङ्कजासनपूज्याङ्घ्रये नमः, पद्मनाभवरदाय नमः, पन्नगाधिपसद्धाराय नमः, पशूनां पतिपावकाय नमः, पापग्ने नमः, पण्डिताय नमः, पान्थाय नमः, पादपोन्मथनाय नमः, पराय नमः, पणिने नमः, पणालसन्मौलये नमः, पणिकङ्कणसत्कराय नमः, पणितानेकवेदोक्तये नमः, पणिमाणिक्यभूषिताय नमः, बन्धमोचनकृते नमः, बन्धवे नमः, बन्धुरालकशोभिताय नमः, बलवताम्बलिने नमः, मुख्याय नमः, बलिपुत्रवरप्रदाय नमः, बाणासुरेन्द्रपूज्याङ्घ्रये नमः, बाणलिङ्गाय नमः, बहुप्रदाय नमः, बन्दीकृतागमाय नमः, बालपालकाय नमः, बहुशोभिताय नमः, भवादये नमः, भवग्ने नमः, भव्याय नमः, भवाय नमः, भावपरायणाय नमः, भवहृते नमः, भवदाय नमः, भूताय नमः, भण्डासुरवरप्रदाय नमः, भगाक्षिमथनाय नमः, भर्गाय नमः, भवानीशाय नमः, भयङ्कराय नमः, भङ्गकाराय नमः, भावुकदाय नमः, भस्माभ्यक्ततनवे नमः, भटाय नमः, मयस्कराय नमः, महादेवाय नमः, मायाविने नमः, मानसान्तराय नमः, मायातीताय नमः, मन्मथारये नमः, मधुपाय नमः, मनोन्मनाय नमः, मध्यस्थाय नमः, मधुमांसात्मने नमः, मनोवाचामगोचराय नमः, मण्डिताय नमः, मण्डनाकाराय नमः, मतिदाय नमः, मानपालकाय नमः, मनस्विने नमः, मनुरूपाय नमः, मन्त्रमूर्तये नमः, महाहनवे नमः, यशस्कराय नमः, यन्त्ररूपाय नमः, यमिमानसपावनाय नमः, यमान्तकर्णाय नमः यामिने नमः यजमानाय नमः यदवे नमः रमानाथार्चितपदाय नमः रम्याय नमः रतिविशारदाय नमः रम्भाप्रीताय नमः रसाय नमः रात्रिचराय नमः रावणपूजिताय नमः रङ्गपादाय नमः रन्तिदेवाय नमः रविमण्डलमध्यगाय नमः रतन्तरस्तुत्याय नमः रक्तपाणाय नमः रतपतये नमः रजसे नमः रतात्मकाय नमः लम्बतनवे नमः लाङ्गलिने नमः लोलगण्डकाय नमः ललामसोमलूतादये नमः ललितापूजिताय नमः लवाय नमः वामनाय नमः वायुरूपाय नमः वराहमतनाय नमः वटवे नमः वाक्यजाताय नमः वराय नमः वार्याय नमः वरुणोढ्याय नमः वराश्रयाय नमः वपुषे नमः धराय नमः वर्षवराय नमः वरीयसे नमः वरदाय नमः वराय नमः वसुप्रदाय नमः वसुपतये नमः।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।

0: சிவாய. யூஆர் லிஸ்னிங் டு சைவம் டாட் ஆர்க் ரேடியோஸ் 24/7 ஸ்பிரிச்சுவல் சேனல்ஸ் ஃப்ரம் சைவம் டாட் ஆர்க். ஓம் நம சிவாய.
1: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் தக்ஷிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம் presented by Swami Sri Atmanand Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: तब वो भी विश्रांति खोजता है, शरीर भी विश्रांति चाहता है, इंद्रियां भी विश्रांति चाहते हैं, मन भी विश्रांति चाहता है. तब इस अवस्था में विश्रांति के लिए कहां जाएं? जागृत में जहां भी जाओगे परिश्रमी ही होगा, स्वप्न में तुम जहां भी जाओगे परिश्रम ही होगा. तब परमात्मा की कृपा है कि सुसुप्ति एक ऐसी अवस्था बना दी कि गहरी निद्रा में चला जाता है थकने के बाद. जागृत स्वप्न उपभोगा भोग उत्थ, जागृत भोग स्वप्न भोग से उत्पन्न हुआ हुआ विश्रांति यानी थकान, श्रम थकान, उसकी विश्रांति के लिए विच्छित है तवे. उस थकान को, उस श्रम को हटाने के उद्देश्य से, कम करने के उद्देश्य से, सुसुप्तिम पुरुषे प्राप्ते शरीरम अविरक्षितुम. उस अवस्था में जीवात्मा सुसुप्ति अवस्था में चला जाता है, गहरी निद्रा में जाता है. क्यों जाता है? परिश्रम को कम करने के लिए, थकान मिटाने के लिए. जो थक गया शरीर परिश्रम से, इंद्रिया मन, उसके विश्रांति के लिए गया. अब वो आत्मा सुसुप्ति में चला गया, फिर शरीर की रक्षा कौन करेगा? बोलो. तो परमात्मा की यह व्यवस्था है कि तू जा थोड़े आराम कर ले. तब तक जब तक तू आराम करेगा, तब तक इसकी रक्षा करने का काम ये करेगा. कौन करेगा? प्राण. ये परमात्मा की व्यवस्था है. तू जब तक करना है कर ले ना, तू आराम कर ले जा, ये करेगा. आप लोग भी शिफ्ट चेंज करते हो कि नहीं? या? आप लोग भी तो शिफ्ट चेंज करते हो ना. अब यह आश्चर्य की बात है कि प्राण उस शिफ्ट चेंज नहीं करता है. आत्मा शिफ्ट चेंज कर ले, इंद्रियां शिफ्ट चेंज कर ले, मन कर ले, आराम कर ले वे, लेकिन प्राण जागृत में भी कर्म करता है और स्वप्न में भी, सुसुप्ति में भी, तीनों अवस्था में प्राण कर्म करता रहता है. इसलिए वो क्यों नहीं थकता है? क्योंकि उसमें चेतना नहीं है, क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है, संवेदना नहीं है. संवेदना होती तो वह परिश्रम से थक जाता. वो भी उसमें संवेदना नहीं है, इसलिए वो थकता नहीं. तो लगा हुआ एक बार बना दिया नियम, वो लग गया, ऑटोमेटिक हो गया. वो संवेदना नहीं. वह क्यों जागता रहता है? वह क्यों विश्रांति को प्राप्त नहीं होता? क्योंकि उसके ऊपर बड़े भारी जिम्मेवारी रहती है. क्या जिम्मेवारी है उस प्राण के ऊपर? बोले इंद्रियां भी हराम हो गई, जब खाने को मिले तो सब जग जाते हैं. है थोड़ा रस और पूरी सामने आए तो देखो जुआ कैसे छटपटाता है. ये हराम है, खाने के लिए तो तत्पर है. और शरीर के टिकाने रखने क्या, ये इसको कोई भाने ही नहीं है. शरीर की कोई चिंता नहीं है इस इंद्रियों को. मन को भी वही हालत है, उसको अपना विषय मिलता रहे तो देखो. और लेकिन उसको भी शरीर की चिंता नहीं है. जब अपने आप विश्राम करना होता है तो वो चुपचाप चले जाते हैं सब मिलकर, यूनियन की तरह. यूनियन स्ट्राइक करते हैं कि नहीं? एक एक नहीं, एक ही साथ यूनियन की तरह स्ट्राइक कर देते हैं और चले जाते हैं. माण में जाए शरीर, हमको तो आराम करना है. अरे भाई तुमको आराम करना है, शरीर की रक्षा कौन करेगा, हमको इसकी चिंता नहीं है। अरे मूर्खो तुमको चिंता नहीं, हमको तो चिंता है ना, तो परमात्मा को चिंता है, इसीलिए प्राण की ड्यूटी लगा दिया कि तू इसको टिकाए रखना, ये हरामी जब तक उठकर नहीं आएंगे, हाँ ये तेरी जिम्मेवारी है, ख्याल रखना। तो शरीर मान लो कि पूरे शरीर की मालिक वही प्राण है, जैसे मालिक को ही ज्यादा चिंता है कि मेरे फैक्ट्री को कैसे संबंध चलाना है, लेबर को कोई चिंता नहीं, तो स्ट्राइक में चले जाएंगे, अपने मतलब के लिए हैं ये इंद्रियां तो सब लेबर हैं, है? मान लो प्राण मालिक की तरह है। जागृत स्वप्नोपभोग श्रम विच्छित्ति है तबे

इंद्रियां और अंतकरण ये सब सुसुप्ति में विश्राम के लिए चले जाते हैं, तब शरीर को टिकाने की चिंता परमात्मा को क्यों हुई, प्रकृति को क्यों हुई, या समझ लो कि प्राण को ही क्यों हुई? इसका कारण क्या है? ये इंद्रियां सब आराम चले गए तो शरीर नष्ट हो जाओ और क्या, कह दो इंद्रियों को जब जगे, अरे हमारा गोला कहां गया? बोले तुम हराम हो, कोई एक ही साथ चले गए, तुमने चिंता ही नहीं किया, हम सब जाने के बाद इसका क्या होगा, तुमने चिंता नहीं किया, तो तुम लोग चले गए तो नष्ट हो गया, हम क्या करें? कह देते, जवाब दे देते है? वो भी नहीं चलेगा। बताया यहां ये ध्यान देना, शेष कर्मोपभोगार्थम, बाकी जो बचे हुए कर्म का भोग करना आवश्यक है, और भोग किए बिना ये कर्म समाप्त होंगे नहीं। और इंद्रियां करण सुसुप्ति में जाते ही शरीर नष्ट हो जाएगा, तो बाकी शेष प्रारब्ध, बाकी शेष कर्म, शुभाशुभ कर्म फिर कहां भोगेगा, कब भोगेगा? फिर न जाने कब उसको शरीर मिले, तो फिर जब सुसुप्ति में गए फिर दोबारा पैदा होना पड़ेगा, फिर सुसुप्ति में गया शरीर नष्ट हो गया, फिर दूसरा शरीर पैदा हो, फिर सुसुप्ति से जागे, फिर शरीर जागे तब तक भोग कर लो, फिर भोग से थक जाएंगे, क्योंकि ये तो थकने वाले हैं, ये तो बता ही रहे हैं, इंद्रियां और करण तो थकने वाले ही हैं, कुछ दिन थक जाएंगे, कहेंगे हम आराम करने जाएंगे, तब तक शरीर नष्ट हो जाएगा, तो फिर बाकी भोगने के लिए क्या करोगे? बोले दूसरा शरीर तैयार करो, इससे अच्छा तो जो शरीर पहले बन चुका है कुछ दिन इसी को टिकाओ। ये सब विश्राम करते रहेंगे, आते रहेंगे, भोगते रहेंगे, विश्राम करते रहेंगे, आते रहेंगे, फिर भोगते रहेंगे, फिर विश्राम करने जाएंगे, फिर जग कर आएंगे, इस शरीर में रहकर फिर भोग को भोगेंगे, फिर थकेंगे, जाएंगे, ये काफी दिन चलेगा। शेष कर्मोपभोगार्थम प्राणश्चरति केवलम, जीवात्मा चिदाभास इंद्रियों के सहित करणों के सहित जब विश्राम को गया, जगने के बाद फिर इसको अपने कर्मों का फल भोगना है, और इस शरीर के बिना कर्मों का फल भोग नहीं पाएगा, इसलिए इसको टिकाए रखना बहुत जरूरी है। ये मानते हुए वो प्राण इस शरीर को टिकाए रखने के लिए सुसुप्ति में जीव सहित करण जाने पर भी प्राण संचरित करता रहता है, शरीर को टिकाए रखता है, फिर ये जीवात्मा करणों के साथ जब जगता है इसी शरीर में आता है, फिर और कर्मों के फलों को भोगता है, फिर थक जाता है, वो चला जाता है विश्राम करने, तब तक प्राण इसकी रक्षा करता है, फिर ये उत्थान को प्राप्त होते हैं, फिर इन्हीं गोलोकों में बैठते हैं, अपने शुभाशुभ कर्म को भोगते हैं, फिर थक जाते हैं, फिर चले जाते हैं। प्राण का काम है कि इसको टिकाए रखना, उसके लिए वह संचरित करता रहता है, लेकिन इतनी मात्रा से उसको आत्मा मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि ज्ञान नहीं है, संवेदना नहीं है, चेतना नहीं है उनमें। ये बात अलग है कि चेतना न होने पर भी जीवन के लिए बड़े उपकारक है, बड़े काम की चीज है, शरीर को टिकाए रखता है, अन्न को पचाए रखता है, रक्त का संचार करता रहता है। प्राणस्य तत्र चैतन्यम करणो परमे, यदि प्राणे व्यप्रियमाणे तो करणो परम कथम, साम्राज्य रणोद्युक्ति विरमन्ति न सैनिकाः। दृष्टांत दिया लौकिक, प्राण यदि वास्तव में आत्मा होता तब प्राण के चलते, प्राण के रहते, प्राण के मौजूद काम करते हुए फिर इंद्रियां और अंतकरण विश्राम नहीं कर पाता। यदि प्राण ही मालिक होता, प्राण ही आत्मा होता, तब प्राण के कर्म करते रहने पर इंद्रियां और अंतकरण विश्राम को प्राप्त नहीं कर पाते।

0: उदाहरण दिया, आजकल तो ऐसा नहीं माना जाता, लेकिन उदाहरण दिया सुरेश्वराचार्य जी ने, जैसे सम्राजी रणोद्युक्ते विरमंती न सैनिका। राजा रणभूमि में डटा रहे, युद्ध में लगे रहे, और सारे के सारे सैनिक कहें कि तुम लड़ना हो तो लड़ लो, हम तो आराम करने जाएंगे, ये संभव होगा है? राजा युद्ध भूमि में खटा रहे, डटा रहे, और सैनिक कहे कि हम थक गए हैं, आराम करने जाएंगे, ऐसा नियम है क्या कहीं है? प्राण क्या हुआ यहां, उपमा क्या दी? प्राण मान लो कि सम्राट है ना, और वास्तव में प्राण सम्राट होता, सम्राट का अर्थ यहां ले लेना आत्मा, वास्तव में प्राण आत्मा ही होता, परमात्मा ही होता, तब तो प्राण क्रियाशील होते हुए इंद्रियां और करण, अंतःकरण ये विश्राम नहीं कर पाते। जैसे राजा काम लड़ते हुए, राजा यदि युद्ध भूमि में लड़ रहा हो तो सेना विश्राम नहीं कर पाते, सेना को आराम करने को कब मिलता है? तो या तो राजा आराम कर रहा हो तो वो भी आराम करे, तो फिर राजा कौन होगा? बोले प्राण को राजा तो नहीं मान सकते, तो राजा कोई और होगा। सुषुप्ति अवस्था में इंद्रियां सब काम क्यों करती हैं? नहीं, सुषुप्ति अवस्था में इंद्रियां क्यों विश्राम करती हैं, अंतःकरण क्यों विश्राम करता है, प्राण क्यों काम करता है? तो कई बार होता है कि राजा आराम भी कर ले तो सेनापति के साथ युद्ध होता रहता है, सेनापति लड़ता रहता है, राजा आराम करेगा सेनापति लड़ेगा, सेनापति के साथ और सैनिक लड़ेंगे, कई बार ऐसा होता है। क्योंकि इन सब का जो मालिक है सम्राट, तो आत्मा इनसे भिन्न है, वो आराम करने चला गया, इसलिए ये इंद्रियां भी सैनिक भी आराम करने चले गए, युद्ध की विश्रांति हुई। तब तक शरीर को कौन टिकाएगा? बोले प्राण टिकाएगा, बस खत्म होगी बात। तो आत्मा माने प्राण को सम्राट की तरह नहीं लेना चाहिए, आत्मा की जगह नहीं लेनी चाहिए। इस भाव से यह सिद्ध हो गया कि भोग में कभी भी सुख नहीं है, इस दृष्टांत से भोग से उपरम में ही सुख है। तृष्णाक्षय सुख से इते कलम नारहंती षोड़शे, शास्त्रों में लिखा है तृष्णा समस्त तृष्णाओं का क्षय होने पर जो सुख की प्राप्ति होती है, उस सुख के जगह ये विषय भोग से प्राप्त होने वाला सुख तो एक कला भी नहीं है, 16 कला में से एक कला भी नहीं है, है? 16वीं कला भी नहीं है विषय भोग से प्राप्त होने वाला सुख। किस सुख के सामने? तृष्णा क्षय जन्य सुख के सामने भोग जन्य जो सुख है वह एक कला के बराबर भी नहीं है। इसलिए तो कहा है ना, न सुखम देवराज्य से न सुखम चक्रवर्ती ना, यत सुखम वीतरागस्य मुने रेकांतवासिना सेविना। जो सुख चक्रवर्ती को है, जो सुख सम्राट को है, जो सुख इंद्र को है, इन लोगों को होने वाला सुख तो उस योगी को चित्तवृत्ति निरोध करके विश्रांति को प्राप्त हुआ हुआ जो योगी है, तृष्णा रहित एकाद सेवन करने वाला जो योगी है, उस योगी को जो सुख प्राप्त होता है उसकी 16वीं कला के बराबर भी नहीं है इंद्र का सुख, चक्रवर्ती सम्राट का सुख। तो किस भ्रांति में पड़े हो संसार के लोगों, इन वाक्यों से यही सिद्ध हो रहा है। लेकिन इन संसारियों को कौन उपदेश करने जाएगा? ये है ये उपदेश इन संसारियों को, भोग विलास में लगे हुएओं को ये उपदेश सुनाने कौन जाएगा भाई? महात्मा लोग एक दृष्टांत देते हैं। एक राजा था, बड़ा विलासी था, उसको अपने राज्य की कोई चिंता ही नहीं थी, उसको भोग ही चाहिए, लंपट था, विषय आसक्त था। और राजा के विषय आसक्ति के चलते राष्ट्र नष्ट हुए हुए कई उदाहरण हैं, इतिहास है कि नहीं हमारे, राजाओं के भोग विलास में चलते राज्य की व्यवस्था खत्म हुई और राष्ट्र चौपट हुआ, प्रजा दुखी हुए, विप्लव हुआ है, अशांति हुई है। ऐसे तो कई इतिहास हमारे भारतीय इतिहास को पढ़ने में मिलता है। तो एक महात्मा थे, उनके मन में यह आ गए कि इस राजा को थोड़ा सा सावधान तो करना चाहिए। तो कहते हैं कि महात्मा भी बहुत उठपटांग होते हैं कभी कभी, और उनकी उठपटांगी ही बहुत काम करती है, बड़ा हितकारी हो जाता है। तो कहते हैं कि राजा जिस समय विलास में, भोग विलास में लगा हुआ था, रात्रि के समय में सुरा और सुंदरी के मस्ती में लगा हुआ था, महात्मा चले गए उसके छत में जाकर जोर जोर से नाचने लगे, उछलने लगे, कूदने लगे, इधर से उधर, उधर से उधर दौड़ने लगे। और स्वाभाविक ही है कि नीचे भोग और विलास में लगे हुए को विक्षेप होना स्वाभाविक ही था। राजा को बड़ा विक्षेप होने लगा, पता लगा कि छत में कौन दौड़ रहा है, कौन हल्ला कर रहा है, कौन आवाज कर रहा है, पता लगाओ। तो उसका मंत्री गया, पता लगाया, थे फक्कड़ महात्मा, लगौटी लगाया है, राख लपेट लिया है, है? कुंभ मेले में देखा है ना तुम लोगों ने, हरिद्वार का टीवी में तो देखा, वहां नहीं गए वो तो, कैसे कैसे पकड़ महात्मा, लंगोटी भी नहीं है, राग लपेट लिया है और नाच रहे हर हर महादेव, क्या मस्ती है उनकी। उसी तो छत में दिगंबर और एकदम उछल रहा है, कूद रहा है। तो यहां क्यों उछल रहा है, क्यों कूद रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर क्यों दौड़ रहा है? तो महात्मा ने कहा कि मेरी कमंडलू खो गई, उसको खोज रहा हूं। तो राजा ने पूछा, कमंडलू खो गई और मेरे छत में? जहां खो गई है वहीं खोजना चाहिए मूर्ख, और मेरे छत में? तेरा कमंडलू का क्या संबंध है, तू कब आया था यहां? कभी नहीं आया था। फिर तो जहां कमंडलू खो गई है वहीं खोज, यहां क्यों? बोले ठीक है, तुम मुझे तो कह रहे हो कि यहां कमंडलू खोजने से नहीं मिल सकता है, और तुम क्या कर रहे हो? तुम भी तो वही काम कर रहे हो, तुम विषयों में सुख खोज रहे हो तो मिलेगा, और विषयों में सुख मिलता है तो तुम्हारे छत में मेरी कमंडलू क्यों नहीं मिल सकती है? विषयों में सुख मिल सकता है तो फिर तुम्हारे छत में मेरे कमंडलू क्यों नहीं मिल सकता है? और यदि तुम्हारे छत में मेरा कमंडलू नहीं मिल सकता है तो यह निश्चय समझ लेना कि इन विषयों में तुम्हें भी सुख नहीं मिलेगा। यह तो सुख की भ्रांति है, यह भ्रांति टूटना बहुत जरूरी है। फिर मारा सुख कहां है लेव जी, और ये तू बता, मेरा कमंडलू कहां मिलेगा, तू ही बता। बोले तुम्हारी कमंडलू जहां तुम बैठे थे वहां जहां छूटा है वहीं आसपास में खोज लो, नदी के किनारे में कहीं छूट गया हो, है? तुम सन्यासी हो, नदी किनारे घूमते हो, वहीं कहीं छूटा हो। बोले वो तो मुझे भी पता है कि नदी किनारे में मिलेगा, फिर यहां क्यों खोजने आए? बोले मूर्ख, तुझे पता नहीं है ना कि सुख आनंद आत्मा में मिलेगा, कहीं और जगह मिलेगा, वो बताने के लिए आया हूं। इन विषयों में नहीं मिलने वाला है सुख। न सुखम देवराजस्य न सुखम चक्रवर्तिना यत सुखम वीतरागस्य मुनि रेकांतस्य विनः तस्मान्न करणस्वामी प्राणो भवति मर्हति मनस प्रेरके पुंसि विरते विरमस्त्यतः करणानि समस्तानि तेषां स्वामी ततः पुमान। तब फिर क्या मन आत्मा है? बोले आत्मा भी मन आत्मा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मन क्षणिक है और आत्मा क्षणिक नहीं हो सकता है, बुद्धि क्षणिक है वह भी आत्मा नहीं हो सकता है, और सभी इंद्रियों का समूह भी आत्मा नहीं हो सकता है। क्योंकि संघात यदि आत्मा मानते हैं तो एक इंद्रिय के नष्ट होने पर और सब निष्क्रिय हो जाएंगे। आपके गाड़ी में सब कुछ ठीक है और एक टायर यदि खत्म हो गया, पंचर हो गया, तो सारे गाड़ी बेकार चला गया कि नहीं? सब मिलकर रही तो गाड़ी गाड़ी बना हुआ है, और एक ब्रेक खत्म हो गया तो सारा गाड़ी बेकार हो गया। ये अवयवों से बना हुआ, मिलकर संघात से जो बना हुआ होता है, उसमें एक की कमी से सब कुछ निष्क्रिय हो जाते हैं। सारे इंद्रियों और करणों को मिलाकर आत्मा, समूह रूप आत्मा मानोगे तो उसमें से एक इंद्रियों के विकल होने पर और सब कुछ विकल बेकार हो जाएंगे, इसलिए समूह को भी आत्मा नहीं मान सकते। येषां संघात आत्मा चेद एक देशे पृथक्कृते न चैतन्यं प्रसज्येत संघाता भावतस्तदा। देहस्यांतर्गतोऽप्यात्मा व्याप्य एवेति बुध्यते अणु प्रमाण चेदेश व्यापनुयान्नाखिलं वपु। तब फिर आत्मा को क्या मानना चाहिए, कैसा मानना चाहिए? कहीं विचार होने पर अनेक मतभेद खड़े हो गए। किसी ने कहा कि आत्मा बिल्कुल अणु है, अति सूक्ष्म है। संघात स्थूल हैं, स्थूल आत्मा नहीं तो अति सूक्ष्म आत्मा है। तो कहा कि सूक्ष्म अणु भी आत्मा नहीं हो सकता है। देह परिमाण का आत्मा है, जैसे कि कुछ लोगों ने माना है, देह परिमाण भी आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि बालक था उस समय उस परिमाण का आत्मा था, यौवन हो गया तो देह बड़ा हो गया, तो फिर वह आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त नहीं होगा। तो क्या फिर आत्मा भी यौवन के साहित बढ़ता जाएगा, फिर उसके बाद बूढ़ा हो गया तो आत्मा भी बूढ़ा होने लगेगा, और मरने के बाद उसको कर्म अनुसार चींटी में जाना हो तो फिर कैसा आत्मा हो, फिर हाथी में जाना हो? तो देह परिमाण, आत्मा का परिमाण आकार फिक्स नहीं मानना चाहिए। जैसे कि किसी लोगों ने कहा जितना बड़ा शरीर है उतना ही आत्मा है, इस तरह हम मानते। ऐसे हमको किसने सुनाया है, आजकल एक धर्म चला हुआ है और बड़ा उनकी प्रसिद्धि है, बहुत जगह है, वो लोग कहते हैं कि स्त्री एक बार स्त्री हो गई तो उस स्त्री आत्मा स्त्री शरीर छोड़ने पर पुरुष शरीर प्राप्त नहीं कर सकता। पुरुष एक बार पुरुष हो गया तो उस पुरुष आत्मा पुरुष शरीर छोड़कर स्त्री शरीर को प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य एक बार मनुष्य हो गया तो मनुष्य शरीर छोड़कर पशुआदि योनि को प्राप्त नहीं कर सकता। पशु एक बार पशु हो गया उस शरीर को छोड़ने के बाद मनुष्य आदि शरीर को प्राप्त नहीं कर सकता। ये शत प्रतिशत मूर्खता का ही लक्षण है, ये शास्त्र का अध्ययन न करने का प्रतिफलन है कि आत्मा कोई ईंट बनाने के मशीन में सांचे में बनाया गया आत्मा नहीं है। क्योंकि शरीर में एक बार आत्मा बन गया तो वही शरीर मिले तो फिट बैठे, और वो शरीर न मिले तो फिट न बैठे। ये तो मूर्खता का लक्षण है, ये आत्मा पर विचार न करने वालों की ऐसी अभिव्यक्ति है। ये सारे के सारे विभेद किसके चलते हैं? तो एषमेषा महामाया बाधीनाम अपि मोहिनी यत् साक्षात् कृते सद्यो लीयते च सदा शिव। ये तो केवल भगवान शिव के साक्षात्कार जब तक नहीं करोगे तब तक इस प्रकार के बात विवाद और मतवाद संप्रदाय होते रहेंगे, आत्मा के बारे में कोई निश्चय नहीं कर पाएगा। ज्ञानमूर्ति दक्षिणामूर्ति शिव की कृपा होगी तब फिर वह माया मोहिनी माया शक्ति विलास कल्पित महा व्यामोह संहारिणे, उस व्यामोह का संहार करने की क्षमता केवल एकमात्र शिव में है। उनकी कृपा से ही माया शक्ति का विलास नाश होगा, तप और भ्रांति नष्ट हो जाएगी, तो यथार्थ आत्मा का अपरोक्ष हो सकता है। ऐसे कृपालु गुरु मूर्ति को हम नमस्कार करते हैं और आगे क्या कहेंगे कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम
1: हरिः ओम।
2: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ஓம் நம சிவாய.
1: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் shaivam.org, தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஹிந்தி ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் நாயன்மார் புராணம். தி டைட்டில் இஸ் கணம்புல்ல நாயனார் புராணம், பிரசன்டட் பை ஸ்ரீ சிங்கப்பூர் சங்கர நாராயணன். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
3: ஓம் நம சிவாய். பக்தோ, அபி ஹம் ஓர் ஏக் தக்ஷிண பாரதிய சந்த் யா நாயன்மார் கி கஹானி சுனேங்கே, ஜின்கா நாம் கண்ணம் புல்லர் ஹை. பெரிய புராணம் மே தீன் ஐசே பக்தோ கா உல்லேக் மில்தா ஹை ஜோ சிவ மந்திர் மே தீப் சேவா கே லியே சமர்ப்பித் ஹோ கயே தே, நமிநந்தி அடிகல், கலியர் ஔர் கண்ணம் புல்லர். பிரஸ்துத் கதா கண்ணம் புல்லர் கே அத்புத் பக்திபாவ் ஔர் தியாக் கி கதா ஹை. வடவேலா நதி கே தக்ஷிணி தட் பர் ஸ்தித் ஹை இருகுவேரூர் நாமக் ஸ்தல். யான் ஏக் சக்திசாலி தனாடே பரிவார் மே கண்ணம் புல்லர் கா ஜன்ம ஹுவா. வே மான்தே தே கி சிவ சரண் சேவா ஹி வாஸ்தவிக் தன் ஹை, சேஷ் சப் நஸ்வர் ஹை. அப்னா ஜீவன் லக்ஷ்ய ஈஷ் கே மந்திர் மே தீப் ஜலானா ஔர் ஜக்மக் ஜோதி கா விஸ்தார் கர்னா ஹி மான்கர் யே இஸ் காரிய மே பூரி லகன் சே லக் ரஹே லக் கயே. ஏக் பார் கண்ணம் புல்லர் தில்லை சிதம்பரம் பஹுஞ்சே. வஹாம் வே திருப்புலீஸ்வர் கே மந்திர் மே தீப் ஜலானே கே காரிய மே ரத் ஹோ கயே. அபார் ஸ்னேஹ் திருட ஆஸ்தாயுக்த பக்தி பாவனா சே இன்ஹோனே அப்னா சர்வஸ்வ தீப் சேவா மே அர்ப்பித் கர் தியா. ஜப் சபி ஆர்த்திக் சாதன் சமாப்த் ஹோ கயா தோ காஸ் காட்னே கே காம் மே ஜுட் கயே. உஸ் காஸ் கோ பேச்கர் பிராப்த் கி ஹுயி தன்ராஷி சே வே சிதம்பரம் கே பவித்ர தீப் கி ஜோதி ஜலாதே. ஏக் பார் காஸ் காட்னே கே பாத் வே உஸ் பாஜார் மே பேச்னே கயே பர் கோயி கிராஹக் நஹீ மிலா தோ உஸி காஸ் கோ ஏக் வர்த்திகா கா ஆகார் தேகர் உசே ஏக் தீப் ஜோதி கே சமான் சிவ மந்திர் மே ஜலானே லகே. பர் தேவாலய கே மந்திர் கே தீபக் ஜலானே கே லியே காஸ் பர்யாப்த் ந தா. உசி க்ஷண் ஏக் அத்புத் விசார் உன்கே ஹ்ருதய மே ஜாகிருத் ஹுவா ஔர் உன்ஹோனே அப்னே கேஷ் பாஷ் சே ஹி தீபக் கி வர்த்திகா கே ரூப் மே ஜலா டாலா. உன்கே இஸ் அத்புத் காரி சே உன்கே சமஸ்த கர்ம பந்தன் வினஷ்ட் ஹோ கயே ஔர் உன்ஹே சிவலோக் மே ஸ்தான் மிலா. ஓம் நம சிவாய்.
4: ஓம் நம சிவாய்.
5: You are listening to shaivam.org radio, the 24/7 spiritual channel from shaivam.org.
4: Om Namah Shivaya.

0: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், த நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் சிவானந்த லஹரி, பிரசன்டட் பாய் சுவாமி ஸ்ரீ ஆத்மானந்த கிரிஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
1: அஷ்டாங்க யோக சாதனா கருக்கு சித்த விருத்தி நிரோத நீ கர் சகே தோ உஸ்கே விகல்ப கே ரூப் மே மஹர்ஷி பதஞ்சலி நே ஈஸ்வர பிரணிதானாத் வா யே கர் தியா, யே தூஸ்ர சூத்ர கா நிர்மாண் கர் தியா. வா மானே விகல்ப, சித்த விருத்தி நிரோத கரோ தோ சமாதி கா ஆனந்த கா அனுபவ ஹோகா, और चित्तवृत्ति निरोध नहीं कर सके तो इसका विकल्प है ईश्वर प्रणिधान. और तुम ईश्वर प्रणिधान करोगे तो ईश्वर कृपा से तुम्हें वो समाधि चित्तवृत्ति निरोध के बिना भी समाधि की अनुभूति होगी. ईश्वर प्रणिधान अथवा ईश्वर प्रणिधान क्या उपाय क्या है महाराज? तो महर्षि ने, पतंजलि ने ईश्वर प्रणिधान के लिए प्रक्रिया बता दी. तज्जप तदर्थ भावना, उसके नाम का सतत जप करो और नामी का स्मरण करो. देखो, नाम का जप करो, नामी का स्मरण करो. तज्जप तदर्थ भावना, तो जप के लिए किस नाम का प्रयोग करें महाराज? तो वह महर्षि पतंजलि ने कह दिया प्रणव का जप करो, ओमकार का जप करो, एकाक्षर ही प्रणव. क्योंकि प्रणव को मंडूक उपनिषद में परमात्मा का अति प्रिय नाम के रूप में प्रस्तुत किया. ओमकार को मंडूक उपनिषद में परमात्मा का अति प्रिय नाम है, निर्दिष्टतमम प्रियतमम, सबसे नजदीक का नाम. जो सबसे प्रिय होता है वही ना नजदीक का होता है, है ना? कभी कभी घर में व्यवहार में नाम रखा जाता है, मां बाप या घर के कुटुंबी और बंधुजन कुछ नाम रख देते हैं. नामकरण के दिन में तो जो राशि से नाम जुड़ा, राशि से जो मिल गया, उसी अक्षर के आधार पर नामकरण कर देते हैं. लेकिन बहुत प्यार से पुकारने वाला नाम घर में ज्यादा प्रयोग होता है. मां भी बहुत प्यार करती है तो कुछ और नाम से पुकारने लग जाती है. कोई व्यक्ति जरा मोटा हो तो घर में ए मोटे बोल देते हैं. घर का बाप भी बोलता है कि ए मोटे इधर आओ, मां भी बोलती है कि ए मोटे इधर आओ. मां जो प्यार से बोलती है मोटे, लेकिन वो उसको प्रिय नहीं है. बड़े होने के बाद यार दोस्तों के बीच में मां फिर कह दे मोटे, उसको अच्छा लगेगा? तो कोई पूछेगा कि अरे भाई तुझे मोटे क्यों कहा किसी ने? बोले मेरी मां बड़े प्यार से कहती थी बचपन में, वही आदत पड़ी है इसलिए वही बोल रही है. समझाना पड़ेगा कि नहीं? तो निर्दिष्टतम अति प्रिय नाम है. प्रणव का जप करो, तज्जप तदर्थ भावना. परमात्मा का यानी शिव का सबसे प्रिय नाम ओम है. यही वह कुद्दाली है, वही ये फावड़ा है जो तुम परमात्मा के आवरण उसको हटाकर निरावृत्त कर सकते हो. तो वेदांत में और भक्ति में यह अंतर है. वेदांत में उस आवरण को हटाने की क्षमता सिर्फ अखंडाकार वृत्ति में है. अखंडाकार वृत्ति के बिना उस आवरण को तुम नहीं हटा सकते हो. तो भक्ति में सतत प्रणव जप, शिव नाम मंत्र ही उसी में इतनी क्षमता है कि वह उस आवरण को हटा सकता है। दिव्याश्रितम भुजग भूषण मुद्वहंती, कल इसकी थोड़ी व्याख्या तो की थी हमने, एक सामान्य शास्त्र में या सामान्य लोक भाषा में ये प्रचलन है, जहां दिव्य रत्न रहते हैं वहां सर्प का निवास होता है, ये कहा जाता है। इसलिए कोई धन के प्रति आसक्त हुआ हुआ कोई धनिक व्यक्ति सेठ बोले कि वो धन के प्रति आसक्ति दिखाता है तो लोग कह देते मरने के बाद सर्प बनेगा ये, ऐसा कह दिया जाता है व्यवहार में, है ना। पैसे के लिए जो मरीमेट करता है वो तो व्यवहार में कह देते ये इतना मरता है पैसे के लिए संपत्ति के लिए, ये जरूर मरने के बाद सर्प बनेगा ये, क्योंकि संपदा और सर्प की राशि एक ही है भाई, और ये मान्यता है। दिव्याश्रितम भुजग भूषण उद्वहंती, भुजग भूषण ये भुजग का माने सर्प का भूषण क्या है, मणि। तो हम जीवात्मा तमाम जीवात्मा रूपी सर्प का भूषण क्या है, मणि। मणि क्या है तो शिव, शिव ही जीव का भूषण है, जैसे मणि सर्प का भूषण है वैसे ही शिव परमात्मा जीव का भूषण है। क्या है वो, ये पादार पद्मन मिहते शिवते कृतार्थ। जब वो रत्न प्राप्त होता है तब शिव रत्न प्राप्त होता है तब जीव कृतार्थ हो जाता है। इस बात को अन्य अलंकार के माध्यम से अनुप्रास अलंकार के माध्यम से, शब्दालंकार अनुप्रास अलंकार के माध्यम से शंकराचार्य जी ये दूसरा वसंत तिलका छंद के में एक श्लोक की रचना करते हैं। यहां दूसरा भाव है, भूधारताम उदवहत यदपेक्षया श्रीर भूदार एव किमत सुमते लवस्व केदार मा कलित मुक्ति महौषधीना पादारविंद भजनम परमेश्वरस्य। अनुप्रास शब्दालंकार अनुप्रास, भूदार भूदार केदार पादार, यही तो छंद के जो है अनुप्रास है, भूदार पादार केदार, ये देख लो ऐसा शब्द प्रयोग होता है तो उसको अनुप्रास अलंकार बोलते हैं, शब्दालंकार अनुप्रास बोलते हैं। इसका अर्थ क्या है, भूदारताम उदवहत यद अपेक्षया श्री भूधार, श्री भूदार किसके लिए कहा, श्री भूधार विष्णु के लिए, भगवान विष्णु के लिए कह रहे हैं। भगवान विष्णु कैसे हैं, श्री और भू दारा वाले हैं, दारा माने पत्नी, संस्कृत में पत्नी को क्या बोलते हैं, दार। तो श्रीदार भूदार दो पत्नी वाले हैं भगवान विष्णु, तो आप विष्णु क्यों नहीं हो पाए है? एक पत्नी हो गए ना इसीलिए आप एक पत्नी हो गए, खाली श्रीदार हो गए आप, है ना, संपत्ति तो है भूधार नहीं है, या फिर भूधार हो गए, फ्लैट तो जैसे तैसे मां बाप ने बना के रख दिया था, पैसा नहीं कमा पाए। हाँ सूचक भाई भूधार तो पिता से मिल गया होगा आपको, है ना, फ्लैट पिताजी का खरीदा हुआ है कि अपना खरीदा है? अपना है तो आप भूधारा है ना, भूधारा तो हो गए, श्रीधारा नहीं हुए। संपत्ति है, पैसों छे मने आपो है तो भूधारा श्रीधारा तो वही कहा गया। श्री भूधारा क्या किया उन्होंने? श्री भूधारा ने है श्री लक्ष्मी और भू पृथ्वी दो धारा वाले भगवान विष्णु ने क्या किया? भूधारताम उदवहत, भू का उद्धार किया। भूधार माने पृथ्वी, भू धार माने बराहा, भूधार माने बराहा सुअर। सुअर का काम क्या है? भू उदार, पृथ्वी का उदार करते हुए चलता है, उधेड़ता है वो, उधेड़ना, हिंदी में उधेड़ना बोलते हैं ना, पृथ्वी को चीरता हुआ चलता है ना, वो सूंड से पृथ्वी को चीरता हुआ चलता है, उसको भू उधेड़ना बोलते हैं हिंदी में, उधार बोलते हैं संस्कृत में। भू उदार ताम यानी बराहा रूप धारण किया। किसने? श्री भूधारण ने भूदारता का रूप धारण किया। किसके लिए महाराज? ऐसे शब्द क्यों प्रयोग कर रहे हो? यद अपेक्षा, जिसकी अपेक्षा से भगवान विष्णु ने बराहा का रूप धारण किया। क्यों धारण किया, करना पड़ा बराहा का रूप? तो दो प्रसंगों में भगवान विष्णु ने बराह का रूप धारण करना पड़ा। दो जगह ये प्रसंग आता है। एक तो हिरण्याक्ष ने पृथ्वी पाताल में ले गया, तो सारे सृष्टि का विस्तार करने का जो आधार है धरती, वो धरती ही नहीं है, तो सृष्टि का विस्तार कहां करे? तो भू आधार के बिना सृष्टि कहां से करेंगे ब्रह्मा जी? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज तुम सृष्टि का विस्तार करो तो कहते हो, लेकिन सृष्टि का विस्तार करूं कहां, पृथ्वी तो है ही नहीं, इसलिए मैं कमल के पत्ते में रह रहा हूं। पृथ्वी होती तो पृथ्वी में रहता, पृथ्वी तो है ही नहीं है, इसलिए मैं कमल के पत्ते में रह रहा हूं। देख लो, बोले पृथ्वी कहां गई? बोले हिरण्याक्ष ले गया पृथ्वी को, हिरण्याक्ष ले गया पाताल में। तो जब तक तुम उस पृथ्वी को पाताल से लाकर यहां प्रतिष्ठापित नहीं करोगे, तब तक मैं सृष्टि का विस्तार नहीं कर सकता महाराज। तो अच्छा भाई, पृथ्वी को मैं ला देता हूं। तो ब्रह्म का रूप धारण किया और गए पाताल में, और हिरण्याक्ष से लड़ाई करके उसको मार के पृथ्वी को लाकर स्थापित की। उसके बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि का क्रम आरंभ किया, मानस सृष्टि, तब सनत कुमारों को सबसे पहले उत्पन्न किया, नारद जी को उत्पन्न किया, सनत कुमारों को उत्पन्न किया। सनत कुमारों ने कहा कि महाराज हमारा नाम और काम बताओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम हमेशा कभी भी बूढ़े न होने के कारण तुम्हारा नाम कुमार है, मेरी आशीर्वाद, मैं कृपा, मैं आशीर्वाद देता हूं तुम कभी बूढ़े न होगे, इसलिए तुम कुमार रहोगे। काम क्या करना है हमने? बोले भगवान की आज्ञा है सृष्टि का विस्तार करो, तो तुम लोग सृष्टि विस्तार में लग जाओ। सनत कुमारों ने कहा कि नहीं बाबा, हम ये प्रपंच में पढ़ने वाले नहीं हैं। ये भागवत का प्रसंग है, हम ये प्रपंच में नहीं पढ़ेंगे। तो वो चल पड़े लंगोटी लगाकर। तो ब्रह्मा जी को आ गया गुस्सा, मेरा बेटा, मेरे बच्चे और मेरी बात नहीं मानते हो। तो उनके जाने के बाद ब्रह्मा जी को जो गुस्सा आया, उससे फिर यहां से एक पानी का बूंद निकला, पसीना निकला, और जमीन में पड़ते ही बच्चे का रूप धारण करके जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा ब्रह्मा जी से, मेरा नाम बताओ और मेरा काम बताओ, मुझे क्यों पैदा किया है, काम बताओ, मेरा नाम क्या है, नाम बताओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तू पैदा होते ही रोने लग गया, इसलिए तेरा नाम रुद्र, जा काम क्या करें। बोले सृष्टि का विस्तार करो, भगवान की आज्ञा है, सृष्टि करना है, तुम मदद करो, सृष्टि विस्तार करो। बोले ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, बस रुद्र सृष्टि शुरू कर दिए तो सब है? रुदति रोदयति इति रुद्र है? खुद भी रोए दूसरों को भी रुलावे रुद्र। तो जहां गुस्से से पैदा हुआ है वो सृष्टि कैसे होगी, है ना? पूरे रुद्र सृष्टि मारो काटो लूटो। तो भगवान विष्णु ने कहा कि हे ब्रह्मा, ऐसी सृष्टि करने के लिए तुझे नहीं कहा था, ये क्या सृष्टि कर दी, बंद करो ये। तब नारद जी ने रुद्र को, माने ब्रह्मा जी ने रुद्र को बुलाया, हे बेटा इधर आ। बोले हम पिताजी, ये कैसी सृष्टि कर दी तुमने। बोले हम जैसा जानते थे वैसे कर दी, बंद करो ऐसी सृष्टि, परमात्मा को मंजूर नहीं है, फिर हम क्या करें। तो बस जा राख लपेट के हिमालय में। बोले जो आ गया। तो रुद्र चले गए हिमालय। अब ब्रह्मा जी को चिंता हुई कि दो दो बार सृष्टि की, सनत कुमार भाग गए, रुद्र भी गया तपस्या करने, अब मैं कैसे सृष्टि का विस्तार करूं, ये चिंता में लग गए ब्रह्मा जी, तो शरीर फट गया। भागवत सुनी है ना तुमने, शरीर फट गया। तो बाएं भाग से सतरूपा, दाहिने भाग से मनु, फिर वहां से मनु और सतरूपा के माध्यम से यह युग्म सृष्टि का आरंभ हुआ। तो तब से जो पैदा हुए सब मनुष्य हो गए, है ना? तो प्रसंग वहां भूधारता की, विष्णु ने वराह रूप धारण क्यों की, सृष्टि विस्तार करने के लिए आधार चाहिए था, उसको लाने के लिए वराह का रूप धारण करना पड़ा। दूसरे बार फिर विष्णु ने वराह का रूप धारण किया, कब, जब ब्रह्मा और विष्णु दोनों के आपस में विवाद हो गया। शिव पुराण का प्रसंग पहले सुनाया, विष्णु भागवत का प्रसंग, अब शिव पुराण का प्रसंग। किस बात को लेकर कि अहम ज्येष्ठा अहम श्रेष्ठा, मैं तेरे से बड़ा हूं, तू मेरे से छोटा है, तो छोटा होने के कारण पहले मुझे अभिवादन करना पड़ेगा, तू कर। अब विष्णु कहते हैं कि तू छोटा है, मुझे अभिवादन कर। ब्रह्मा कहते हैं कि तू छोटा है, पहले मेरा अभिवादन कर। कौन छोटा और कौन बड़ा निर्णय कैसे करे, इस विवाद को समाधान कैसे करें, कौन करेगा। दो व्यक्ति यदि परस्पर विवाद करे किसी मुद्दे को लेकर, तो तीसरा निरपेक्ष व्यक्ति ही उसका समाधान कर सकता है। शिवपुराण में कथा आती है, पुष्पदंताचार्य जी ने शिव महिम ने स्तोत्र में इसका संकेत भी कर दिया। तो उसी दोनों के विवाद के बीच में एक अनलय स्कंद बपुषा, अग्निमय स्तंभ वहां खड़ा हो गया दोनों के बीच में, अनल स्कंद बपुसा और ब्रह्मा और विष्णु के देखते देखते ही ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र, विष्णु का सुदर्शन चक्र, दोनों ही उस अग्नि स्तंभ में गायब हो गए, लुप्त हो गए। तब ब्रह्मा और विष्णु ने विचार किया, क्या है हम दोनों के विवाद के बीच में, ये कहां से आ गया, क्या चीज है और हमारा अस्त्र गायब हो गया। पहले तो इसको पता लगाए कि है क्या चीज और अपना हथियार वापस ले ले, तब फिर विवाद करेंगे, लड़ के जितना होगा तो भी जीतेंगे। तो ठीक है, सहमति हुई। यदुपरि विरिंची हरिराधा, तो वह जो अग्नल स्कंद पपु ज्योतिर्मय लिंग, वह कहां से शुरू हुआ और कहां समाप्त हुआ इसका पता कौन लगाए। बोले ऊपर की तरफ हम जाएंगे, ब्रह्मा जी कहने लगे हम जाएंगे ऊपर कहां समाप्त हुआ है, अंतिम छोर का पता लगा के आएंगे हम, तुम नीचे जाओ कहां से शुरू हुआ है। विष्णु कहा कि हां ये तो नीचे जाने का काम हमने पहले भी किया है, हम चले जाएंगे। तो फिर वहां भी उस शिवलिंग का, ज्योतिर्मय लिंग का आदि को पता लगाने के लिए श्री भूदार ने, किसने, श्री भूदारा वाले ने, केवल लक्ष्मीपति नहीं भूपति, दो पत्नी है ना, इसीलिए भूपति लक्ष्मीपति, इसीलिए दोनों को जोड़ दिया शंकराचार्य ने, श्री श्री भूदारा, श्रीधारा और भूधारा वाले श्री भूधारा। विष्णु ने वराह का रूप धारण करके क्या क्या, भूधारताम वराह का रूप धारण करके उद्वहन थी, नीचे चले गए पता लगाने के लिए। लेकिन बहुत नीचे जाते जाते पाताल तक तो गए, लेकिन वहां भी उसका अंत या आदि कुछ भी पता नहीं चल रहा, उसके आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो वहीं से विष्णु तो वापस आ गए, यह अनिर्वचनीय है, आ गए। ब्रह्मा ऊपर के चले गए ब्रह्मलोक पर्यंत, लेकिन उसका तो कोई अंत ही नहीं, और आगे गया है, अत्यतिष्ठ दशांगुलम मां है, वो तो और आगे गया है। अब आगे कहां जाएं हम, लौट के जाना पड़ेगा। लेकिन बड़ा होने का जो ख्वाब था ब्रह्मा को, उसने झूठ का आश्रय लिया। सुपुराण सुनी है आप लोगों ने कई बार, जाके उसको कह देता हूं मैंने पता लगाया, और कह देने से मैं बड़ा होता हूं तो हर्जा क्या है, लगाया कि नहीं लगाया, या और तो कोई है ही नहीं साक्षी, लेकिन तुमने लगाया कि नहीं लगाया पूछ लिया, साक्षी कौन है, तो कोई साक्षी भी लेके जाना चाहिए। गलत आदमी गलती करने से पहले बचने की बड़ी फॉर्मूले तैयार करता है, पहले सोच लेता है वो, यदि पकड़ा गया तो मैं क्या कहूं, क्या करूं, कैसे करूं, है ना, करता है कि नहीं बोलो, भगवान श्री कृष्ण ने किया कि नहीं बोलो, महाभारत युद्ध में, युद्ध भूमि में है, युद्ध भूमि में जब कर्ण के पास जाना था तो साड़ी पहन के गए कि नहीं बोलो, कुंती को साथ में लिया और कुंती के साथ ही सहेली बनकर साड़ी पहन कर गए हैं, कहीं पता न चले। कृष्ण स्वयं कर्ण कहां गए ये बात और को और लोगों को पता न चले, रात के समय में कुंती तो महिला है स्त्री है साड़ी पहनी है, और कृष्ण ने भी साड़ी पहन ली, क्योंकि गलत काम करना था ना, इसलिए वो छुपने की पहले सोच लिया, ऐसा करके जाऊं तो मुझे कोई नहीं पहचानेगा। बोले कि चप्पल की आवाज आ रही है भाई, कोई जग जाएगा तो क्या करें महाराज। बोले लाओ चप्पल, हम ले लेते हैं बगल में। अपने आप तो होशियार थे कृष्ण, इसलिए खाली पांव गए, कुंधी चप्पल ला कर गई, पहन कर गई थी, और चप्पल के आवाज आने लगा तो बोले लाओ वो चप्पल हम ले लेते। तो कुंती ने चप्पल खोली, कृष्ण ने चप्पल को बगल में दबा लिया, साड़ी पहने हुए गए कर्ण के पास जाकर। ये क्या रूप बनाया है, क्यों आए हो? बोले बेटा तुमने जो प्रतिज्ञा कर ली कि कल सुबह मैं मारूंगा, तो तुम जो है मेरे बेटे हो, तुम कौंतेय हो, ये समझाने के लिए आए। हाँ, ये समझाने के लिए आए कि तेरी मां कुंती, बोलो इसी से सुन ले, इसी के मुख से सुन ले कि तू इसका बेटा है कि नहीं। अर्जुन युधिष्ठिर जैसे इसके बेटे हैं, कौंतेय हैं, तू भी कौंतेय। कुंती ने कहा कि हां बेटा, तू मेरा ही बेटा है, इसीलिए तू अपने भाइयों को मत मारो, युद्ध बंद करो। कर्ण ने कह दिया ठीक है मां, शास्त्रों में लोक में सर्वत्र यही प्रसिद्ध हुआ है, प्रसिद्धि हुई है कि तुम पांच बेटे की मां हो, कुंती के पांच पुत्र हैं, तो मैं तुम्हारे सामने ये प्रतिज्ञा करता हूं, अर्जुन के बायक और किसी को मारूंगा नहीं। मेरे द्वारा अर्जुन मर गया तो भी पांच पुत्र के पांच ही रहेंगे, तुम पांच पुत्र की मां रहोगी, और अर्जुन द्वारा मैं मर गया तो भी तुम पांच पुत्रों की मां रहोगी। इतने ही वचन तुम्हें दे सकता हूं मैं कि मैं अर्जुन के अलावा और किसी को मारूंगा नहीं, और तुम ना आती तो मैं और को भी मार देता है, मैं युधिष्ठिर को भी मार देता, नहदेव, नकुल, सहदेव, भीष्म, भीम, सबको मार देता, मार भी सकता। लेकिन अब यह बात पक्की है कि चार पुत्र बचेंगे, तो या मैं मरूंगा इस महाभारत में या अर्जुन मरेगा। तो इतनी फायदा हुआ कि नहीं कृष्ण के कपट से, बोलो? तो बदमाशी करने वाला पहले ही प्लान बना लेता है। बोधारतम, ब्रह्मा जी ने बदमाशी करनी थी इसलिए प्लान बना ली। तो एक नंदी को, कामधेनु गाय को ले लिया, चल कहां जाना है महाराज? तो कामधेनु गाय तो स्वर्ग में थी, रस्ते में आते ब्रह्मलोक से आते समय स्वर्ग में घुस के कामधेनु गाय को लेके आए, चल नीचे पाताल में, नहीं भूतल में, क्यों महाराज? बोले ब्रह्म विष्णु वहां बैठा हुआ है, उसके सामने मेरे पक्ष में तूने बयान देनी है। क्या बयान महाराज? बोले ब्रह्मा ने ये ज्योतिर्लिंग का पता लगाया, ये मैंने देखा है, ये साक्षी करना। नहीं महाराज, विष्णु के सामने, शिव के सामने मैं झूठ कैसे बोल सकता? झूठ नहीं बोलेगी, मेरे लिए तू इतना भी नहीं करेगी तो मैं अभी श्राप देकर मार डालूंगा। तो बिचारी कामधेनु गाय डरने लगी, तो मरना है इसके श्राप से, मरने की अपेक्षा तो जाती हूं विष्णु के आगे, शिव के आगे, कुछ न कुछ तो करेंगे ही। तो नीचे आए, ब्रह्मा ने कहा, विष्णु से पूछा, पता लगाया? विष्णु ने तो कहा कि नहीं महाराज। बोले आपने पता लगाया? बोले हां, और क्या? अच्छा भाई साक्षी कौन है? बोले ये। विष्णु ने गाय से पूछा, कामधेनु से, सचमुच ये बुढ़े ने पता लगाया है ऊपर? तो ब्रह्मा के तरफ मुंह करके हां कहा, कह दिया, और विष्णु के तरफ पूछ करके नहीं हाथ हिला दी। नहीं, बड़ी चलाक थी वो, पूछ करके कह दिया नहीं है। कई चिन्ह है, कई लक्षण देकर निषेध कर दिया, पूछ हिलाया नहीं, गोबर कर दिया नहीं, डर के मारे पेशाब कर दिया नहीं है, दूध दिया नहीं। तो सत्य का आश्रय जिन जिन ने लिया वही अमृत हो गए। तो पंचामृत के लिए क्या क्या चाहिए बोलो? दूध दही। और पंचगव्य के लिए क्या चाहिए शुद्धिकरण में? और गोबर भी चाहिए। पंचगव्य, दूध दही घी। नहीं नहीं, पंचगव्य में मद नहीं पड़ता है, तुम लोगों को पता ही नहीं है। पंचामृत में मद पड़ता है, पंचगव्य में मद नहीं पड़ता है, क्योंकि मद गव्य नहीं है ना। गव्य का अर्थ क्या होता है? गाय का विकार को गव्य बोलते हैं। मद कहीं गाय से पैदा करती है? दूध दही घी ये गव्य है, और गोमूत्र और गोबर, ये पांच चीज मिलाते हैं तब पंचगव्य होता है। अब तुम लोग बंबई वासियों को क्या पता पंचगव्य क्या है? हैं? सूतक और पातक की शुद्धिकरण के लिए पंचगव्य के बिना सूतक दोष और पातक दोष की निवृत्ति हो ही नहीं सकती। लेकिन आजकल तो क्या करते हैं, तुलसी पानी छिड़क दो जहां भी शुद्धि हो गई, गंगा जल छिड़क दो, नहीं होता। शास्त्र प्रमाण है, पंचगव्य सेवन करना पड़ता है, हाँ, तब जाकर पातक दोष, पातक माने कोई मरा हुआ हो परिवार में, उसकी जो कर्म करने उसको पातक बोलते हैं। कर्म विधि पूरा करके फिर शुद्धिकरण करने का दिन आता है तो पंचगव्य सेवन करके शुद्धि होती है। कोई पैदा हुआ परिवार में बहू का बेटा हुआ तो, या अपनी पत्नी का बेटा हुआ, अपने बेटा हुआ या बहू का बेटा हुआ, तो वो होगा सूतक। तो अमुक दिन वो दोष लगता है, अमुक दिन, दस दिन का विधान है हमारे सनातन धर्म में, दस दिन तक सूतक रहता है और तेरह दिन तक पातक दोष रहता है। तेरहवीं दिन में पंचगव्य सेवन करके पातक दोष से निवृत्ति, दसवें दिन में पंचगव्य सेवन करके सूतक दोष की निवृत्ति होती है। क्योंकि ये पांचों चीज गाय के पृष्ठभाग से सत्य के आश्रय के प्रतीक में गाय के शरीर से निकले थे, इसलिए सनातन धर्म ने उनको शुद्धिकरण पवित्रता के रूप में ग्रहण किया। लेकिन मुख से जो झूठ बोला था, इसलिए गाय का गोबर शुद्ध हो सकता है, गाय का जूठा शुद्ध नहीं होता। भगवान को भोग लगाने के लिए भोजन बनाया था, प्रसाद बनाया था, गाय ने खा ली, तो वो अब भगवान को भोग नहीं लगेगा, समझे कि नहीं? वो जूठा हो गया अपवित्र, क्योंकि उसका मुख असत्य का भाषण किया था। तो पूंछ ने भी सत्य का आश्रय लिया, ये ब्रह्मा ने झूठ बोला, तो वैतरणी उसी के आश्रय से तुम लोग तैरते हो। वैतरणी में क्या समझ, क्या पकड़ते हैं? गाय के पूंछ, सिंह क्यों नहीं पूंछ पकड़ते हो? वो अशुद्ध है, मुख का भाग अशुद्ध है, कान नहीं पकड़ा जाएगा, सिंह नहीं पकड़ा जाएगा। भूधारतामुदहमपेक्ष श्रीर भूधार एव किमत सुलभे सुमते लभस्व, केदारमा कलित मुक्ति महौषधीनाम पादारविंद भजनम परमेश्वरस्य सुमते। ये संबोधन है, मन को समझा रहे हैं, बुद्धि को समझा रहे हैं। हे सुमति, हे बुद्धि, सद्बुद्धि, तुम मुक्ति महौषधीनाम, मुक्ति रूपी महान औषधि की खेती करनी है, औषधि तैयार करना है तुमने। कौन सी औषधि बोलो? शुगर हटाने के लिए कि जन्म मृत्यु हटाने के लिए? मधुमेह हटाने के लिए कि जन्म मृत्यु हटाने के लिए? है, जांबू फल खाओगे जन्म मृत्यु हटेगा कि मधुमेह हटेगा? अरे भाई, एक जन्म का मधुमेह हटे तो दूसरा जन्म होगा तो फिर मधुमेह आ जाएगा, तो जन्म मृत्यु ही हटाओ ना भाई। ऐसा कोई औषधि है तुम्हारे पास? नहीं है महाराज। तो फिर खेती करो। महाराज, मेरे पास खेत तो है ही नहीं, खेती कहां करें? केदारम, केदार माने खेत, केदारम आकलित, केदार का आश्रय लो, जिस खेत में मुक्ति महौषधि का निर्माण उत्पादन किया जा सके। कौन सी औषधि है वो? पादारविंद भजनम, केदारम, भगवान शिव का जो चरण है उसका ग्रहण करो, वही खेत हो जाएगा। भगवान शिव के चरण रूपी खेत में मुक्ति रूपी महौषधि की खेती करो। परमेश्वरस्य पादारविंद भजनम केदारम, है, उसी में ही मोक्ष रूपी परम औषधि की खेती हो सकती है, अन्यत्र नहीं। जैसे कहा जाता है ना, असली केसर की खेती कश्मीर में ही हो सकती है।

0: तो परमेश्वरस्य पादारविंद भजनम केदारम, परमात्मा के चरण का आश्रय लिए बिना मोक्ष रूपी महा औषधि तुम प्राप्त नहीं कर सकते हो। हे सुमते संबोधन, इसलिए उसी का आश्रय लो और मोक्ष औषधि प्राप्त करो तो जन्म मृत्यु से तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा भाई। और क्या कहेंगे कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।
1: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org. Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shiva Mahimna Stotra in Hindi, presented by Swami Sri Dharmanandji. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: जो सुनने में तो बहुत बढ़िया लगे, समझ में आ जाए, पर विचार करने के बाद झूठी सिद्ध हो, उसका नाम कुतर्क है। तो कुतर्क कुतर्क करते हैं। जगतः मतलब संसार के विषय में मोहाय हतधियः, जो भ्रम में डालने वाला है, जिनकी बुद्धि मारी गई है। काश्चित मतलब ऐसे कुछ एक लोग हैं, मुखरयति ऐसे लोगों को यह कुतर्क बकवासी बना देता है। खलु मतलब लेकिन, अयम मतलब यह जो कुतर्क है, अनवसर दुस्थ, अनवसर दुस्थ का अर्थ है अवकाश रहित है, बिना अवकाश के ही बिना कारण से ही इस प्रकार का वे तर्क वितर्क किया करते हैं। ये तो हो गया आपका एक एक पद का शब्दार्थ। अब इस पर विचार करते हैं। तो पहला शब्द है किमी है। यह शब्द का अर्थ होता है चेष्टा। यह चेष्टायाम धातु से यह शब्द बना है। ये मतलब उसकी कौन सी चेष्टा, इच्छा और प्रयत्न के बीच में चेष्टा होती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास अभी रसगुल्ला नहीं है, तो रसगुल्ला खाने की इच्छा होगी। पहले रसगुल्ला विषय ज्ञान होगा, क्योंकि तो नियम है जानाति इच्छति यतते करोति। जब कोई भी हम कार्य करते हैं तो कार्य की भूमिका है जानाति, पहले सामान्य ज्ञान होता है, ज्ञान के बाद इच्छा होती है, इच्छा के बाद चेष्टा प्रयास होगा, इसके बाद कार्य को संपादित करते हैं। तो हमें रसगुल्ला खाना है, रसगुल्ला का ज्ञान है, मन में इच्छा हुई, इच्छा होने के बाद फिर चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं, प्रयास के बाद बाजार से ले आकर के फिर हम जो है उसको खाते हैं। परंतु जो परमात्मा है, परमात्मा के विषय में शास्त्र कहता है आप्त काम, परमात्मा के अंदर कोई कामना नहीं। जब आप्त काम है तो उसके अंदर चेष्टा इच्छा असंभव है, अल्पज्ञ के अंदर चेष्टा होती है। यह जो तर्क है कि उसने किस इच्छा से किस चेष्टा से संसार को बनाया, यही खंडित हो जाता है। ये मनुष्य अपने ढंग से चिंतन करता है कि जैसे हम कोई भी जब काम करते हैं तो काम करने के पहले इच्छा करते हैं। जैसे आपको एक मकान बनाना हो तो मकान बनाने के

पहले मन में इच्छा होगी, इच्छा के बाद कारीगर को बुलाएंगे, बुलाने के बाद सामग्री एकत्रित करेंगे, तब जाके मकान बनेगा। इसी प्रकार से सोच रहा है, उस परमात्मा ने जब संसार को बनाया तो बनाने के पहले उसने किस प्रकार से इच्छा किया। जो पहाड़ की ऊंचाई है, सागर की गहराई है, धरती इतना समतल है, इसको बनाने के पहले उसने किस प्रकार से संकल्प विकल्प किया, इस प्रकार से तर्क वितर्क करता है। इसके बाद वह किम कायः, उसका शरीर कैसा है। बिना शरीर के इच्छा संभव है, इच्छा के बाद में सोता उसका शरीर कैसा है। यदि देखा जाए तो भगवान की तो बात छोड़ दीजिए, वो तो आप्त काम सत्य काम है, श्रुति कहती है। भगवान के उपासक भक्त भी सत्य काम होते हैं, स्वयं श्रुति माता है, ऋषीणाम पुनराद्यानाम वाचम अर्थोनुधावती। ऋषियों के वाणी का अनुकरण पदार्थ करते हैं जिसने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया। बहुत हम आपको वर्तमान दृष्टांत देते हैं कलयुग का। जब बौद्धों के साथ सनातन धर्म का साक्षात्कार हो रहा था कि जगत का कारण परमात्मा है, चैतन्य है कि शून्य, बौद्धों का पक्ष था कि संसार का कारण शून्य है, शून्य से संसार उत्पन्न हुआ। पर कुमाइल भट्ट कहते थे कि जगत का कारण चैतन्य है, ब्रह्म है, परमात्मा है। बहुत दिन साक्षात्कार चलता रहा, जब निर्णय नहीं हो पाया तो बौद्ध राजा ने कहा कि शास्त्रार्थ का निर्णय मैं कल करूंगा। और बौद्ध राजा ने चुपके से एक घड़े में काला नाग रख करके और प्रातः काल जब सत्र प्रारंभ हुआ तो सभा के बीच में रखवा दिया। दोनों पक्षों से निवेदन किया कि आप अपने शास्त्र से, ज्ञान से, अनुभव से बतलाइए किस घड़े में क्या है। जो सही सही बतला देगा वह जीत जाएगा, नहीं बतलाने वाले की हार हो जाएगी। चूंकि राजा बौद्ध था इसलिए बौद्ध पंडितों को खबर लग गई थी कि उसमें काला नाग रखा है। बस जैसे राजा घोषणा किया, घोषणा करते ही तुरंत बौद्ध पंडित चिल्लाकर बोले इसमें काला नाग है। कुरमाइल भट्ट ने सोचा यदि मैं भी हां में हां मिला दूं तो क्या बोले कि पहले इन्होंने बोला और बाद में आपने बोला था आप बौद्ध धर्म को स्वीकार करो। कुछ देर तक नहीं बोले। जब राजा ने कहा कि आप सोचते कि आप बतलाइए क्या है, कुमाइल भट्ट ने कहा सोच विचार कर इसमें जो है खिलता हुआ कमल का फूल है। राजा जोर से हंसा, कहा कि आज तो हमारी विजय हो गई। रानी थी सनातनी धर्मपत्नी, बहुत दुखी हुई कि क्या इन्होंने कह दिया, इन्हें कहना था काला नाग। कुमाइल भट्ट ने कहा आप घड़ा खोल के देखिए पहले इसमें क्या है। जैसे ही घड़ा को खुलवाया उसमें खिलता हुआ कमल का फूल। राजा को बड़ी हैरानी हुई, हमने स्वयं रखवाई थी इसमें काला नाग की जगह फूल कहां से आ गया। उसने पूछा कि अदला बदली कैसे हो गई। कुमाइल भट्ट ने कहा कि मुझे मालूम था इसमें काला नाग है, परंतु हमने इस काले नाग की भावना करते करते परमाणु तक ले गया और परमाणु को हमने चैतन्य में विलीन कर दिया। जगत जब नष्ट हो होता है तो परमाणु रूपता को प्राप्त होता है और परमाणु जो है परमात्मा में विलीन होता है। परमाणु का आकाश का आधार है परमात्मा, तो उस परमात्मा तक पहले ले गया, उस परमात्मा में संकल्प किया, वहां से संकल्प करने के बाद धीरे धीरे परमाणु वेणु के क्रम से ये जो खिलता हुआ कमल बन गया। जब ऋषियों के वाणी को, कुमाइल भट्ट के वाणी को अनुकरण किया, पदार्थ मतलब कमल का फूल, ये कलयुग की घटना है। इतनी उनकी सूक्ष्म दृष्टि थी, भावना संकल्प था कि संकल्पानुसार उस काले नाग को परिणत होकर फूल बनना पड़ा।
तो जब भक्तों में इतना सामर्थ्य है तो परमात्मा अपने संकल्प से क्या नहीं कर सकता है। पर अज्ञानी जी तरह तरह की शंका करते हैं। पहले लोग महाभारत के ऊपर बहुत शंका करते थे। महाभारत में वेदव्यास ने जो लिखा है कलयुग का वर्णन, भागवत में भी है कि अट्ठशूला जनपदा कामिन्या के सुलिन्या। तो अट्ठशूला का अर्थ नहीं लगता, तो अट्ठशूला चीज क्या होती है? आज सबको लग रहा है अट्ट बोलते हैं अटारी, जो बड़ी बिल्डिंगें होती है ना 10-20-50 मंजिल की, उस पर देखना त्रिशूल की तरह से वो बना रहता है ताकि ऊपर से बिजली को कैच कर सके। पर उस जमाने में जब महाभारत लिखी गई तो किसी को समझ में नहीं आया, वहां पर लाल चिन्ह लगा दिया। पर आज प्रत्यक्ष हो गया कि गगन चुम्बी जो इमारतें हैं उसके ऊपर अट्ठशूला मतलब ऊपर शूल लगाते हैं। तो ऋषि लोग तो लिखते हैं पर वर्तमान में समझ में नहीं आता है, कालांतर में प्रत्यक्ष होता है। कामिन्या के सुलिन्य भी लिखा है, प्राचीन काल में स्त्रियां केश को काटती नहीं थीं। केश काटना मतलब कि अपने सौभाग्य को नष्ट करना, ऐसा माना जाता था। पर आजकल तो इस शोभा बन गया ना, केश को छाटना काटना, उसमें जो है शूल मतलब कि वो नहीं लगाते हैं, वो जो ब्यूटी पार्लर में जाकर वो सब होता है। तो उस समय किसी ने भरोसा नहीं किया, वेदव्यास ने क्या लिख मारा, पर आज प्रत्यक्ष हो गया। तो ये जो ऋषियों की वाणी अमोघ हुआ करती है। मांडुक उपनिषद में आता है देवा शेषस भावोयम आप्त कामस्य काष्प्रिहा। उस परमात्मा को कुछ भी चाह नहीं है, वह तो जीव के हित के लिए संसार को बनाया। किम काया, उसका शरीर कैसा है? यदि हम ऐसा कहें कि वह अपने शरीर से संसार को उत्पन्न किया तो शंका हुई कि उसका शरीर किसने उत्पन्न किया? ईश्वर को भी शरीरी मान ले अपनी तरह 3.5 हाथ का, तो शंका होगी कि उस शरीर को किसने बनाया, फिर उसके शरीर को किसने बनाया, तो कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगी, अनवस्था दोष हो जाएगा। और यदि कहें अपरिच्छिन्न तो कहता है कि वो शून्य है, जब दिखाई नहीं पड़ता है। तो इस तरह से उसके शरीर के विषय में शंका करते हैं। कदाचित मान भी लें कि उसका कोई शरीर है, संकल्प है, तो फिर शंका करते हैं कि किमु पायः, कौन सा औजार, जैसे जुलाहा जब कपड़ा बनाता है तो कपड़ा बनाने के लिए एक लकड़ी विशेष होता है, और जब कुम्हार घड़ा बनाता है तो उसके लिए चाक चीवर होते हैं, उस पर रखकर घड़ा को बनाता है। तो परमेश्वर ने इतनी बड़ी जो दुनिया है उसको किस औजार हथियार से बनाया, इस प्रकार से तर्क वितर्क करते हैं। किमाधारा, जब बनाया तो उसका आधार क्या बना है, किस जगह बनाया, कहां बैठकर, ये भी शंका करते हैं। ऋषिकेश में नीलकंठ महादेव है, तो वहां पर एक बार मैं गया हुआ था, तो बहुत से लोग वहां पर तर्क वितर्क कर रहे थे कि पुराणों में चर्चा है कि सागर का मंथन हुआ, मंथन के बाद हलाहल विष निकला, तो हलाहल विष को भगवान शंकर ने पान किया तो उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। तो नीलकंठ तो ये हिमालय की तलहटी में ऋषिकेश में है, और समुद्र तो बहुत दूर है, इसे बंबई में समुद्र है। तो भगवान शंकर वहां बैठ के हलाहल विष का पान किए कि यहां पान की, तरह तरह की जो शंका करते हैं। भाई भगवान समर्थ थे, चाहे वहां से पान कर ले चाहे ऋषिकेश नीलकंठ से कर ले, क्या फर्क पड़ना है, परंतु अज्ञानी शंका करता है। तो वहां पर जो नीलकंठ महादेव, वहां फोटो ही बना रखा है कि समुद्र का मंथन हो रहा, हलाल विष निकल रहा, वाम हस्त भगवान विष पान कर रहे हैं। तो जो नीलकंठ भगवान, उनका आधार क्या बना, जहां पर बैठ के हलाहल का पान किया, ऐसे उस परमात्मा ने किस आधार पर कहां बैठ करके संसार को बनाया, यहां भी शंका होगी कि जिस आधार पर बैठकर संसार को बनाया वह तो उसके पहले मौजूद था, उसको किसने बनाया, भी शंका होगी ना। तो इस तरह के तर्क करते हैं। इसके बाद आता है किमु उपादान, क्या उपादान, जैसे घड़ा बनाने के लिए उपादान है मिट्टी,
कपड़ा के लिए सूत, वैसे ही संसार बनाने के लिए उपादान क्या, सामग्री क्या थी जिससे बनाया। इस प्रकार से बेचारे तर्क वितर्क करके हतधियः, उनकी बुद्धि कहते कि नष्ट हो जाती है, तरह तरह के तर्क वितर्क करते हैं। हालांकि परमात्मा के स्वरूप को स्वयं ही बतला दिया है कि सर्वम खलमिदम ब्रह्म, वह सब में बैठा हुआ है, सब कुछ उसमें है, जैसे आकाश है। इस आकाश में ये जो है ना बंबई नगरी निर्मित है, और इसके बीच भी बंबई आकाश है, आकाश के अंदर बंबई है, अब बंबई के अंदर भी आकाश है, दोनों। आकाश न हो तो बंबई बन नहीं सकता है, और बनने के बाद भी उसके अंदर भी आकाश है। इसी प्रकार से परमात्मा बाहर भी है, भीतर भी व्यापक है, सर्वत्र है। इसलिए हमारे यहां कहा है कि मातृ देवो भव, माता में साक्षात परमात्मा की भावना करें। यदि हम निर्गुण निराकार अपरिच्छिन्न परमात्मा का अपने मन बुद्धि से अनुभव नहीं कर सकते हैं, इसलिए भी अनुभव नहीं आता है, क्योंकि हमारे पास जो भी यंत्र है वह माइक है, पांच भौतिक है। जो हमारे यंत्र है ना, आंख नाक कान त्वचा हस्त पाद पायुपस्थ या मन बुद्धि, ये सब जो है ना माइक है। माइक होने के नाते ये माइक वस्तुओं का ही अनुभव कर सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं। और परमात्मा अमाइक है, इसलिए अमाइक तत्व मन बुद्धि का विषय नहीं होता है, तरह की शंका होती है। इसलिए उसी परमात्मा ने क्या किया, आपके हित के लिए तत् सृष्ट्वा तदेवा अनुप्राविशत, इस संसार माइक संसार को बनाकर उसमें प्रविष्ट हो गया। तो यदि आप निर्गुण निराकार परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं, तो शास्त्र कहता है कि आप अपनी मां को देख रहे हैं, पिता को देख रहे हैं, उनमें भी परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं परमात्मा बुद्धि से। कल हमारे गिरीश भाई ने बड़ा अच्छा शंका किया था, ये सबका शंका है कि जो है पत्नी तो पति को पति देव माने, पति परमेश्वराय नमः दृष्टि रखे, परंतु पति क्या करे, है ना। ये शंका एक बार हमारे कैलाश में पूज्य महाराज श्री दशम पीठाचार्य से विद्यानिधि जी महाराज से किसी ने पूछा कि भगवान शंकर किसका ध्यान करते हैं, किसकी पूजा करते हैं। भगवान शंकर की सारी दुनिया पूजा कर, वो भी आंख बंद करके बैठे हैं। तो महाराज श्री ने उत्तर दिया था अपने स्वरूप का, परंतु उस समय बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई थी, उसमें बाल बुद्धि थी हमारी, करीब 20 वर्ष पुरानी घटना होगी, कि स्वरूप क्या है। यदि ऐसा को उत्तर दे कि भगवान शंकर अपने स्वरूप का चिंतन करते हैं, खैर आप लोग तो समझदार है, समझ सकते हैं, पर सामान्य व्यक्ति समझ नहीं पाएगा स्वरूप क्या होता है। तो पति जो है ना अपने स्वरूप का सुमिरन करे, चिंतन करे, उपासना करे। यहीं पर आता है कि वह जो पुरुष है ना, पूर्णत्वात पुरुष, पत्नी में पुरुष में व्युत्पत्ति अलग अलग है। पुरुष शब्द की व्युत्पत्ति है जो वैदिक व्याख्यान है कि पूर्णत्वात पुरुष, ये पुरुष क्या है, पूर्ण है, जैसे आकाश परिपूर्ण है, व्यापक है। तो पुरुष जब परिपूर्ण है तो यह अपने परिपूर्ण आत्म स्वरूप का चिंतन करता है, और पत्नी जो है पति में जो है परमेश्वर का दर्शन करती है। अब बालक होगा, वो बालक जिसका शादीशुदा नहीं हुआ है, वो माता पिता में परमेश्वर का दर्शन करता है। तो सर्वत्र आप परमेश्वर की दृष्टि से उसको उपलब्ध हो सकते हैं, परंतु नास्तिक तर्क वितर्क के जाल में पड़ करके पहचान नहीं पाते हैं। अभी आप लोगों ने श्रवण किया स्वाध्याय में, तर्का प्रतिष्ठाना सूत्र आया था ना, उसमें स्पष्ट कर दिया था कि तर्कों की प्रतिष्ठा नहीं। यदि आप एक तर्क से सिद्ध करते हैं कि जगत का कारण शून्य है, दूसरा आएगा खंडन करके कहेगा क्षणिक विज्ञान है, तीसरा बोलेगा प्रधान है, चौथा खंडन कर देगा कि ईश्वर कारण है, तो तर्कों की प्रतिष्ठा कभी नहीं होती है। ये तर्क क्या है, दुधारी तलवार है। दुधारी तलवार जानते हैं ना,
धारी मतलब कि दोनों तरफ धार होते हैं। यदि आप तलवार चलाने में कुशल हैं, तब तो दुधारी तलवार से शत्रु का संहार कर सकते, अन्यथा मनुष्य अपना ही संहार कर लेता है। इसी प्रकार से तर्क के द्वारा हम परमात्मा को समझ भी सकते हैं और तर्क के द्वारा भटक भी सकते हैं, इसलिए तर्क की प्रतिष्ठा नहीं होती है। देवी पुराण में आता है, ज्ञान नाम पिहिसा देवी भगवती बलादा कृष्ण मोहाया महामाया प्रयच्छति। कितना सोच समझ के वेद व्यास ने शब्द का प्रयोग किया है, ज्ञान नाम पिही चेतांशी भगवती हिसा। हिसा मतलब सा मतलब वही वेद प्रतिपाद जो चैतन्य है, जो भगवती के पिंड में देवी के पिंड में है। ज्ञान नाम पी ज्ञानियों के चेतांशी चित्त को बलादा कृष्ण मोहाय बलपूर्वक मोह में डाल देती है। देखो मूर्ख लोग ज्यादा जो है ना भ्रमित नहीं होते हैं, तर्क भी तर्क नहीं करते हैं। आप किसी सामान्य व्यक्ति को बतला दो तो बस एक पिंड को भगवान शंकर मानकर जल चढ़ा तो बिल्कुल सच्चे दिल से करेगा, जरा संशय विकल्प तर्क वितर्क नहीं होगा। पर पढ़े लिखे को बोलो तो तरह तरह का तर्क करेगा। इसीलिए वेद व्यास ने कहा कि ज्ञान नाम पी चेतांशी, ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक तर्क वितर्क के जाल में वही देवी माया देवी फंसा देती है ताकि संसार चलता रहे। मान लो कोई आपके घर में बहुत दुधारू गाय हो, दुधारू गाय का रस्सी खुल गया, अब बेचारी आगे भगने लगी तो आप क्या करेंगे? उसको बढ़िया घास डाल करके रोक देंगे। ऐसे ही ज्ञानी क्या है ना, दुधारू है गौ के समान। तो महामाया क्या करती है, तर्क वितर्क के जाल में मोह में फंसा देती है ताकि जो है ये संसार का व्यवहार चलता रहे, परंतु जो प्रौढ़ होगा वो तर्क वितर्क से आगे निकल सकता है। काश्चिन मुखरेत, यहां काश्चिन शब्द का प्रयोग है, मतलब सबको नहीं किसी किसी को यह तर्क वितर्क मुखर बना देता है। काश्चिन मुखरेत। अब देखो अगले छठवें श्लोक में विचार किया है कि वास्तव में ये जो नास्तिक दार्शनिक हैं ये किस प्रकार से चिंतन करते हैं और जगत का कारण क्या मानते हैं, इस बात को छठवें श्लोक में बतलाया है। नास्तिक कुल मिला के छह दर्शन है, छह में से पहला है चार्वाक दर्शन, दूसरा है जैन दर्शन, तीसरा है बौद्ध दर्शन। बौद्ध के चार भाग हैं, माध्यमिक, सौत्रांतिक, योगाचार, वैभाषिक। तो शिष्ट नास्तिक तो आपके जैन बौद्ध और अशिष्ट है चार्वाक। अशिष्ट मतलब कि कुछ भी नहीं मानना, अशिष्ट का अर्थ होता है कि लोक व्यवहार को भी तिलांजलि दे देना। जैसे वो कहते हैं यावत जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमनम। ये अशिष्ट नास्तिक है, जब तक जीना है तब तक खूब ऋण लो बैंक से और मौज करो खाओ पियो, मरने के बाद कौन देखा स्वर्ग, यही शरीर स्वर्ग यही नरक। हमको बहुत लोग ट्रेन में ऐसे बोलते भी मिले, कई लोग मिले कि कहीं स्वर्ग नहीं कहीं नरक नहीं, बस यही शरीर स्वस्थ हो तो स्वर्ग है, वैकुंठ है, ब्रह्मलोक है, और यही बीमार पड़ जाए हॉस्पिटल में तो नरक है। इससे बाहर कुछ स्वर्ग नरक नहीं, न कोई ब्रह्म है न परमात्मा है। ये बेचारे हैं अशिष्ट नास्तिक, मतलब कि शरीर में ही केवल दृष्टि केंद्रित रहती है। आजकल की सरकारें भी ब्याज पर ब्याज कर्जा के ऊपर कर्जा ले रही है। यदि पूछो कि तुम्हें चुकाना पड़ेगा बड़ा महंगा पड़ेगा तो क्या बोलते हैं, हमें चुकाना नहीं है, बस लेते जाओ अमेरिका से स्विट्जरलैंड से। ये है आपके नास्तिक। दूसरे शिष्ट हैं जैन बौद्ध, इनका कहना है कि संसार जो है परमाणुओं के पुंज से बना, शून्य से बना, क्षणिक विज्ञान से बना। देखिए जैन दर्शन मानता है कि परमाणुओं के पुंज से संसार बना, ईश्वर नामक कोई पदार्थ नहीं। बौद्ध भी यही मानता है ईश्वर नामक कोई चीज नहीं है, शून्य से यह संसार बना। ये शिष्ट नास्तिक हैं।
ये लोग इतना मानते हैं कि तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे, इनकी मान्यता है। इसीलिए सत्कर्म करना चाहिए, बढ़िया कर्म करना चाहिए। बढ़िया कर्म करोगे सुखी रहोगे और घटिया कर्म करोगे तो दुखी रहोगे। इस प्रकार से शिष्ट नास्तिकों जैन बौद्ध की मान्यता है और वास्तविकता भी है कि इंसान जैसा करता है वैसा उसको भोगना पड़ता है। एक बार अकबर भरी दरबार में बीरबल को एक तमाचा जोर से मारा। बीरबल बहुत होशियार थे, उन्होंने पीछे मुड़ के वजीर को मारा। वजीर बेचारा आंख लाल लाल करके देखने लगा, बोला कि तू देखता क्या है, इसको आगे बढ़ा, इसको जो है साहिबा तक पहुंचाना है। अब वजीर दूसरे को मारा, दूसरा तीसरे को, चौथे को, फिर दीवान को लगा। दीवान तिलमिला गए, बोले क्यों मारा मुझे, बोले कि अकबर ने बीरबल को दिया, बीरबल ने वजीर को, और इस तमाचे को साहिबा बेगम के पास पहुंचाना है राजमहल में। अब मरा दीवान जी सीधे सीधे जो है राजमहल गए, जाके अकबर की धर्मपत्नी को एक तमाचा जोर से मारा। बोली ये क्या तू कर रहा, बोले ये पति देव ने आपको दिया है, आएंगे तो उनको वापस करना। बोले ठीक है भाई। रात को जैसे अकबर आए बस तमाचा लग गया। तो ये संसार ऐसा ही है, जैसा आप करते हैं ना वैसा ही मिलता है। ये मान्यता जैन बौद्ध आस्तिक सिख दार्शनिकों की है। इसका उच्चारण कर ले कम से कम, व्याख्यान तो कल हो पाएगा।

0: भवति अनीशो वा कुर्याद् भुवन जनने कपरिकरो यतो मन्दास्त्वं प्रत्यमरवर संशेरत इमे। वे कहते हैं कि अजन मानो लोका कीमा अवयवंत, अवयव मतलब परमाणुओं के अवयव से पुंज से बिना उत्पत्ति के ये जगत बना है उनकी मान्यता है। जैसे कि हमारे शरीर का अवयव है हस्त पाद पायु पस्त अवयव से शरीर बना, ऐसे परमाणुओं के द्वारा उसके पुंज पृथ्वी है, वायु भी एक परमाणु का पुंज है, अग्नि भी परमाणु का पुंज है। जिस प्रकार से एक घड़ा जो है मिट्टी के पुंज से समूह से बनता है, इसी प्रकार से संसार भी परमाणुओं का अवयव का पुंज है, ऐसी उनकी मान्यता है। तो शंका करते हैं जगत्ताम अधिष्ठारा तारा किम, ये जो भव विधि है उत्पत्ति विधि, उस या उत्पत्ति विधि परमात्मा का तिरस्कार करके क्या संभव है? कहते हैं संभव है। यह जो अनिश जीवात्मा यह भी क्या संसार को बना सकता है? तो कहते हैं अनिश जो जीवात्मा है सामर्थ्यहीन, यह भी संसार को नहीं बना सकता है। इस प्रकार से मन बुद्धि वाले तरह तरह की शंका करते हैं उस तत्व के ऊपर। अब कल विचार करेंगे, समय हो गया। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की।
1: ओम नमः शिवाय। Dear listeners of Shaivam.org Radio, the size of our audio collection continues to grow day by day. We now host more than 25,000 audio recordings. In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thiruneriya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
2: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Atharvana Veda, Saunaka Shaka, Kandam 2, Sukta 17. Thank you.

0: சிவாய. யூஆர் லிஸ்னிங் டு சைவம் டாட் ஆர்க் ரேடியோஸ் 24/7 ஸ்பிரிச்சுவல் சேனல்ஸ் ஃப்ரம் சைவம் டாட் ஆர்க். ஓம் நம சிவாய.
1: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூஆர் அபவுட் டு லிசன் தைத்திரோபனிஷத் பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ ஆனந்த அந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
2: அவித்யா ஜோ ஹமாரே லியே ஹானிகாரக் ஹை, ஜோ ஹமே துக் மே லே ஜானே வாலா, லேகின் உஸ்மே ஹமாரி பிரசன்னதா ஹை தோ வோ பி அவித்யா ஹமே தேதி. லேகின் வித்யா கியா கரேகி? வித்யா உஸ்ஸே துமே நிவர்த் கரேகி, வித்யா வோ தேகி நஹி. யே தோனோ மே அந்தர் ஹை. லேகின் संकेत कर दिया, ये तो विद्या विद्या का और जो है अंतर है. तो अविद्या तो इस प्रकार से करेगी, लेकिन जिसने विद्या विद्या को दोनों को जान लिया, क्या कर लिया, विद्या को भी जान लिया और अविद्या को भी जान लिया, और जो जानने वाला होगा तो वो क्या करेगा, यदि वो पुत्र जानने वाला हो, छोड़ो, वह पुत्र ये जान ले कि ये विद्या है ये अविद्या है, और ये जब उसका ज्ञान हुआ तो कभी भी उसके अंदर ये नहीं आएगा कि मां हमारा अहित चाहेगी. और जब ये नहीं आएगा तो मां के द्वारा निषिद्ध किए हुए कार्य को अस्वीकार कर लेगा. ऐसे ही संसार के अंतर्गत भी यह जीव भी अविद्याकृत जितना भी कार्य है, प्रकृतिकृत जितना भी कार्य है, उस सारे कार्य को वह स्वीकार करता है, लेकिन जब वह समझ लेता है तो वह प्रकृति के सारे कार्यों को स्वीकार, उतने ही कार्य को स्वीकार करता है जो उसके लिए उपयोगी. और फिर कैसे करता है तो उसकी भी विशिष्टता वैशिष्टता है. वो वैशिष्टता क्या है, तब वो देखता है कि इस अविद्या और विद्या का भी एक आश्रय है. वो आश्रय क्या है, जिसके आश्रय ये विद्या है और अविद्या है, और उस आश्रय को लेकर के ही हमारी भी सत्ता है. पुत्र की सत्ता कब होगी भाई, पिता की भी सत्ता तो चाहिए है? आप गीता में पढ़ते तो रहते हो, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम. जो प्रकृति जो है केवल कुछ करने में समर्थ नहीं, लेकिन कब करती है, करती सब प्रकृति, लेकिन कब करती है, तो उसे अध्यक्ष बनाकर. और अध्यक्ष का तो अर्थ ही है अधिकरण में रह करके जो दृष्टि वाला है उसे क्या कहते हैं, अध्यक्ष कहते हैं. तो अब जो है यहां पर कोई पिता है, इसके आश्रय को लेकर मेरी भी सत्ता है, और ये दोनों भी उसके आश्रित हैं. और जब ये उसे ज्ञान आएगा तब वो देखेगा कि यहां पर जो है विद्या हमारे लिए क्या करने वाली है और अविद्या क्या करने वाली. और ऐसा जब उसे ज्ञान होता है तो वो समझ लेता है कि अविद्या जो है वो हमारे हित का कार्य करने में समर्थ नहीं, वो तो हमारे में संवर्धन नहीं कर पाएगी, हमारे में विभागी करती जाएगी, हमारे में खंड करती जाएगी, हमारे खंड में नवीनता कभी ला सकेगी नहीं. ये नवीनता कब आएगी तो कहने लगे, ये नवीनता तो आएगी विद्या के द्वारा. नूतनता कब आएगी, स्वस्थता कब आएगी, अपने में स्थिति कब होगी, तो कहने लगे ये होगी विद्या के द्वारा. तो विद्या को अब जब जो है इस प्रकार से वो ग्रहण करेगा तब क्या करेगा, तब साथ में ये भी देखेगा कि ये विद्या भी आश्रित किसकी है, उस सत्ता को भी वह ध्यान में रखेगा. और जब उस सत्ता को ध्यान में रखेगा तब उसके अंतर्गत विचार क्या आएगा कि इस विद्या की भी सत्ता या इसकी भी क्रिया किसके ऊपर निर्भर है, तो कहा इस पिता के ऊपर. ऐसे ही संसार के अंतर्गत जितने भी आप पद पदार्थ स्वीकार करते हो, जितने भी खंड विभाग स्वीकार करते हो वो सारे कैसे हैं, तो आप क्या कहते हो? सारी सृष्टि पंच भौतिक है। सारी सृष्टि कैसी है? पंच भौतिक है। तो पंच भौतिक का मतलब पांच भूतों से निर्मित है। पांच भूतों से यदि सृष्टि निर्मित है, तो अब जो पांच भूतों की सृष्टि है और पांच भूतों में आप हो कि नहीं, विचार करना होगा। उन पांच भूतों के अंतर्गत मैं है कि नहीं, तो क्या कहोगे? पांच भूतों में ही मैं है, अभी मैं करके ही जानता हूं। क्योंकि अहंकार कहां से हुआ? आप प्रक्रिया जो पढ़ते हो तो अहंकार की सत्ता भी कहां से आई? आप प्रकृति अव्यक्त आदि क्रम से लेते हो, महत्व तत्व अहंतत्व इत्यादि करके और पंचभूत आदि स्थूल रूप से, पहले सूक्ष्म रूप से लेते, तो ये सब अहम भी क्या है? ये जो मेरा मैं है जिसे जागृत में आप पकड़े हो, विभाग करके खंड किए करके हो, तो वो क्या है? तो वो भी किसका कार्य? प्रकृति का कार्य। अब जब वो प्रकृति का कार्य है, तो प्रकृति के कार्य में वह मैं भी प्रकृति से बना, और मैं जिसको दृश्य बना रहा है वो किससे बना? मैं जिसे दृश्य बना रहा है, मैं दृष्टा बन रहा है जिस समय, उस समय दृष्टा बन रहा है, तो जिसे दृश्य बना रहा है वो दृश्य किससे बना? वो भी पंचभूतात्मक। हम इस पुष्प को देख रहे हैं तो पुष्प क्या है? पंचभूतात्मक। और हम भी क्या है? पंचभूतात्मक। तो ये कार्य किसका किसमें हो रहा? पंचभूतों का पंचभूतों में ही ये तो हो रहा। ये जब स्थिति देखते हैं तो ये सब की सब स्थिति है, लेकिन ये कब हो रहा है? तो इसमें मूल क्या कहा? का अध्यक्ष कौन है? किसकी सद? प्रकृति स्वतः तो कर नहीं सकती। तब प्रकृति किसके माध्यम से करती है? ये आश्रय किसका लिए हुए है? तो क्या कहोगे? कहा वही है परमात्मा। वो क्या है? परमात्मा। अब जो परमात्मा है या आत्मा है या ब्रह्म है या कोई भी सत्ता दे लो, ये भी नाम हम लोगों के दिए हुए, वास्तव में वो क्या है? कोई न कोई शक्ति, या उसी को कह दिया तुर्य। उसको क्या कह दिया? तुरीय है, माने वो पूर्ण है, बस ये कह दिया, माने पूर्ण है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन परिवर्तन ये तीन अवस्थाओं तक है, उस अवस्था में जाकर के कोई परिवर्तन नहीं। ये विभाजन जो है, खंड जो है, इन तीन अवस्थाओं को लेकर के है, और इनमें विभेद भी है, लेकिन वहां पर जाकर के कोई भेद और कोई खंड नहीं, वो इसका आश्रय। अब जो इसका आश्रय है उसमें कोई विभाग संभव नहीं, कोई खंड संभव नहीं, लेकिन उसके आश्रय के बगैर ये भी खंड संभव नहीं, ये भी संकेत किया। और ये जब दृष्टि आ गई तो अब ये देखना होगा कि वो आश्रय है, तो आश्रय कभी भी आश्रित से पृथक नहीं होता। आश्रय कभी भी आश्रित से पृथक नहीं होता, ये नियम है। पृथ्वी क्या है? मूल रूप से हम लोग लें, जितने भी ये जीवधारी हैं, इनका आश्रय क्या है? पृथ्वी। तो क्या पृथ्वी को छोड़ के आप लोग रह सकते हो? जितने भी पार्थिव पदार्थ हैं, ये मान लो, वो पृथ्वी को छोड़ करके कभी रहे ही नहीं। लेकिन वो पदार्थ न रहे तो पृथ्वी रहेगी कि नहीं रहेगी? पृथ्वी की सत्ता तो रहेगी। ऐसे ही जितने भी ये जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है, सुसुप्ति अवस्था है, ये संपूर्ण अवस्थाएं उसको छोड़ करके रहने में समर्थ के आश्रय में ये रहने वाली हैं, और उसी के आश्रय में रह करके क्या हो रही? क्रियान्वित हो रही। जैसे ये पुष्प है, ये पुष्प में ये नवीनता, ये सौंदर्यता कब आई? तो क्या कहो? सीधे सीधे तो नहीं आ गई, उसके लिए भी प्रक्रिया। बीज का जो है पृथ्वी के अंतर्गत बपन किया गया, पौधा बना, फिर उस पौधे में क्रम से जो है पत्ते, टहनी और पुष्प आदि तब आए। तो ये कब आए, तो पानी भी इसे मिला, सूर्य का प्रकाश भी इसे मिला, जमीन से अंश भी मिला, और ये सब जो है तेज आदि सब इसको जब मिले तब जाकर के ये कहीं पुष्प रूप में निर्मित हुआ, और ये पुष्प होकर के भी और फिर जर जाएगा, फिर नहीं रहेगा, फिर परिवर्तन हो जाएगा। तो अब पुष्प जो है, तो इस पुष्प में जो भी ये पांच भूत हैं, उन पांचों भूतों की सत्ता, लेकिन वह सत्ता जो है वो कैसी है, परिवर्तनीय, खंड से होकर के इसमें आई, लेकिन वह भी सत्ता कब आई इसमें, उसका भी मूल आश्रय क्या है, तो उसका प्रकृति का मूल आश्रय क्या कहा, आत्मा। आत्मा के बगैर ये जो है सब संभव, उस चेतना के बगैर, उस पूर्ण के बगैर ये सब संभव नहीं। तो संसार में जितनी भी अवस्थाएं हैं या जितने भी खंड हैं, उन खंडों में वह जिसे हम चेतन शक्ति कह देते, कहीं रूह कह देते, यदि उसका आश्रय न रहे तो क्या किसी पदार्थ की सत्ता हमें प्रतीत होगी, सत्ता प्रतीत नहीं। और सुसुप्ति में तो आप जान लेते हो कि इस अहम का भी अभाव हो जाता, इसलिए अहम कैसा हो गया, अहम एक वस्त्र की तरह हो गया, ऐसा मान लो हमने जागृत में वस्त्र धारण कर लिया और शाम को हमने वस्त्र को उतार दिया है? यही पंचदशी में जो है राज इत्यादि की भी चर्चा करते हैं, मुकुट आदि धारण करता फिर उतार दे, ऐसे ही अहम को हमने एक अवस्था विशेष में धारण किया और फिर उसको उतार भी दिया, लेकिन जिस समय उतारा उस समय कोई है कि नहीं, उस समय जो है उसी की दृष्टि है व्यापक, उसकी दृष्टि कैसी है, इसी को आप कहते हो हैं? कि दृष्टा जो है उसकी दृष्टि का परलोप नहीं होता, अन्य की दृष्टि का परलोप हो जाएगा लेकिन दृष्टा की दृष्टि का परलोप कभी नहीं होता। तो अब वो परलोप नहीं होता है तब कैसे समझा जाए, तो उसी के लिए गीता में आप पढ़ते भी हो हैं? पश्चन श्रवण हाँ, ये सब कुछ करते हुए भी और कुछ भी नहीं करता, ये बड़ी विलक्षण बात है। लेकिन कब, जिस समय इस आश्रय को अजान लेता, किसी को अन्यत्र भी कहा, सैव धन्य या आत्मज्ञ सर्वभावेशु सम, जो सर्वत्र उस आश्रय को देख लेता है, उस आत्म तत्व को देख लेता है, कहने लगे वो ही है सम, उसे क्या कहेंगे सम, उस मूल सत्ता को जो सर्वत्र देखने वाला है, तो कहने लगे जो सर्वत्र मूल सत्ता को देखने वाला है तो वो मूल सत्ता क्या है, इसी का नाम आत्मा कह दिया। क्यों, क्योंकि उसके अंदर व्यापकता, उसके अंदर कभी भी अभाव नहीं, वो अबाधित है। तो ऐसी सत्ता को देखने वाला जो है वही क्या है, कहा धन्य, कहा धन्य है, क्यों है धन्य, कहा जब उसने ऐसी सत्ता को देख लिया और उसका निश्चय कर लिया, निश्चय को ध्यान रखना, और उसका जब उसे निश्चय हो जाता है तब वो क्या करता है, सर्वभावेशु क्षमा, संपूर्ण भावों में वो उसी मूल को देखता है, तब विद्या में भी उसी को देख रहा है, अविद्या में भी, विद्या भी उसी के आश्रित है और अविद्या भी उसी के आश्रित है, उसके बगैर न विद्या हो सकती है न अविद्या हो। तो विद्या और अविद्या, संकल्प और विकल्प, निश्चय और अनिश्चय, ये भी सब कहां है, उसी एक ही सत्ता, उसका आश्रय वही। और ऐसा जिसने जान लिया वह आत्मज्ञा, ऐसा उस आत्म तत्व को जानने वाला, ऐसा आश्रय को जानने वाला, संपूर्ण भावों में क्या हो जाता है, सम्माने उसी आत्मा का निश्चय करने वाला हो जाता। और जो आत्मा का निश्चय करने वाला हो जाता है उसके लिए क्या होता, पश्यन श्रवण स्पर्शन जिघ्रन अस्नन निस्तर्स मानसः, यह अन्यत्र का श्लोक, यह गीता का नहीं, दूसरे गीता का। तब क्या होता है, तो होता यह है, कहने लगे जब इस प्रकार से उसका उसे निश्चय हो गया, तब पश्यन माने देखता हुआ और नहीं देख रहा, और न देखता हुआ देख रहा, ये दोनों ही बातें दोनों तरफ से, देखता हुआ नहीं देख रहा और न देखता हुआ भी वह देखता, क्योंकि वो आश्रय रूप उसकी दृष्टि, लेकिन कैसे देखता है और सबका व्यवहार वाली बातों कह दिया तो संकेत आकर गया निस्तर्ष मानसः, क्योंकि अब उसके अंतःकरण में कोई भी एषणा कोई भी ईहा नहीं रही। और एषणा का ईहा का समापन कब होता है? जब तक खंड रहेगा तब तक ईहा रहेगी, जब तक द्वैत रहेगा तब तक ईहा रहेगी। द्वैत को लेकर के ही सत्यता और आवश्यकता, असक्तता आवश्यकता ये सब रहते हैं। और जहां द्वैत ही नहीं है तो वहां सत्यता तो है लेकिन आवश्यकता नहीं, क्यों? वहां न्यूनता ही नहीं। तो इस प्रकार से जहां न्यूनता की प्रतीति होती है, आवश्यकता की प्रतीति होती है, वहीं पर जो है ईहा आदि होती है। लेकिन जब ऐसे आश्रय को, अखंड को जब उसने निश्चय कर लिया कि उसी आश्रय में ये सब कुछ है, तब जो है वो क्या देख रहा है? कहा अब उसके अंदर जो है जब वही सब कुछ है, उससे भिन्न कुछ नहीं है, अन्य तो परिधान किए हुए हैं, तो ऐसे अखंड में रहने वाला जो है फिर उसके अंदर कोई ईया होती नहीं। और ये भाव जब आ जाएगा तब जो है जहां पर भी वह देखेगा तो मूल सत्ता का निश्चय जिसके जीवन में हो गया, तो चाहे वो शत्रु हो चाहे मित्र हो और चाहे वो हाथी हो चाहे गऊ हो, उसमें मूल देखेगा। और सब क्या देखेगा? ये जो पुष्प है ये पुष्प कैसे हुआ? कहा उसी के माध्यम से हुआ, उसी की सत्ता को लेकर के हुआ। और ये पुष्प जो है पुष्प आकार तो है लेकिन नहीं भी रहेगा, ये भी निश्चय, लेकिन इसमें मूल सत्ता किसकी? ये निश्चय यदि उसको बना रहेगा तो उन पदार्थों में उस सत्ता को देखेगा, उनके रूप आदि को देख करके प्रसन्न भी होगा कि कितनी सुंदर उसकी कला है, तब उसके अंदर उसकी कला का। तो ऐसा निश्चय होना ये विद्यात्मक स्थिति, और इस विद्यात्मक स्थिति में वो जो है एक निश्चय पर होगा, निश्चय के समय उसे जो है इसी को जीवन मुक्ति कह देते। लेकिन जहां पर वह अधिष्ठान में अवस्थित हो गया, विद्या विद्या दोनों से रहित हो गया, उस समय क्या होता है? तो वो कैवल्य की स्थिति हो जाती, उसे क्या कह देते हैं? कैवल्य। तो इस प्रकार से अब जीवन के अंतर्गत यदि हम इसका ऐसा विवेक कर लेते हैं और विवेक करते हुए संसार के व्यवहार करते हैं तो हमारा है खंड, हमारा ये व्यवहार, ये तो खंड को लेकर के ही होगा, तो हमारा ये वर्ष भी कैसा होगा? खंड होते हुए भी यदि हमने ऐसा निश्चय कर लिया, ऐसा ज्ञान कर लिया, ऐसा ज्ञान करके हम वो जो है व्यवहारित होते हैं तो वो हमारे लिए दुखद नहीं, हमारे को सुख देने वाला होगा, हमारे अंदर नवीनता लाने वाला होगा। तो ये जब हमारे अंदर विचार आ जाता है तब तो बात बनती है, और ये विचार जब तक नहीं आता तो बात बनती। इसलिए भगवान शंकर के विषय में चर्चा आती, क्या थी? भगवान शंकर जो है जिस समय समाधि में बैठे हुए, आपकी सुसुप्ति उनकी समाधि ले लो, और समाधि में बैठे हुए तो क्या हुआ? देवताओं को जरूरत पड़ गई, इसलिए देवताओं ने जो है उनकी समाधि तोड़ने के लिए है प्रयास किया, साधना आदि इत्यादि करके सबको आगे करके। अब जब प्रयास किया तो वहां भगवान समान की समाधि जब टूटी, जैसे भी वो पूरी कथा नहीं, और जब टूटी तो क्या स्थिति थी? तो वहां एक बड़ा सुंदर कवि ने लिखा, एकम योग समाधिना मुकलितम नेत्रम द्वितीयम पुनः, संकेत किया एकम योग समाधिना मुकलितम, मुकलित होना माने अभी पुष्प पूरा खुला नहीं, अध खुला, ठीक है ना? तो उसे क्या कहते हो? मुकलित। उसे क्या कहते हो? मुकलित, माने कली अभी मुकलित हुई, अभी खिली नहीं, खिली तो पुष्प हो गई, तो मुकलित। तो वैसे ही भगवान की जब समाधि टूटी और तुड़वाई जब, तो क्या हुआ भगवान शिव का? कहने लगे एकम योग समाधिना मुकलितम, उस योग समाधि से भगवान का एक नेत्र मुकलित हुआ। और मुकलित हुआ का मतलब मैंने भी पूरा खुला नहीं। आप भी जब नींद में होते हो और कोई जगा देता है तो प्रारंभ में जो है पूरे नेत्र खुलते, क्योंकि वह नींद की खुमारी चढ़ी रहती। ऐसे ही भगवान जिस समाधि में थे और जिस अवस्था में थे, उस अवस्था की खुमारी उनमें थी, उनका नेत्र खुला तो लेकिन पूरा। और फिर कहने लगे नेत्रम द्वितीयम पुनः, दूसरा नेत्र खुला। तीन नेत्रों की कल्पना की गई उनकी है, त्र्यंबकम यजाम, इसलिए उन्हें त्र्यंबक भी कहा गया। अब जो है दूसरा नेत्र खुला तो कहने लगे श्रृंगार भारा लशक, दूसरा नेत्र खुला तो भगवान की दृष्टि कहीं अन्यत्र नहीं गई, देवताओं पर नहीं गई, अन्यत्र नहीं गई, कहां गई तो पार्वत्या, पार्वती के श्रृंगार को देखने लगे। क्या मतलब, पार्वती क्या प्रकृति? एक नेत्र खुला होता है तो कहने लगे भगवान जो है अपनी उस समाधि की खुमारी में ही, अभी जो है इधर उधर कहीं संकल्प विकल्प नहीं। लेकिन जैसे ही दूसरा नेत्र खुला तो अन्यत्र नहीं देख रहे, उस प्रकृति के श्रृंगार को देख रहे, प्रकृति के सौंदर्य को देख रहे। और प्रकृति क्या है, प्रकृति भी कोई दूसरी चीज नहीं। वैसे तो एक लक्षण कर दिया गया, श्रेष्ठा कृतिर या इति प्रकृति, जो श्रेष्ठ कृति है उसी का नाम क्या है, प्रकृति। और किसकी है तो वो बोबरी समास कर देते तो माने जिसकी है, तो उसी परमात्मा की है श्रेष्ठ कृति। और वो जब नेत्र उसने दूसरा खोला तो उस प्रकृति के श्रृंगार को देख रहा, उसके सौंदर्य को देख रहा, लेकिन अन्यत्र भी कहीं दृष्टि उसकी गई। और फिर कहने लगे, फिर क्या हुआ आगे दो नेत्र खुलने के बाद, तो अन्य दूर निरस्त चाप मदनस्त क्रोधा नले दीपिते संबोर भिन्न रसम समान समय नेत्रत्रय पात व। ये संकेत, इसका मतलब क्या, अकार उकार मकार आदि को हम लेते, ओम को सबसे श्रेष्ठ माना गया, तो यहां पर भगवान के नेत्रों को भी अकार उकार मकार भी कहा, त्र्यंबकम को कहा। और वहां संकेत किया गया ह्रस्व दहत पापानी, जब ओम का हम केवल ह्रस्व रूप से उच्चारण करते हैं तो क्या होता है, वो हमारे पापों को नष्ट कर देता। दीर्घ प्रणवम उच्चार्य मनोराज्यम विजीयते, और दीर्घ प्रणव का उच्चारण करते हैं तो क्या होता, हमारे मनोराज्य को ही वो विजय कर लेता, माने हमारा मन अन्यत्र नहीं जाता, प्रकृति के श्रृंगार को दिखता। ये भगवान शंकर से संकेत किया। और तीसरा नेत्र जब खुलता है तो जब ये स्थिति हो गई, ये सब साधन संपन्न स्थिति हो, ऐसी स्थिति होने पर ही फिर क्या है, तीसरा जो ज्ञान नेत्र करके कहते, उस ज्ञान में क्या होता, कहा कामना ही भस्म, वहां कोई कामना शेष नहीं है। तो क्रोधा नले दीपिते, जैसे ही तीसरा नेत्र खुआ तो वो जो काम जो था पहले ही उसने चाप आदि फेंक दिए और भागने लगा। देवता कहने लगे संगर संगर महाराज ठहरो ठहरो, लेकिन तब तक तो वो जल गए। अर्थात ऐसे आश्रय तत्व में सदा रहने वाले भगवान शिव हैं, और ऐसे आश्रय तत्व का ही जब हमें बोध होता है और संसार प्रकृति का कार्य का बोध होता है, तब हमारे अंदर ये निश्चय होने पर जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्थाओं को लेकर के, जैसे सुसुप्ति अवस्था में वहां कुछ भी नहीं रहता है लेकिन अविद्या आदि है, लेकिन वो एक अवस्था विशेष है, और वहां पर जो स्थिति होती वो हमें अनुभव कराती है कि इससे आगे जो स्थिति है वो मात्र क्या है, वो अखंड है, और ये खंड से, तो उस अखंड का ही निश्चय हम जब खंडों में कर लेते हैं, और निश्चय जब खंडों में हो जाता है तो खंडों में रहते हुए भी वह खंड हमें दुखित, वह खंड हमें नूतनता प्रदान करते रहते हैं, और उन खंडों में भी फिर विद्या विनय ब्राह्मणे गव्यस्तिनी इत्यादि की स्थिति बनी रहती है। तो यहां संकेत ये है, हमारे भारतवर्ष की ये संस्कृति है, जैसे कार्तिक के बाद आप जो है क्या मानते हो, नववर्ष मानते हो कार्तिक को लेकर, उधर जो है चैत्र मास को लेकर के नवरत्र मानते हो, तो दोनों की जगह पर जब ऐसी चेतना आ जाती जो फल्गुता है व्यर्थता है उसको जब हमने जला दिया, फाल्गुन शब्द का तात्पर्य ये, और कार्तिक का मतलब है कृंतिकतरणी अर्थ में धातु, अर्थात जहां पर जो अशुभ है, अर्थात जो दुखद है, जो हमारे रोग कारक है, जो वर्षा होती तो दुनिया के कीकरण पैदा हो जाती, लेकिन अब सफाई आदि करके दीपक आदि के माध्यम से जिनको हमने जला करके नष्ट कर दिया, तब क्या होगा, उनको जब काट दिया, उनका खत्म कर दिया, तब हमारे जीवन में वो आश्रय और सुंदर मार्ग आता है और उस मार्ग में को लेकर के जब हम चलते हैं तभी हमारे जीवन में नूतनता, तभी हमारा खंड हमारा वर्ष नवीन होता है। इसलिए यहां से उसको संकेत किया तो इसका मतलब सीधा सा हो गया कि जो विद्या आदि का कार्य है उस सारे के सारे कार्य का आश्रय क्या है और जो विद्या का कार्य है उसका भी आश्रय क्या है। उस आश्रय का जब निश्चय हो जाता और उसका निश्चय हो करके और हम फिर व्यवहार करते हैं तो चाहे जो व्यवहार हो लेकिन वहां पर भी हम देखते हुए नहीं देखते और न देखते हुए भी देखते। और ये स्थिति जब हो जाती जिसका मतलब क्या सर्वत्र एक आत्म तत्व को हम देखते हैं और जब ऐसा देख करके हम व्यवहार करते हैं खंड से करते हैं तो उस खंड में भी नवीनता बनी रहती है। ऐसा तात्पर्य है। बोलो सच्चिदानंद भगवान।
0: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 spiritual channels from shaivam.org. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Dear listeners of shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Umeshanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: श्वेताश्वतर उपनिषद के दूसरा अध्याय का सातवां मंत्र देखना।

पूर्वियम् तत्र योनिम् प्रिणवसे नहि ते पूर्तमक्षिपात्। ये क्या बतला रहे हैं? सवित्रा प्रसवेन, सवित्रा माने सविता देव, ये दोनों अर्थ है। सविता सूर्य को भी कहते हैं, सविता परमात्मा को भी कहते हैं। तो कहते सवित्रा, सविता परमात्मा, परमात्मा को खुश करने से क्या फायदा है, अनुज्ञा लेने से क्या फायदा है, ये पूछते हैं, और ना लेने से क्या नुकसान है। तो कह ना लेने से नुकसान होगा, कर्म में आसक्ति होगी, जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहना पड़ेगा, और लेने से क्या होगा, अंतकरण शुद्ध होगा, ज्ञान होगा, अज्ञान की निवृत्ति होगी, मोक्ष मिलेगा। है नहीं बात? ये बात इसमें होता रहे। सवित्रा माने सविता, ये सवित्रा है ना, ये तृतीयांत है, याद रखना। तो सवित्रा प्रसवेन, सविता देवता के प्रसन्नता से, प्रसव कहते हैं उत्पन्न करना, है नहीं बात? माया प्रसवितम जगत, जगत जो है संसार माया के द्वारा प्रसवित हुआ माने उत्पन्न हुआ। तो अन्न, खेती अन्न को प्रसव करते हैं, खेती होते ना, खेती खेत करते हैं ना, धान और मेते, तो अन्न पैदा करते हैं। अन्नात भवन्ति भूतानि, है ना, गीता में आया कि नहीं? इष्टान भोगाने बोधेवा दश्यन्ते यज्ञ भाविताः, यज्ञ द्वारा प्रेरित होकर के तुम्हारे को क्या देगा, देवता लोग इष्ट भोग देगा। इष्टान भोगाने देवा दश्यन्ते यज्ञ भाविताः, तैर

0: हाँ भूख लगाना चाहिए। वेद में मंत्र आता है नाभ्या आसीद अंतरिक्ष पुंशिष्णो दियो समवर्तत पद्भ्याम भूमिर्दिश श्रोत्रात लोकान अकल्पयन्ना। इस मंत्र के द्वारा भोग लगा तैयार रखना। क्यों नहीं रहेगा? रहेगा, परंतु ऐसा है ना, किसी व्यक्ति को आपके घर में कोई व्यक्ति आया, कोई महापुरुष आया, कोई अतिथि आया, तो उनको मीठी वाणी के उनके वाणी के द्वारा स्वागत करेंगे, खुश होता है, है नहीं बात? होता है कि नहीं? तो यदि अपने ढंग से करेंगे तो आप खुश होंगे, समझे कि नहीं? इसीलिए कहना देखो, भगवान भाव भी देखते हैं, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं ना, विधि प्रधान होते हैं। कुछ कर्म ऐसा होता है ना, विधि प्रधान, वहां भाव नहीं दिखता है, विधि दिखता है। जैसा कर्मकांड जितना भी है सब विधि के अनुसार। वो भक्ति करते हो भाव प्रधान है, भक्ति करते हैं ना वहां भाव प्रधान है, और कर्मकांड विधि प्रधान है। जैसा विधि करेंगे ना ऐसे फल मिलेगा, विधि निषेध है। आर्य समाज विधि ही है। वो हवन आदि कराते हैं, हमेशा आहुतियां देते हैं, वैदिक वो वेद को मानते ज्यादा, आपका वो भक्ति भक्ति नहीं मानते।
1: पौराणिक नहीं मानते हम
0: लोग।
1: अपना यहाँ पौराणिक भी होता है ना
0: सभी। वो तो स्मार्त कर्म होता है। श्रोत तो कल के प्रसंग में बतलाया था ना, इष्ट अनिष्ट श्रोत स्मार्त कर्म है नहीं बात। इष्ट कर्म पूर्त कर्म, पूर्त कर्म पुराण पौराणिक है, इष्ट कर्म स्रोत है वैदिक है। तो इसी का भाष्य चला था, कहाँ तक हुआ आपको बतलाया है ना, ब्रह्म आने वा ईश्वर जीव नहीं, ईश्वर माया विशिष्ट चेतन का नाम ईश्वर है। माया में पड़ा हुआ जो शुद्ध ब्रह्म का जो प्रतिबिंब है उसको ईश्वर कहते, और अविद्या में मलिन सत्वगुण प्रधान जो प्रकृति है अविद्या है उसमें शुद्ध ब्रह्म का जो प्रतिबिंब पड़ा है वो जीव बना है। तो जीव ईश्वर दोनों माया के कारण है। आप दोनों उपाधि को हटाए बिना तत्त्वमस्यादि महावाक्यों के द्वारा अभिद नहीं होता है। अभिद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उपाधि हटाना पड़ेगा। तो उपाधि केवल एक का हटाने से, अहम ब्रह्मास्मि कहने से नहीं होगा, समझे कि नहीं? दोनों की उपाधि हटाना पड़ेगा। ईश्वर की उपाधि जो माया है और जीव की उपाधि जो अविद्या है, तो अविद्या का आवरण और माया का आवरण दोनों हटाना पड़ेगा। तो शुद्ध चेतन एक ही है, शुद्ध चेतन एक ही है। जैसे हमें पंचदशी में आपको बतलाया गया, स्वतः चीज अंतर जामितु मायावी सूक्ष्म सृष्टि तह, सूक्ष्म सृष्टि स्वतः चित, स्वतः जब रहेगा अविद्या अविद्या के कार्य से परे, माया माया के कार्य से जो परे रहेगा स्वतः, उनका नाम चीत है, उसको कहेंगे सदघन चित घन आनंद घन है आने पर। ये सत रहेगा माया और माया के कार्य से, अथवा प्रकृति प्रकृति के कार्य से जो परे रहेगा, वो जो इसके यहाँ पूर्व बतलाया काल के प्रसंग में, पूर्वीयम ब्रह्म निष्ठा कराओ दूषित, पहले ब्रह्म के निष्ठा करो।

0: पहले पहले पूर्व वाले पहले किससे पहले काल बताया था, ख्याल नहीं है। पूर्व में जाओ, पश्चिम को छोड़ो और पहले पश्चिम से शुरू करो। जैसे आपको कल बताया था, एक गुलाब का फूल है, गुलाब का फूल या गुलाब का फूल था, आप गुलाब का फूल है, दोनों में अंतर क्या है? गुलाब का फूल था, ये भूतकाल है, भूतकाल आनी बात तो था, जो भूतकाल है अभी नहीं है, परंतु गुलाब का फूल है ये वर्तमान में है, आप गुलाब का फूल देख रहे हो, आनी बात तो गुलाब का फूल देखने वाला कौन है? नेत्रा है। तो नेत्रा को पहले गुलाब के फूल से पहले रहना चाहिए कि नहीं? नहीं रहना चाहिए। अच्छा नेत्रा है तो फूल से पहले नेत्रा है, और नेत्र से पहले कौन है? अरे मन है कि नहीं? मन नहीं है, मन है। हाँ क्या? हाँ मन से पहले कौन है? बुद्धि है। बुद्धि से पहले अहंकार है, अहंकार से पहले महातत्व है। महातत्व बुद्धि तो एक ही है, समझ लेना, समझते बैठे। महातत्व से परे अहंकार है, अहंकार से परे प्रकृति, प्रकृति ना तो प्रधान, उसको प्रधान कह दे। प्रकृति, प्रकृति से महातत्व, महातत्व से अहंकार, अहंकार से पंचतन मात्रा, पंचतन मात्रा से सोलह गण। आप यहां से आप ऊपर से नीचे आओ, तो ऊपर से नीचे आने के लिए पहले कहां जाने का वाला? ओ प्रकृति जिसके आश्रम में रहते, माया। माया ऐसा है ना, विशुद्ध सत्ता प्रधान, जो विशुद्ध सत्ता गुण प्रधान जो प्रकृति है ना, उसको माया कहते हैं। पर अविद्या भी उसी का ही, प्रकृति का ही एक अंश है। उसमें मलिन सत्तगुण प्रधान, मलिन सत्तगुण प्रधान जो प्रकृति है ना, उसको अविद्या कहते हैं। नहीं बात, माया अविद्या विहाय एवं, माया अविद्या दोनों को छोड़ करके त्याग करके शुद्ध ब्रह्म को जानो। तो माया और अविद्या दोनों क्या है? उपाधि है। और शुद्ध ब्रह्म कैसा है? निरुपाधिक है, उपाधि रहित। आवरण तो उपाधि से आएगा ना, जैसे पर्दा डाला आपने, पर्दा ने क्या किया? आवरण आच्छादन किया। तो उपाधि तो आवरण हुआ कि नहीं? क्या आच्छादन किया? भीतर वाला को बाहर देखने नहीं देता, बाहर वाला को भीतर नहीं देखता। जैसे स्टेज बनाते ना, कल बनाएंगे ना आप यहाँ, कल बनाएंगे ना साक लीला में, तो जो बढ़िया बढ़िया सब मीठे मीठे अंदर ढक देंगे कि नहीं ढक देंगे? सब पन्न को ढक देंगे, तो बाहर वाला ऐसा देखते रहा, क्या क्या सजाया, क्या क्या सजा, बाहर वाला देखेगा कि नहीं? दिखता रहेगा, जरा सा पर्दा हटा ऐसे देखेगा। तो पर्दा जब डालते हैं ना, पर्दा माने आवरण, तो आवरण क्या करते हैं? बीच में रुकावट पैदा करते हैं। तो बाहर वाला भीतर वाला को नहीं देखता, पर्दा के भीतर जो रहता है, और पर्दा के भीतर जो रहने वाला बाहर वाला को नहीं देखता है। तो दोनों का जो एक करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो ऐसे हमारे भीतर एक आवरण पड़ा है अविद्या का, उस अविद्या के आवरण ने कुटस्थ और जीव दोनों को अलग कर दिया। कुटस्थे कल्पिता बुद्धि तत्रचित प्रतिबिंबक प्राणानाम धारणा जीवा संसार न सजते। कुटस्थ आत्मा है, हाँ, कुटस्थ में कल्पित जो बुद्धि है, बुद्धि में पड़ा हुआ जो चेतन का आभास है, उस आभास का नाम जीव। तो बीच में बुद्धि आ गई, बुद्धि का आवरण आ गया, तो आवरण ने क्या कर दिया? बाधित करेगा, आवरण में ढक दिया। क्या ढक दिया? कुटस्थ को। तो वह पंचदशी में इसको समझाने के लिए कुटस्थ अनिवाद घटाकाश महाकाश जलाकाश और मेघाकाश एक ही आकाश को चार भाग किया है। पहला कारण महाकाश, महाकाश के बाद जलाकाश आता है, नहीं मेघाकाश, मेघाकाश के नीचे कुटस्थ घटाकाश, घटाकाश के बाद जलाकाश, ये चार आकाश है। तो और आकाश महाकाश के जगह में ब्रह्म समझ लेना, मेघाकाश के जगह में ईश्वर समझ लेना, और घटाकाश के जगह में कुटस्थ समझ लेना, जलाकाश के जगह में जीव समझ लेना, आई बात। ये चार चेतन हो गया, जीव चेतन, कुटस्थ चेतन और ईश्वर चेतन और ब्रह्म चेतन। चेतन एक ही है, चेतन में भिन्नता नहीं है, भिन्नता केवल समझाने के लिए कल्पना की गई है। हाँ भासता है, एक ही वस्तु को समझाने के लिए ये चार विभाग किया है, है नहीं बात। तो आप कौन सा चेतन है? हाँ जल से जल जलाकाश, यानी बात जलाकाश जीव चेतन। तो जलाकाश ने क्या कर दिया? कुटस्थ चेतन को ढक दिया। जैसे घटाकाश को जल ने ढक दिया ना, ऐसे कुटस्थ आत्मा को जीव चेतन ने ढक दिया। तो ढकने से क्या हुआ? जैसे वो जलाकाश में आकाश का प्रतिबिंब पड़ता है बाहर का, वो भीतर के जो आकाश है वो देखने में नहीं आता, ऐसे कुटस्थ जो आत्मा है, कुटस्थ आत्मा को जीवात्मा ने ढक दिया। कैसे ढक दिया? जल रूपी उपाधि से, जलाकाश। आप ढकने के बाद में ये जीव चेतन अपने को शरीर मान करके अथवा कर्ता भोक्ता मान करके सुखी दुखी हो रहा है। बात समझ में आई ना? जलाकाश रूपी जो जीव चेतन है, ये जीव चेतन ने क्या कर दिया? अपने स्वरूप को अज्ञान के कारण, आवरण के कारण, अविद्या के कारण ढक दिया। तो ढक देने से अपने स्वरूप को जानता नहीं, मैं जो कुटस्थ स्वरूप हूं इस बात को नहीं जानता, न जान करके अपने को अज्ञान के कारण अपने को शरीर मान रहा है, कर्ता भोक्ता सुखी दुखी संसारी मान रहा है। ये अब कहते साहब, ये तुम अपने को मान्यता दे रखा है मैं शरीर हूं देह हूं, तो इसका हटा दो। तो कैसे हटाएंगे? तो अविद्या हटेगा। हाँ सदा विचार है तस्मात, हमेशा विचार करो, विचार के द्वारा। क्या विचार करे? जीव क्या है, जगत क्या है, परमात्मा क्या है, जीव जगत और परमात्मा, ये तीनों का विचार करो। तो विचार करते करते करते करते जीव भी और जगत भी बाधित हो जाएगा। हाँ धीरे धीरे, बिना विचार से नहीं होता, क्योंकि शास्त्रकार कहते न उत्पद्यते बिना ज्ञानम विचारे न अन्य साधने। तुम कर्म करो, उपासना करो, ध्यान करो, धारणा करो, सब कुछ करो, परंतु ज्ञान होने वाला नहीं है। अब तुम एमए पास करने के लिए तुमको तो ना धूप दीप ध्यान करके उपासना करके बैठ जाओ तो होगा? एमए पास करोगे? क्यों? भगवान के नाम लेने से एमए पास हो जाता है। कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण करते रहो, राम राम राम राम राम राम राम करो, दिन भर करते रहो, एमए पास हो जाओगे? एमए पास करने के लिए करना क्या पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा, ABCD से शुरू करके तुमको आगे बढ़ना पड़ेगा। जब तक ABCD पढ़ोगे नहीं तो आगे CA टिकट, RA टिकट, FAT टिकट कैसे करोगे? पहले एबीसीडी पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? तो ऐसे एबीसीडी पढ़ करके आगे बढ़ो, आ का खा पढ़ करके आगे बढ़ो, तब आगे बढ़ोगे। तो जब तक तुम अभ्यास नहीं करोगे वो तब तक तुम एमए का सर्टिफिकेट ले नहीं सकते हो, है नहीं बात? ऐसे नव पद्धति बिना ज्ञानम विचारे न अन्य साधन। जब तक तुम वेदांत वाक्यों का विचार नहीं करोगे, वेदांतार्थ विचारे न जायते ज्ञानम उत्तमम, वेदांत के अर्थ का जब विचार करोगे तो उत्तम ज्ञान होगा। और कोई साधन तुम्हारे पास है नहीं, कर्म ज्ञान नहीं देता है, कर्म क्रिया प्रधान है, समझेंगे नहीं? क्रिया करो, क्रिया करो, करो चित्त से शुद्ध है कर्म न तो वस्तु उपलब्ध है। भाष्य का शंकराचार्य महाराज जी ने विवेक चूड़ामणि में बतला दिया, चित्त से शुद्ध कर्म न तो वस्तु उपलब्ध है, वस्तु सिद्धि विचारे न, वस्तु की सिद्धि विचार से ही होगा। तो तमस्यादि महावाक्यों का विचार करो, वेदांत वाक्यों का विचार करो, वेदांत वाक्यों का विचार किए बिना ज्ञान होने वाला नहीं है। हाँ, वेदांतार्थ विचारे न जायते ज्ञानम उत्तमम, उत्तम ज्ञान होगा। ये तो ज्ञान है, संसार में खाने पीने का भी ज्ञान है, लेन देन का भी ज्ञान है, सोने जागने का भी ज्ञान है, ज्ञान तो है, परंतु ये ज्ञान तुमको संसार के बंधन से छुड़ाने वाला नहीं है। आने पर ज्ञान तो सब वस्तु सभी जीवों में है। ऐसा कौन सा प्राणी है जिसको खाने पीने का ज्ञान नहीं है? ऐसा कौन सा प्राणी है जिसको सोने जागने का ज्ञान नहीं है? ऐसा कौन सा जीव है शत्रु मित्र का ज्ञान नहीं है? देखो, चींटियों में लड़ाई होती है, पशुओं में लड़ाई होती है, पक्षियों में लड़ाई होती है, होती है कि नहीं होती है? क्यों? वो भी दुश्मन समझते हैं कि नहीं? अरे इसका तो जानना चाहिए, डिस्कवरी टीवी देखो, टीवी में डिस्कवरी आता है एक, और फॉक्स आता है, फॉक्स हिस्टोरिकल, उस जियोग्राफिकल, उसको देखो, फिर संसार में जो ईश्वर की सृष्टि के विषय में आपको ज्ञान अच्छी तरह से हो जाएगा। गजब की अनुसंधान किया करते हैं इन लोग, जलीय जंतुओं का, जल के अंदर रहने वाला कैसे भयंकर भयंकर जीव है, पर्वत में रहने वाला, गुफा में रहने वाला, बिल के अंदर रहने वाला, प्राणियों के विषय में ज्ञान करना, प्राप्त करना है। हम तो कल सुनते हैं 84 लाख दुनिया, कितना दुनिया है? 84 लाख दुनिया। तो आप कितना दुनी को जानते हैं? बोला हम अपने को नहीं जानते, 84 लाख। आप ही 84 लाख होने के विषय में जानना, ये टीवी का देखो, खोज किया है उसने, खोज करता, नया नया खोज करता, इन लोग इतने इतना साहस है। अभी उसमें आदमखोर मच्छी के अंदर घुस गया, मच्छी ने निकल दिया एक आदमी को भयंकर।
1: Thank you. Thank you.

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।

0: नमः लोलगण्डकाय नमः ललामसोमलूतादये नमः ललितापूजिताय नमः लवाय नमः वामनाय नमः वायुरूपाय नमः वराहमतनाय नमः वटवे नमः वाक्यजाताय नमः वराय नमः वार्याय नमः वरुणोढ्याय नमः वराश्रयाय नमः वपुषे नमः धराय नमः वर्षवराय नमः वरीयसे नमः वरदाय नमः वराय नमः वसुप्रदाय नमः वसुपतये नमः वन्दारुजनपालकाय नमः शान्ताय नमः शमपराय नमः शास्त्रे नमः शमनान्तकराय नमः शठाय नमः शङ्खहस्ताय नमः शत्रुहन्त्रे नमः शमिताखिलदुष्कृताय नमः शरहस्ताय नमः शतावृत्ताय नमः शतक्रतुवरप्रदाय नमः शम्भवे नमः शम्याकपुष्पार्च्याय नमः शङ्कराय नमः शतरुद्रगाय नमः शम्याकराय नमः शान्तमनसे नमः शान्ताय नमः शशिकलाधराय नमः षडाननगुरवे नमः षण्डाय नमः षट्कर्मनिरताय नमः शगवे नमः षड्जातिरसिकाय नमः षष्ठाय नमः षष्टिप्रीताय नमः षडङ्गवते नमः षडूर्मिरहिताय नमः षष्ट्याय नमः षिड्गाय नमः षाड्गुण्यदायकाय नमः सत्यप्रियाय नमः सत्यधाम्ने नमः संसाररहिताय नमः समाय नमः सख्यै नमः सन्दानकुशलाय नमः सर्वसम्पत्प्रदायकाय नमः सगराय नमः सागरान्तस्थाय नमः सत्राशाय नमः शरणाय नमः सहाय नमः साम्बाय नमः सनातनाय नमः साधवे नमः सारासारविशारदाय नमः सामगानप्रियाय नमः साराय नमः सरस्वत्यासुपूजिताय नमः हतारातये नमः हंसगतये नमः हाहाहूहू स्तुतिप्रियाय नमः हरिकेशाय नमः हरिद्राङ्गाय नमः हरिण्मणिसरोहठाय नमः हरिपूज्याय नमः हराय नमः हार्याय नमः हरिणाङ्कशिखण्डाय नमः हाहाकारादिरहिताय नमः हनुनासाय नमः हहुङ्कृत्याय नमः लालाननाय नमः लतासोमाय नमः लक्ष्मीकान्तवरप्रदाय नमः लम्बोदरगुरवे नमः लभ्याय नमः लवलीशाय नमः ललायगाय नमः क्षयद्वीराय नमः क्षमायुक्ताय नमः क्षयादिरहिताय नमः क्षमिने नमः क्षत्रियान्तकराय नमः क्षान्ताय नमः क्षात्रधर्मप्रवर्तकाय नमः क्षयिष्णुवर्धनाय नमः क्षान्ताय नमः क्षपणाथकलाधराय नमः क्षपादिपूजनप्रीताय नमः क्षपणान्ताय नमः क्षराक्षराय नमः रुद्राय नमः मन्यवे नमः सुधन्वने नमः बाहुमते नमः परमेश्वराय नमः स्विषवे नमः स्विष्टकृते नमः ईशानाय नमः शरव्याधारकाय नमः यूने नमः अघोराय नमः तनुमते नमः देवाय नमः गिरीशाय नमः पाकशासनाय नमः गिरित्राय नमः पुरुषाय नमः प्राणाय नमः पञ्चप्राणप्रवर्तकाय नमः अध्यवोचाय नमः महादेवाय नमः अधिवक्त्रे नमः महेश्वराय नमः ईशानाय नमः प्रथमाय नमः देवाय नमः भिषजाम्पतये नमः ईश्वराय नमः ताम्राय नमः अरुणाय नमः विश्वनाथाय नमः बभ्रवे नमः सुमङ्गलाय नमः नीलग्रीवाय नमः शिवाय नमः हृष्टाय नमः देवदेवाय नमः विलोहिताय नमः गोपवश्याय नमः विश्वकर्त्रे नमः उदहार्यजनेक्षिताय नमः विश्वदृष्टाय नमः सहस्राक्षाय नमः मीरुष्ठाय नमः भगवते नमः हराय नमः शतेषुधये नमः कपर्दिने नमः सोमाय नमः मीडुष्टमाय नमः भवाय नमः अनाततय नमः अतिधृष्णवे नमः சத்வநாம் ரக்ஷகாய நமஹ, பிரபவே நமஹ, விஸ்வேஸ்வராய நமஹ, மகாதேவாய நமஹ, த்ரயம்பகாய நமஹ, த்ரிபுராந்தகாய நமஹ, த்ரிகாக்னிகாலாய நமஹ, காலாக்னிருத்ராய நமஹ, நீலாய நமஹ, அதிபாய நமஹ, அநிலாய நமஹ, சர்வேஸ்வராய நமஹ, சதாசம்பவே நமஹ, ஸ்ரீமதே நமஹ, மிருத்யுஞ்ஜயாய நமஹ, சிவாய நமஹ, ஸ்வர்ணபாஹவே நமஹ, சைன்யபாலாய நமஹ, திஷாதிஷாய நமஹ, வனஸ்பதயே நமஹ, ஹரிகேஷாய நமஹ, பசுபதயே நமஹ, உக்ராய நமஹ, சஸ்பிஞ்சராய நமஹ, அந்தகாய நமஹ, துஷீமதே நமஹ, மார்கபாய நமஹ, பப்ரவே நமஹ, திவ்யாதினே நமஹ, அன்னபாலகாய நமஹ, புஷ்டாய நமஹ, பவாதிபாய நமஹ, லோகநாதாய நமஹ, ருத்ராததாயிகாய நமஹ, க்ஷேத்ரேஷாய நமஹ, சூதபாய நமஹ, அஹந்த்யாய நமஹ, வனபாய நமஹ, ரோஹிதாய நமஹ, ஸ்தபாய நமஹ, விருக்ஷேஷாய நமஹ, மந்த்ரஜாய நமஹ, வாண்யாய நமஹ, புவந்த்யாய நமஹ, வாரிவஸ்கிருதாய நமஹ, ஓஷதீஷாய நமஹ, மஹாகோஷாய நமஹ, க்ரந்தனாய நமஹ, பத்திநாயகாய நமஹ, கிருஷ்ணவீதினே நமஹ, தாவமானாய நமஹ, சத்வநாம்பதயே நமஹ, அவ்யயாய நமஹ, சஹமானாய நமஹ, நிர்வியாதயே நமஹ, அவ்யாதயே நமஹ, ககுபாய நமஹ, நடாய நமஹ, நிஷங்கினே நமஹ, ஸ்தேனபாய நமஹ, கக்ஷாய நமஹ, நிசேரவே நமஹ, பரிசாரகாய நமஹ, ஆரண்யபாய நமஹ, ஸ்ருகாவினே நமஹ, ஜிகாம்சவே நமஹ, முஷ்ணபாய நமஹ, அசிமதே நமஹ, நக்தஞ்சராய நமஹ, ப்ரக்ருந்தாய நமஹ, உஷ்ணீஷினே நமஹ, கிரிசஞ்சராய நமஹ, புலுஞ்சாய நமஹ, இஷுமதே நமஹ, தன்வினே நமஹ, ஆதன்வதே நமஹ, பிரதிதானவதே நமஹ, ஆயச்சாய நமஹ, விசுஜாய நமஹ, ஆத்மனே நமஹ, வேதனாய நமஹ, ஆசனாய நமஹ, பராய நமஹ, ஷயனாய நமஹ, ஸ்வாபகிருதே நமஹ, ஜாக்ரதே நமஹ, ஸ்திதாய நமஹ, தாவனகாரகாய நமஹ, சபாபதயே நமஹ, துரங்கேஷாய நமஹ, உகணாய நமஹ, த்ரும்ஹதயே நமஹ, குரவே நமஹ, விஸ்வாய நமஹ, ப்ராதாய நமஹ, கணாய நமஹ, விஸ்வரூபாய நமஹ, வைரூப்யகாரகாய நமஹ, மஹதே நமஹ, அணீயசே நமஹ, ரதபாய நமஹ, சேனான்யே நமஹ, க்ஷத்ரசங்கிரஹாய நமஹ, தக்ஷ்ணே நமஹ, ரதகாராய நமஹ, குலாலாய நமஹ, கர்மகாரகாய நமஹ, புஞ்சிஷ்டாய நமஹ, நிஷாதாய நமஹ, இஷுக்ருதே நமஹ, தன்வகாரகாய நமஹ, மிருகயவே நமஹ, ஸ்வானபாய நமஹ, தேவாய நமஹ, பவாய நமஹ, ருத்ராய நமஹ, சர்வகாய நமஹ, பசுபாய நமஹ, நீலகண்டாய நமஹ, க்ஷிதிகண்டாய நமஹ, கபர்தப்ருதே நமஹ, யுக்தகேஷாய நமஹ, சஹஸ்ராக்ஷாய நமஹ, சததன்வனே நமஹ, கிரீஷ்வராய நமஹ, சிபிவிஷ்டாய நமஹ, மீடுஷ்டமாய நமஹ, இஷுமதே நமஹ, ஹ்ரஸ்வாய நமஹ, வாமனாய நமஹ, பஹுவர்ஷ வயசே நமஹ, விருத்தாய நமஹ, சம்ருத்வசே நமஹ, பிரதமாய நமஹ, அக்ரியாய நமஹ, ஆஷவே நமஹ, அஜிராய நமஹ, சீக்ரியாய நமஹ, சீப்யாய நமஹ, ஊர்மியாய நமஹ, வஸ்வன்யாய நமஹ, ஸ்ரோதாய நமஹ, தீப்யாய நமஹ, ஜேஷ்டாய நமஹ, கனிஷ்டாய நமஹ, பூர்வஜாய நமஹ, அபராய நமஹ, மத்யாய நமஹ, அபகல்பாய நமஹ, ஆஷுஷேணாய நமஹ, ஆஷுரதாய நமஹ, சூராய நமஹ, பிந்திவர்மத்ருஷே நமஹ, வரூதினே நமஹ, பில்மினே நமஹ, கவசினே நமஹ, ஸ்ருதசேனாய நமஹ, துந்துபயே நமஹ, த்ருஷ்ணவே நமஹ, பிரஹிதாய நமஹ, தூதாய நமஹ, நிஷங்கிணே நமஹ, தீக்ஷ்ணசாயகாய நமஹ, ஆயுதினே நமஹ, ஸ்வாயுதினே நமஹ, தேவாய நமஹ, உபவீதினே நமஹ, சுதன்வத்ருஷே நமஹ, ஸ்ருத்யாய நமஹ, பத்யாய நமஹ, காட்யாய நமஹ, நீப்யாய நமஹ, சூத்யாய நமஹ, சரோத்பவாய நமஹ, நாத்யாய நமஹ, வைஷந்தாய நமஹ, கூப்யாய நமஹ, அவட்யாய நமஹ, வர்ஷ்யாய நமஹ, மேக்யாய நமஹ, வைத்யுதாய நமஹ, ஈத்ரியாய நமஹ, ஆதப்யாய நமஹ, வாதோத்தாய நமஹ, ரஷ்மிஜாய நமஹ, வாஸ்தவாய நமஹ, அஸ்துபாய நமஹ, சோமாய நமஹ, ருத்ராய நமஹ, தாம்ராய நமஹ, அருணாய நமஹ, சங்காய நமஹ, ஈஸ்வராய நமஹ, உக்ராய நமஹ, பீமாய நமஹ, அக்ரேவதாய நமஹ, தூரேவதாய நமஹ, ஹந்த்ரே நமஹ, ஹனீயசே நமஹ, ருக்ஷாய நமஹ, ஹரிகேஷாய நமஹ, பிரதர்தனாய நமஹ, தாராய நமஹ, சம்பவே நமஹ, மயோபுவே நமஹ, சங்கராய நமஹ, மயஸ்கராய நமஹ, சிவாய நமஹ, சிவதராய நமஹ, தீர்த்தாய நமஹ, கூல்யாய நமஹ, பார்யாய நமஹ, வார்யாய நமஹ, பிரதரணாய நமஹ, உத்தரணாய நமஹ, ஆலாத்யாய நமஹ, ஆதார்யாய நமஹ, ஷஷ்ப்யபேனஜாய நமஹ, சிகத்யாய நமஹ, பிரவாஹ்யாய நமஹ, இருண்யாய நமஹ, பிரமதாய நமஹ, கிம்ஷிலாய நமஹ, க்ஷயனாய நமஹ, பூலகாய நமஹ, கோஷ்ட்யாய நமஹ, புலஸ்த்யாய நமஹ, க்ருஹ்யாய நமஹ, தல்ப்யாய நமஹ, கேஹ்யாய நமஹ, காட்யாய நமஹ, கஹ்வரேஷ்டாய நமஹ, ஹ்ரதோத்பவாய நமஹ, நிவேஷ்ட்யாய நமஹ, பாம்சுமத்யஸ்தாய நமஹ, ரஜஸ்யாய நமஹ, ஹரிதஸ்திதாய நமஹ, சுஷ்க்யாய நமஹ, லோப்யாய நமஹ, உலப்யாய நமஹ, ஊர்மியாய நமஹ, சூர்மியாய நமஹ, பர்ணஜாய நமஹ, பர்ணஷத்யாய நமஹ, அபகுரகாய நமஹ, அபிக்னோத்கித்ய கோவிதாய நமஹ, அவகிரிகாய நமஹ, ஈசானாய நமஹ, தேவாதிஹ்ருதயாந்தராய நமஹ, விக்ஷீணகாய நமஹ, விசின்வத்யாய நமஹ, ஆனிர்ஹதே நமஹ, ஆமிவத்ககாய நமஹ, த்ராபயே நமஹ, அந்தஸ்வதயே நமஹ, தாத்ரே நமஹ, தரித்ரதே நமஹ, லீலலோஹிதாய நமஹ, தவஸ்வதே நமஹ, கபர்தீஷாய நமஹ, க்ஷயத்வீராய நமஹ, கோஹனாய நமஹ, புருஷந்தாய நமஹ, கர்த்தகதாய நமஹ, யூனே நமஹ, மிருகவரோக்ரகாய நமஹ, மிருடாய நமஹ, ஜரித்ரே நமஹ, ருத்ராய நமஹ, மீட்யாய நமஹ, தேவபதயே நமஹ, ஹரயே நமஹ, மீடுஷ்டமாய நமஹ, சிவதமாய நமஹ, பகவதே நமஹ, அர்ணவாந்தராய நமஹ, சிகினே நமஹ, ப்ரித்திவாசசே நமஹ, பினாகினே நமஹ, விருஷபஸ்திதாய நமஹ, அக்னீஷவே நமஹ, வர்ஷேஷவே நமஹ, வாதேஷவே நமஹ, ப்ரித்திவீஸ்தாய நமஹ, திவிஷ்டாய நமஹ, அந்தரிக்ஷஸ்திதாய நமஹ, ஹராய நமஹ, அப்சுஸ்திதாய நமஹ, விஸ்வநேத்ரே நமஹ, பதிஸ்தாய நமஹ, விருக்ஷமூலகாய நமஹ, பூதாதிபாய நமஹ, ரமதபாய நமஹ, அவபலாய நமஹ, சஹஸ்ராஸ்யாய நமஹ, சஹஸ்ரநயன ஸ்ரவசே நமஹ, ரிக்கணாத்மனே நமஹ, யஜுர்மத்யாய நமஹ, சாமமத்யாய நமஹ, கணாதிபாய நமஹ, ஊர்மியாய நமஹ, வர்ஷீஷபரமாய நமஹ, சிகாயை நமஹ, ஸ்துத்யாய நமஹ, அனசூயகாய நமஹ, மைத்ராயணாய நமஹ, மித்ரகதயே நமஹ, தண்டுப்ரீதாய நமஹ, ரிடிப்ரியாய நமஹ, உமாதவாய நமஹ, விஸ்வபர்த்ரே நமஹ, விஸ்வஹர்த்ரே நமஹ, சநாதனாய நமஹ, சோமாய நமஹ, ருத்ராய நமஹ, மேகபதிவங்கவே நமஹ, மருதாம்பித்ரே நமஹ, அருஷாய நமஹ, அத்வரேஸ்வராய நமஹ, ஜலாஷபேஷஜாய நமஹ, பூரிதாத்ரே நமஹ, சுஜன்வினே நமஹ, சுராய நமஹ, சம்ராஜே நமஹ, புராம்பிதே நமஹ, துக்கஸ்தாய நமஹ, சத்பதயே நமஹ, பாவனாய நமஹ, க்ரதவே நமஹ, ஹிரண்யரேதசே நமஹ, துரதர்ஷாய நமஹ, விஸ்வாதிகாய நமஹ, உருக்ரமாய நமஹ, உருகாயாய நமஹ, அமிதகுணாய நமஹ, மகாபூதாய நமஹ, த்ரிவிக்ரமாய நமஹ, அமிர்தாய நமஹ, அஜராய நமஹ, அஜய்யாய நமஹ, ருத்ராய நமஹ, அக்னயே நமஹ, புருஷாய நமஹ, விராஜே நமஹ, துஷாராஜே நமஹ, பூஜிதபதாய நமஹ, மகாஹர்ஷாய நமஹ, रसात्मकाय नमः महर्षये नमः बुद्धिदाय नमः गोप्त्रे नमः गुप्तमन्त्राय नमः गतिप्रदाय नमः गन्धर्वगानप्रीतात्मने नमः गीतप्रीताय नमः पुरुषासनाय नमः विद्वेषणहराय नमः हार्याय नमः हर्षक्रोधविवर्जिताय नमः भक्तप्रियाय नमः भक्तिवश्याय नमः भयहृते नमः भूतसङ्घविदे नमः भुवनेशाय नमः भूधरात्मने नमः विश्ववन्द्याय नमः विशोषकाय नमः ज्वरनाशाय नमः रोगनाशाय नमः मुञ्जिकेशाय नमः वरप्रदाय नमः पुण्डरीकमहाहाराय नमः पुण्डरीकत्वगम्बराय नमः आखण्डलमुखस्तुत्याय नमः कुण्डलिने नमः कुण्डलप्रियाय नमः चण्डांशुमण्डलान्तस्थाय नमः शशिखण्डशिखण्डकाय नमः चण्डताण्डवसन्नाहाय नमः चण्डकोपाय नमः अखिलाण्डगाय नमः चण्डिकापूजितपदाय नमः मण्डनाकल्पकाण्डजाय नमः रणशौण्डाय नमः महादण्डाय नमः तुहुण्डवरदायकाय नमः कपालमालाभरणाय नमः तारणाय नमः शोकहरणाय नमः विधारणाय नमः शूलकराय नमः दर्शणाय नमः शत्रुमारणाय नमः गङ्गाधराय नमः गरधराय नमः त्रिपुण्ड्रवलिभासुराय नमः शम्बरारिहराय नमः दक्षहराय नमः अन्धकहराय नमः हराय नमः विश्वजिते नमः गोजिते नमः ईशानाय नमः अश्वजिते नमः धनजिते नमः ऊर्वराजिते नमः उद्वजिते नमः सर्वजिते नमः सर्वहारकाय नमः मन्दारनिलयाय नमः नन्दाय नमः कुन्दमालाधराय नमः अम्बुदाय नमः नन्दिप्रीताय नमः मन्दहासाय नमः सुरवृन्दनिषेविताय नमः मुचुकुन्दार्चितपदाय नमः द्वन्द्वहीनेन्द्रार्चिताय नमः विश्वाधाराय नमः विश्वनेत्रे नमः वीतिहोत्राय नमः विनीतकाय नमः शङ्कराय नमः शाश्वताय नमः शास्त्रे नमः सहमानाय नमः सहस्रदाय नमः धीमाय नमः महेश्वराय नमः नित्याय नमः अम्बरान्तनर्तनाय नमः उग्राय नमः भवहराय नमः धौम्याय नमः धीरोदात्ताय नमः विराजिताय नमः वञ्चकाय नमः नियताय नमः विष्णवे नमः परिवञ्चकाय नमः ईश्वराय नमः उमावरप्रदाय नमः मुण्डिने नमः जटिलाय नमः शुचिलक्षणाय नमः चर्माम्बराय नमः कान्तिकराय नमः कङ्कालवरवेषधृषे नमः मेखलिने नमः अजिनिने नमः दण्डिने नमः कपालिने नमः मेखलाधराय नमः सद्योजाताय नमः कालिपतये नमः वरेण्याय नमः वरदाय नमः मुनये नमः वसाप्रियाय नमः वामदेवाय नमः तत्पूर्वाय नमः वटमूलगाय नमः उलूकरोम्ने नमः घोरात्मने नमः दास्यप्रीताय नमः लघवे नमः स्थिराय नमः अणोरणीयसे नमः ईशानाय नमः सुन्दरभ्रुवे नमः सुताण्डवाय नमः किरीटीमालाभरणाय नमः राजराजलसद्गतये नमः हरिकेशाय नमः मुञ्जिकेशाय नमः व्योमकेशाय नमः यशोधराय नमः पातालवसनाय नमः भर्त्रे नमः क्षिपिविष्टाय नमः कृपाकराय नमः हिरण्यवर्णाय नमः दिव्यात्मने नमः वृषधर्मणे नमः विरोचनाय नमः दैत्येन्द्रवरदाय नमः वैद्याय नमः सुरवन्द्याय नमः अघनाशकाय नमः आनन्देशाय नमः कुशावर्ताय नमः नन्द्यावर्ताय नमः मधुप्रियाय नमः प्रसन्नात्मने नमः विरूपाक्षाय नमः वनानां पतये नमः अव्ययाय नमः मस्तकादाय नमः वेदवेद्याय नमः सर्वस्मै नमः ब्रह्मौदनप्रियाय नमः पिशङ्गीतटजटाजूटाय नमः तडिल्लोकविलोचनाय नमः गृहाधाराय नमः ग्रामपालाय नमः नरसिंहविनाशकाय नमः मत्स्यघ्ने नमः कूर्मपृष्ठस्थितिधराय नमः भूधारधारकाय नमः विदीन्द्रपूजितपदाय नमः पारदाय नमः वारिधिस्थिताय नमः महोदयाय नमः महादेवाय नमः महाबीजाय नमः महांगधृषे नमः उलूकनागाभरणाय नमः विधिकन्धरपातनाय नमः आकाशकोशाय नमः हार्दात्मने नमः मायाविने नमः प्रकृतेः पराय नमः शुक्लाय नमः त्रिशुक्लाय नमः त्रिमधवे नमः त्रिसुपर्णाय नमः षडङ्गविते नमः ललनाजनपूज्याङ्घ्रये नमः लङ्कावासाय नमः अनिलाशनाय नमः विश्वतश्चक्षुषे नमः ईशानाय नमः विश्वतोबाहवे नमः ईश्वराय नमः सर्वात्मने नमः भावनागम्याय नमः स्वतन्त्राय नमः परमेश्वराय नमः विश्वभक्षाय नमः विद्रुपाक्षाय नमः सर्वदेवशिरोमणये नमः ब्रह्मणे नमः सत्याय नमः आनन्दाय नमः ज्ञानानन्दमहापलाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः इति श्री शिवरहस्ये भर्गाख्ये पञ्चमांशे चत्वारिंशोऽध्याये शिवसहस्रनामावलिः सम्पूर्णम्।
1: ॐ नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।

0: நமஹ சிவாய. யூஆர் லிஸ்னிங் டு shaivam.org ரேடியோஸ் 24/7 ஸ்பிரிச்சுவல் சேனல்ஸ் ஃப்ரம் shaivam.org. ஓம் நம சிவாய.
1: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் shaivam.org, தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம் presented by Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: तब वो भी विश्रांति खोजता है, शरीर भी विश्रांति चाहता है, इंद्रियां भी विश्रांति चाहते हैं, मन भी विश्रांति चाहता है. तब इस अवस्था में विश्रांति के लिए कहां जाएं? जागृत में जहां भी जाओगे परिश्रमी ही होगा, स्वप्न में तुम जहां भी जाओगे परिश्रम ही होगा. तब परमात्मा की कृपा है कि सुसुप्ति एक ऐसी अवस्था बना दी कि गहरी निद्रा में चला जाता है. थकने के बाद जागृत स्वप्न उपभोगा भोग उत्थ, जागृत भोग स्वप्न भोग से उत्पन्न हुआ हुआ विश्रांति यानी थकान, श्रम थकान, उसकी विश्रांति के लिए विच्छित हेतवे उस थकान को, उस श्रम को हटाने के उद्देश्य से, कम करने के उद्देश्य से, सुसुप्तिम पुरुषे प्राप्ते शरीरम अविरक्षितुम, उस अवस्था में जीवात्मा सुसुप्ति अवस्था में चला जाता है, गहरी निद्रा में जाता है. क्यों जाता है? परिश्रम को कम करने के लिए, थकान मिटाने के लिए. जो थक गया शरीर परिश्रम से, इंद्रिय मन उसके विश्रांति के लिए गया. अब वो आत्मा सुसुप्ति में चला गया, फिर शरीर की रक्षा कौन करेगा? बोलो. तो परमात्मा की यह व्यवस्था है कि तू जा थोड़े आराम कर ले, इस तब तक जब तक तू आराम करेगा तब तक इसकी रक्षा करने का काम यह करेगा. कौन करेगा? प्राण. यह परमात्मा की व्यवस्था है. तू जब तक करना है कर ले ना, तू आराम कर ले जा, ये करेगा. आप लोग भी शिफ्ट चेंज करते हो कि नहीं? आप लोग भी तो शिफ्ट चेंज करते हो ना. अब यह आश्चर्य की बात है कि प्राण उस शिफ्ट चेंज नहीं करता है, आत्मा शिफ्ट चेंज कर ले, इंद्रियां शिफ्ट चेंज कर ले, मन कर ले, आराम कर ले वे, लेकिन प्राण जागृत में भी कर्म करता है और स्वप्न में भी, सुसुप्ति में भी, तीनों अवस्था में प्राण कर्म करता रहता है. इसलिए वो क्यों नहीं थकता है? क्योंकि उसमें चेतना नहीं है, क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है, संवेदना नहीं है. संवेदना होती तो वह परिश्रम से थक जाता. वो भी उसमें संवेदना नहीं है, इसलिए वो थकता नहीं. तो लगा हुआ एक बार बना दिया नियम, वो लग गया, ऑटोमेटिक हो गया. वो संवेदना नहीं, वो क्यों जागता रहता है? वो क्यों विश्रांति को प्राप्त नहीं होता? क्योंकि उसके ऊपर बड़े भारी जिम्मेवारी रहती है. क्या जिम्मेवारी है उस प्राण के ऊपर? बोले इंद्रियां भी हराम हो गई, जब खाने को मिले तो सब जग जाते हैं, है? थोड़ा रस और पूरी सामने आए तो देखो जुआ कैसे छटपटाता है. ये हराम है, खाने के लिए तो तत्पर है. और शरीर के टिकाने रखने क्या, ये इसको कोई भाना ही नहीं है, शरीर की कोई चिंता नहीं है इस इंद्रियों को. मन को भी वही हालत है, उसको अपना विषय मिलता रहे तो देखो, और लेकिन उसको भी शरीर की चिंता नहीं है. जब अपने आप विश्राम करना होता है तो वो चुपचाप चले जाते हैं, सब मिलकर यूनियन की तरह. यूनियन स्ट्राइक करते हैं कि नहीं? एक एक नहीं, एक ही साथ यूनियन की तरह स्ट्राइक कर देते हैं और चले जाते हैं. मांड में जाए शरीर, हमको तो आराम करना है. अरे भाई तुमको आराम करना है, शरीर की रक्षा कौन करेगा, हमको इसकी चिंता नहीं है। अरे मूर्खो तुमको चिंता नहीं, हमको तो चिंता है ना, तो परमात्मा को चिंता है, इसीलिए प्राण की ड्यूटी लगा दिया कि तू इसको टिकाए रखना, ये हरामी जब तक उठ कर नहीं आएंगे, हाँ ये तेरी जिम्मेवारी है, ख्याल रखना। तो शरीर मान लो कि पूरे शरीर की मालिक वही प्राण है, जैसे मालिक को ही ज्यादा चिंता है कि मेरे फैक्ट्री को कैसे संभाल चलाना है, लेबर को कोई चिंता नहीं, तो स्ट्राइक में चले जाएंगे, अपने मतलब के लिए हैं ये इंद्रियां तो सब लेबर हैं, हैं? मान लो प्राण मालिक की तरह है। जागृत स्वप्नोपभोगोत्थ श्रम विच्छित्ति है तवे सुसुप्तिम पुरुषे प्राप्ते शरीरम अविरक्षितुम शेष कर्म उपभोगार्थम प्राण चरति केवलम। इस शरीर को टिकाने की चिंता क्यों हुई भाई, चाहे परमात्मा को हुई हो, चाहे प्रकृति को हुई हो, चाहे प्राण को ही हुई हो, इंद्रियां और अंतकरण ये सब सुसुप्ति में विश्राम के लिए चले जाते हैं, तब शरीर को टिकाने की चिंता परमात्मा को क्यों हुई, प्रकृति को क्यों हुई, या समझ लो कि प्राण को ही क्यों हुई, इसका कारण क्या है। ये इंद्रियां सब आराम चले गए तो शरीर नष्ट हो जाओ और क्या, कह दो इंद्रियों को जब जगे, अरे हमारा गोला कहां गया, बोले तुम हराम हो, कोई एक ही साथ चले गए, तुमने चिंता ही नहीं किया, हम सब जाने के बाद इसका क्या होगा, तुमने चिंता नहीं किया, तो तुम लोग चले गए तो नष्ट हो गया, हम क्या करें, कह देते जवाब दे देते है? वो भी नहीं चलेगा। बताया यहां ये ध्यान देना, शेष कर्मोपभोगार्थम, बाकी जो बचे हुए कर्म का भोग करना आवश्यक है, और भोग किए बिना ये कर्म समाप्त होंगे नहीं। और इंद्रियां करण सुसुप्ति में जाते ही शरीर नष्ट हो जाएगा, तो बाकी शेष प्रारब्ध, बाकी शेष कर्म, शुभाशुभ कर्म फिर कहां भोगेगा, कब भोगेगा, फिर न जाने कब उसको शरीर मिले, तो फिर जब सुसुप्ति में गए फिर दोबारा पैदा होना पड़ेगा, फिर सुसुप्ति में गया शरीर नष्ट हो गया, फिर दूसरा शरीर पैदा हो, फिर सुसुप्ति से जागे, फिर शरीर जागे तब तक भोग कर लो, फिर भोग से थक जाएंगे, क्योंकि ये तो थकने वाले हैं, ये तो बता ही रहे हैं, इंद्रियां और करण तो थकने वाले ही हैं, कुछ दिन थक जाएंगे, कहेंगे हम आराम करने जाएंगे, तब तक शरीर नष्ट हो जाएगा, तो फिर बाकी भोगने के लिए क्या करोगे, बोले दूसरा शरीर तैयार करो, इससे अच्छा तो जो शरीर पहले बन चुका है कुछ दिन इसी को टिकाओ। ये सब विश्राम करते रहेंगे, आते रहेंगे, भोगते रहेंगे, विश्राम करते रहेंगे, आते रहेंगे, फिर भोगते रहेंगे, फिर विश्राम करने जाएंगे, फिर जग कर आएंगे, इस शरीर में रहकर फिर भोग को भोगेंगे, फिर थकेंगे, जाएंगे, ये काफी दिन चलेगा। शेष कर्मोपभोगार्थम प्राणश्चरति केवलम। जीवात्मा चिदाभास इंद्रियों के सहित करणों के सहित जब विश्राम को गया, जगने के बाद फिर इसको अपने कर्मों का फल भोगना है, और इस शरीर के बिना कर्मों का फल भोग नहीं पाएगा, इसलिए इसको टिकाए रखना बहुत जरूरी है। ये मानते हुए वो प्राण इस शरीर को टिकाए रखने के लिए सुसुप्ति में जीव सहित करण जाने पर भी प्राण संचरित करता रहता है, शरीर को टिकाए रखता है, फिर ये जीवात्मा करणों के साथ जब जगता है इसी शरीर में आता है, फिर और कर्मों के फलों को भोगता है, फिर थक जाता है, वो चला जाता है विश्राम करने, तब तक प्राण इसकी रक्षा करता है, फिर ये उत्थान को प्राप्त होते हैं, फिर इन्हीं गोलोकों में बैठते हैं, अपने शुभाशुभ कर्म को भोगते हैं, फिर थक जाते हैं, फिर चले जाते हैं, प्राण का काम है कि इसको टिकाए रखना, उसके लिए वह संचरित करता रहता है। लेकिन इतनी मात्रा से उसको आत्मा मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि ज्ञान नहीं है, संवेदना नहीं है, चेतना नहीं है उनमें। ये बात अलग है कि चेतना न होने पर भी जीवन के लिए बड़े उपकारक है, बड़े काम की चीज है, शरीर को टिकाए रखता है, अन्न को पचाए रखता है, रक्त का संचार करता रहता है। प्राणस्य तत्र चैतन्यम करुणो परमे यदि प्राणे व्यप्रियमाणे तो करुणो परम कथम साम्राज्य रणोद्युक्ते विरमन्ति न सैनिकाः। दृष्टांत दिया लौकिक। प्राण यदि वास्तव में आत्मा होता तब प्राण के चलते, प्राण के रहते, प्राण के मौजूद काम करते हुए फिर इंद्रियां और अंतःकरण विश्राम नहीं कर पाता। यदि प्राण ही मालिक होता, प्राण ही आत्मा होता, तब प्राण के कर्म करते रहने पर इंद्रियां और अंतःकरण विश्राम को प्राप्त नहीं कर पाते। उदाहरण दिया, आजकल तो ऐसा नहीं माना जाता, लेकिन उदाहरण दिया सुरेश्वराचार्य जी ने, जैसे सम्राजी ही रणोद्युक्ते विरमंती न सैनिका। राजा रणभूमि में डटा रहे, युद्ध में लगे रहे, और सारे के सारे सैनिक कहें कि तुम लड़ना हो तो लड़ लो, हम तो आराम करने जाएंगे, ये संभव होगा है? राजा युद्ध भूमि में खटा रहे, डटा रहे, और सैनिक कहे कि हम थक गए हैं, आराम करने जाएंगे, ऐसा नियम है क्या कहीं है? प्राण क्या हुआ, यहां उपमा क्या दी? प्राण मान लो कि सम्राट है ना, और वास्तव में प्राण सम्राट होता, सम्राट का अर्थ यहां ले लेना आत्मा, वास्तव में प्राण आत्मा ही होता, परमात्मा ही होता, तब तो प्राण क्रियाशील होते हुए इंद्रियां और करण, अंतःकरण ये विश्राम नहीं कर पाते। जैसे राजा काम लड़ते हुए, राजा यदि युद्ध में लड़ रहा हो तो सेना विश्राम नहीं कर पाते। सेना को आराम करने को कब मिलता है? तो या तो राजा आराम कर रहा हो तो वो भी आराम करे, तो फिर राजा कौन होगा? बोले प्राण को राजा तो नहीं मान सकते, तो राजा कोई और होगा। सुषुप्ति अवस्था में इंद्रियां सब काम क्यों करती हैं? नहीं, सुषुप्ति अवस्था में इंद्रियां क्यों विश्राम करती हैं? अंतःकरण क्यों विश्राम करता है? प्राण क्यों काम करता है? तो कई बार होता है कि राजा आराम भी कर ले तो सेनापति के साथ युद्ध होता रहता है, सेनापति लड़ता रहता है, राजा आराम करेगा सेनापति लड़ेगा, सेनापति के साथ और सैनिक लड़ेंगे, कई बार ऐसा होता है। क्योंकि इन सब का जो मालिक है सम्राट, तो आत्मा इनसे भिन्न है, वो आराम करने चला गया, इसलिए ये इंद्रियां भी, सैनिक भी आराम करने चले गए, युद्ध की विश्रांति हुई। तब तक शरीर को कौन टिकाएगा? बोले प्राण टिकाएगा, बस खत्म हो गई बात। तो आत्मा माने प्राण को सम्राट की तरह नहीं लेना चाहिए, आत्मा की जगह नहीं लेनी चाहिए। इस भाव से यह सिद्ध हो गया कि भोग में कभी भी सुख नहीं है, इस दृष्टांत से भोग से उपरम में ही सुख है। तृष्णाक्षय सुख से इते कलम नारहंती षोड़शे, शास्त्रों में लिखा है तृष्णा समस्त तृष्णाओं का क्षय होने पर जो सुख की प्राप्ति होती है, उस सुख की जगह ये विषय भोग से प्राप्त होने वाला सुख तो एक कला भी नहीं है, 16 कला में से एक कला भी नहीं है, 16वीं कला भी नहीं है विषय भोग से प्राप्त होने वाला सुख। किस सुख के सामने? तृष्णा क्षय जन्य सुख के सामने भोग जन्य जो सुख है वह एक कला के बराबर भी नहीं है। इसलिए तो कहा है ना, न सुखम देवराज से न सुखम चक्रवर्ती ना, यत सुखम वीतराग से मुने रेकांतवासिना से बिना। जो सुख चक्रवर्ती को है, जो सुख सम्राट को है, जो सुख इंद्र को है, इन लोगों को होने वाला सुख तो उस योगी को चित्तवृत्ति निरोध करके विश्रांति को प्राप्त हुआ हुआ जो योगी है, तृष्णा रहित एकाद सेवन करने वाला जो योगी है, उस योगी को जो सुख प्राप्त होता है उसकी 16वीं कला के बराबर भी नहीं है इंद्र का सुख, चक्रवर्ती सम्राट का सुख। तो किस भ्रांति में पड़े हो संसार के लोग, इन वाक्यों से यही सिद्ध हो रहा है। लेकिन इन संसारियों को कौन उपदेश करने जाएगा? ये है ये उपदेश इन संसारियों को, भोग विलास में लगे हुएओं को ये उपदेश सुनाने कौन जाएगा भाई? महात्मा लोग एक दृष्टांत देते हैं। एक राजा था, बड़ा विलासी था, उसको अपने राज्य की कोई चिंता ही नहीं थी, उसको भोग ही चाहिए, लंपट था, विषय आसक्त था। और राजा के विषय आसक्ति के चलते राष्ट्र नष्ट हुए हुए कई उदाहरण हैं, इतिहास है कि नहीं हमारे? राजाओं के भोग विलास में चलते राज्य की व्यवस्था खत्म हुई और राष्ट्र चौपट हुआ, प्रजा दुखी हुए, विप्लव हुआ है, अशांति हुई है। ऐसे तो कई इतिहास हमारे भारतीय इतिहास को पढ़ने में मिलता है। तो एक महात्मा थे, उनके मन में ये आ गए कि इस राजा को थोड़ा सा सावधान तो करना चाहिए। तो कहते हैं कि महात्मा भी बहुत उठपटांग होते हैं कभी कभी, और उनकी उठपटांगी ही बहुत काम करती है, बड़ा हितकारी हो जाता है। तो कहते हैं कि राजा जिस समय विलास में, भोग विलास में लगा हुआ था, रात्रि के समय में सुरा और सुंदरी के मस्ती में लगा हुआ था, महात्मा चले गए उसके छत में जाकर जोर जोर से नाचने लगे, उछलने लगे, कूदने लगे, इधर से उधर, उधर से उधर दौड़ने लगे। और स्वाभाविक ही है कि नीचे भोग और विलास में लगे हुए को विक्षेप होना स्वाभाविक ही था।

दिगंबर आ और एकदम उछल रहा है, कूद रहा है। तो यहां क्यों उछल रहा है, क्यों कूद रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर क्यों दौड़ रहा है? तो महात्मा ने कहा कि मेरी कमंडलू खो गई, उसको खोज रहा हूं। तो राजा ने पूछा, कमंडलू खो गई और मेरे छत में? जहां खो गई है वहीं खोजना चाहिए मूर्ख, और मेरे छत में? तेरा कमंडलों का क्या संबंध है? तू कब आया था यहां? कभी नहीं आया था। फिर तो जहां कमंडलू खो गई है वहीं खोज, यहां क्यों? बोले ठीक है, तुम मुझे तो कह रहे हो कि यहां कमंडलू खोजने से नहीं मिल सकता है, और तुम क्या कर रहे हो? तुम भी तो वही काम कर रहे हो, तुम विषयों में सुख खोज रहे हो तो मिलेगा, और विषयों में सुख मिलता है तो तुम्हारे छत में मेरी कमंडल क्यों नहीं मिल सकती है? विषयों में सुख मिल सकता है तो फिर तुम्हारे छत में मेरे कमंडल क्यों नहीं मिल सकता है? और यदि तुम्हारे छत में मेरा कमंडल नहीं मिल सकता है तो यह निश्चय समझ लेना कि इन विषयों में तुम्हें भी सुख नहीं मिलेगा। यह तो सुख की भ्रांति है, यह भ्रांति टूटना बहुत जरूरी है। फिर मारा सुख कहां है लेव जी? और ये तू बता, मेरा कमंडलो कहां मिलेगा, तू ही बता। बोले तुम्हारी कमंडलो जहां तुम बैठे थे वहां जहां छूटा है वहीं आसपास में खोज लो, नदी के किनारे में कहीं छूट गया हो है? तुम सन्यासी हो, नदी किनारे घूमते हो, वहीं कहीं छूटा हो? बोले वो तो मुझे भी पता है कि नदी किनारे में मिलेगा, फिर यहां क्यों खोजने आए? बोले मूर्ख, तुझे पता नहीं है ना कि सुख आनंद आत्मा में मिलेगा, कहीं और जगह मिलेगा, वो बताने के लिए आया हूं। इन विषयों में नहीं मिलने वाला है सुख। न सुखम देवराजस्य न सुखम चक्रवर्तिना यत् सुखम वीतरागस्य मुनि रेकांतस्य विनः तस्मान्न कर्णस्वामी प्राणो भवति मर्हति मनस प्रेरके पुंसि विरते विरमस्त्यतः कर्णानि समस्तानि तेषां स्वामी ततः पुमान। तब फिर क्या मन आत्मा है? बोले आत्मा भी मन आत्मा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मन क्षणिक है और आत्मा क्षणिक नहीं हो सकता है। बुद्धि क्षणिक है, वह भी आत्मा नहीं हो सकता है, और सभी इंद्रियों का समूह भी आत्मा नहीं हो सकता है, क्योंकि संघात यदि आत्मा मानते हैं तो एक इंद्रिय के नष्ट होने पर और सब निष्क्रिय हो जाएंगे। आपके गाड़ी में सब कुछ ठीक है और एक टायर यदि खत्म हो गया, पंचर हो गया, तो सारे गाड़ी बेकार चला गया कि नहीं? सब मिलकर ही तो गाड़ी गाड़ी बना हुआ है, और एक ब्रेक खत्म हो गया तो सारा गाड़ी बेकार हो गया। ये अवयवों से बना हुआ, मिलकर संघात से जो बना हुआ होता है उसमें एक की कमी से सब कुछ निष्क्रिय हो जाते हैं। सारे इंद्रियों और करणों को मिलाकर आत्मा, समूह रूप आत्मा मानोगे तो उसमें से एक इंद्रियों के विकल होने पर और सब कुछ विकल बेकार हो जाएंगे, इसलिए समूह को भी आत्मा नहीं मान सकते। येषां संघात आत्मा चेद एक देशे पृथक्कृते न चैतन्यं प्रसज्येत संघाता भावतस्तदा। देहस्यान्तर्गतोऽप्यात्मा व्याप्य एवेति बुध्यते अणु प्रमाण चेदेश व्यापनुयाद् नाखिलं वपुः। तब फिर आत्मा को क्या मानना चाहिए, कैसा मानना चाहिए? कहीं विचार होने पर अनेक मतभेद खड़े हो गए। किसी ने कहा कि आत्मा बिल्कुल अणु है, अति सूक्ष्म है, संघात स्थूल है, स्थूल आत्मा नहीं तो अति सूक्ष्म आत्मा है। तो कहा कि सूक्ष्म अणु भी आत्मा नहीं हो सकता है। देह परिमाण का आत्मा है, जैसे कि कुछ लोगों ने माना है, देह परिमाण भी आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि बालक था उस समय उस परिमाण का आत्मा था, यौवन हो गया तो देह बड़ा हो गया, तो फिर वह आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त नहीं होगा,
तो क्या फिर आत्मा भी यौवन के साथ बढ़ता जाएगा? फिर उसके बाद बूढ़ा हो गया तो आत्मा भी बूढ़ा होने लगेगा।

0: और मरने के बाद उसको कर्म अनुसार चींटी में जाना हो तो फिर कैसा आत्मा हो, फिर हाथी में जाना हो तो देह परिमाण, आत्मा का परिमाण आकार फिक्स नहीं मानना चाहिए। जैसे कि किसी लोगों ने कहा जितना बड़ा शरीर है उतना ही आत्मा है, इस तरह मानते। ऐसे हमको किसने सुनाया है, आजकल एक धर्म चला हुआ है और बड़ा उनकी प्रसिद्धि है, बहुत जगह है, वो लोग कहते हैं कि स्त्री एक बार स्त्री हो गई तो उस स्त्री आत्मा स्त्री शरीर छोड़ने पर पुरुष शरीर प्राप्त नहीं कर सकता, पुरुष एक बार पुरुष हो गया तो उस पुरुष आत्मा पुरुष शरीर छोड़कर स्त्री शरीर को प्राप्त नहीं कर सकता, मनुष्य एक बार मनुष्य हो गया तो मनुष्य शरीर छोड़कर पशुआदि योनि को प्राप्त नहीं कर सकता, पशु एक बार पशु हो गया उस शरीर को छोड़ने के बाद मनुष्य आदि शरीर को प्राप्त नहीं कर सकता। ये शत प्रतिशत मूर्खता का ही लक्षण है, ये शास्त्र का अध्ययन न करने का प्रतिफलन है कि आत्मा कोई ईंट बनाने के मशीन में सांचे में बनाया गया आत्मा नहीं है, क्योंकि शरीर में एक बार आत्मा बन गया तो वही शरीर मिले तो फिट बैठे और वो शरीर न मिले तो फिट न बैठे, ये तो मूर्खता का लक्षण है। ये आत्मा पर विचार न करने वालों की ऐसी अभिव्यक्ति है। ये सारे के सारे विभेद किसके चलते हैं, तो एषमेषा महामाया बाधीनाम अपि मोहिनी यत् साक्षात् कृते सद्यो लीयते च सदा शिव। ये तो केवल भगवान शिव के साक्षात्कार जब तक नहीं करोगे तब तक इस प्रकार के बात विवाद और मतवाद संप्रदाय होते रहेंगे, आत्मा के बारे में कोई निश्चय नहीं कर पाएगा। ज्ञानमूर्ति दक्षिणामूर्ति शिव की कृपा होगी तब फिर वह माया मोहिनी माया शक्ति विलास कल्पित महा व्यामोह संहारिणे, उस व्यामोह का संहार करने की क्षमता केवल एकमात्र शिव में है, उनके कृपा से ही माया शक्ति का विलास नाश होगा, तप यह भ्रांति नष्ट हो जाएगी तो यथार्थ आत्मा का अपरोक्ष हो सकता है। ऐसे कृपालु गुरु मूर्ति को हम नमस्कार करते हैं और आगे क्या कहेंगे कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम
1: हरि ओम।
2: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
3: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Ganampulla Nayanar Puranam, presented by Sri Singapur Shankara Narayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
4: Om Namah Shivaya. Bhakton, abhi hum aur ek Dakshin Bharatiya Sant ya Nayanmar ki kahani sunenge, jinka naam Ganampulla hai. पेरिय पुराणम में तीन ऐसे भक्तों का उल्लेख मिलता है जो शिव मंदिर में दीप सेवा के लिए समर्पित हो गए थे, नमिनंदी अड़िगल, कलियर और कन्नम पुल्लर। प्रस्तुत कथा कन्नम पुल्लर के अद्भुत भक्तिभाव और त्याग की कथा है। वडवेला नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है इरुकुवेरूर नामक स्थल। यहाँ एक शक्तिशाली धनाढ्य परिवार में कन्नम पुल्लर का जन्म हुआ। वे मानते थे कि शिव चरण सेवा ही वास्तविक धन है, शेष सब नश्वर है। अपना जीवन लक्ष्य ईश के मंदिर में दीप जलाना और जगमग ज्योति का विस्तार करना ही मानकर ये इस कार्य में पूरी लगन से लग गए। एक बार कन्नम पुल्लर तिल्लई चिदंबरम पहुंचे। वहां वे तिरुमपुलीश्वर के मंदिर में दीप जलाने के कार्य में रत हो गए। अपार स्नेह दृढ़ आस्था युक्त भक्तिभावना से इन्होंने अपना सर्वस्व दीप सेवा में अर्पित कर दिया। जब सभी आर्थिक साधन समाप्त हो गया तो घास काटने के काम में जुट गए। उस घास को बेचकर प्राप्त की हुई धनराशि से वे चिदंबरम के पवित्र दीप की ज्योति जलाते। एक बार घास काटने के बाद वे उस बाजार में बेचने गए पर कोई ग्राहक नहीं मिला तो उसी घास को एक वर्तिका का आकार देकर उसे एक दीप ज्योति के समान शिव मंदिर में जलाने लगे। पर देवालय के मंदिर के दीपक चलाने के लिए घास पर्याप्त न था, उसी क्षण एक अद्भुत विचार उनके हृदय में जागृत हुआ और उन्होंने अपने केशपाश से ही दीपक की वर्तिका के रूप में जला डाला। उनके इस अद्भुत कार्य से उनके समस्त कर्म बंधन विनष्ट हो गए और उन्हें शिवलोक में स्थान मिला। ओम नमः शिवाय।
3: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
3: ओम नमः शिवाय।

0: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், த நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் சிவானந்த லஹரி, பிரசன்டட் பாய் சுவாமி ஸ்ரீ ஆத்மானந்த கிரிஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
1: அஷ்டாங்க யோக சாதனா ந கர்க்கே, சித்த விருத்தி நிரோத நை கர் சகே, தொ உஸ்கே விகல்ப கே ரூப் மே மஹர்ஷி பதஞ்சலி நே ஈஸ்வர பிரணிதானாத் வா யே கர் தியா, யே தூஸ்ர சூத்ர கா நிர்மாண் கர் தியா. வா மானே விகல்ப, சித்த விருத்தி நிரோத கரோ தொ சமாதி கா ஆனந்த கா அனுபவ ஹோகா, और चित्तवृत्ति निरोध नहीं कर सके तो इसका विकल्प है ईश्वर प्रणिधान. और तुम ईश्वर प्रणिधान करोगे तो ईश्वर कृपा से तुम्हें वो समाधि, चित्तवृत्ति निरोध के बिना भी समाधि की अनुभूति होगी. ईश्वर प्रणिधान हुआ. ईश्वर प्रणिधान क्या उपाय क्या है महाराज? तो महर्षि ने, पतंजलि ने ईश्वर प्रणिधान के लिए प्रक्रिया बता दी. तज्जप तदर्थ भावना, उसके नाम का सतत जप करो और नामी का स्मरण करो. देखो, नाम का जप करो, नामी का स्मरण करो. तज्जप तदर्थ भावना. तो जप के लिए किस नाम का प्रयोग करें महाराज? तो वहां महर्षि पतंजलि ने कह दिया, प्रणव का जप करो, ओमकार का जप करो, एकाक्षर ही प्रणव. क्योंकि प्रणव को मंडूक उपनिषद में परमात्मा का अति प्रिय नाम के रूप में प्रस्तुत किया. ओमकार को मंडूक उपनिषद में परमात्मा का अति प्रिय नाम है, निर्दिष्टतमम प्रियतमम, सबसे नजदीक का नाम. जो सबसे प्रिय होता है वही ना नजदीक का होता है, है ना? कभी कभी घर में व्यवहार में नाम रखा जाता है, मां बाप या घर के कुटुंबी और बंधुजन कुछ नाम रख देते हैं. नामकरण के दिन में तो जो राशि से नाम जुड़ा, राशि से जो मिल गया, उसी अक्षर के आधार पर नामकरण कर देते हैं. लेकिन बहुत प्यार से पुकारने वाला नाम घर में ज्यादा प्रयोग होता है. मां भी बहुत प्यार करती है तो कुछ और नाम से पुकारने लग जाती है. कोई व्यक्ति जरा मोटा हो तो घर में ए मोटे बोल देते हैं. घर का बाप भी बोलता है कि ए मोटे इधर आओ. मां भी बोलती है कि ए मोटे इधर आओ. मां जो प्यार से बोलती है मोटे, लेकिन वो उसको प्रिय नहीं है. बड़े होने के बाद यार दोस्तों के बीच में मां फिर कह दे मोटे, उसको अच्छा लगेगा? तो कोई पूछेगा कि अरे भाई तुझे मोटे क्यों कहा किसी ने? बोले मेरी मां बड़े प्यार से कहती थी बचपन में, वही आदत पड़ी है इसलिए वही बोल रही है. समझाना पड़ेगा कि नहीं? तो निर्दिष्टतम अति प्रिय नाम है. प्रणव का जप करो, तज्जप तदर्थ भावना. परमात्मा का यानी शिव का सबसे प्रिय नाम ओम है. यही वह कुद्दाली है, वही ये फावड़ा है जो तुम परमात्मा के आवरण को हटाकर निरावृत्त कर सकते हो. तो वेदांत में और भक्ति में यह अंतर है. वेदांत में उस आवरण को हटाने की क्षमता सिर्फ अखंडाकार वृत्ति में है. अखंडाकार वृत्ति के बिना उस आवरण को तुम नहीं हटा सकते हो. तो भक्ति में सतत प्रणव जप, शिव नाम मंत्र ही उसी में इतनी क्षमता है कि वह उस आवरण को हटा सकता है। दिव्याश्रितम भुजग भूषण मुद्वहंती, कल इसकी थोड़ी व्याख्या तो की थी हमने, एक सामान्य शास्त्र में या सामान्य लोक भाषा में ये प्रचलन है, जहां दिव्य रत्न रहते हैं वहां सर्प का निवास होता है, ये कहा जाता है। इसलिए कोई धन के प्रति आसक्त हुआ हुआ कोई धनिक व्यक्ति सेठ बोले कि वो धन के प्रति आसक्ति दिखाता है तो लोग कह देते मरने के बाद सर्प बनेगा ये, ऐसा कह दिया जाता है व्यवहार में, है ना। पैसे के लिए जो मरीमेट करता है वो तो व्यवहार में कह देते ये इतना मरता है पैसे के लिए संपत्ति के लिए, ये जरूर मरने के बाद सर्प बनेगा ये, क्योंकि संपदा और सर्प की राशि एक ही है भाई, और ये मान्यता है। दिव्याश्रितम भुजग भूषण उद्वहंती, भुजग भूषण ये भुजग का माने सर्प का भूषण क्या है, मणि। तो हम जीवात्मा तमाम जीवात्मा रूपी सर्प का भूषण क्या है, मणि। मणि क्या है तो शिव, शिव ही जीव का भूषण है, जैसे मणि सर्प का भूषण है वैसे ही शिव परमात्मा जीव का भूषण है। क्या है वो, ये पादार पद्मन मियते शिवते कृतार्थ, जब वो रत्न प्राप्त होता है तब शिव रत्न प्राप्त होता है तब जीव कृतार्थ हो जाता है। इस बात को अन्य अलंकार के माध्यम से अनुप्रास अलंकार के माध्यम से, शब्दालंकार अनुप्रास अलंकार के माध्यम से शंकराचार्य जी ये दूसरा वसंत तिलका छंद के में एक श्लोक की रचना करते हैं। यहां दूसरा भाव है, भूधारताम उदवहत यदपेक्षया श्रीर, भूदार एव किमत सुमते लवस्व, केदार मा कलित मुक्ति महौषधीना, पादार विंद भजनम परमेश्वरस्य। अनुप्रास शब्दालंकार अनुप्रास, भूदार भूदार केदार पादार, यही तो छंद के जो है अनुप्रास है, भूदार पादार केदार, ये देख लो ऐसा शब्द प्रयोग होता है तो उसको अनुप्रास अलंकार बोलते हैं, शब्द अलंकार अनुप्रास बोलते हैं। इसका अर्थ क्या है, भूदारताम उदवहत यद अपेक्षया श्री भूधार, श्री भूदार किसके लिए कहा, श्री भूधार विष्णु के लिए, भगवान विष्णु के लिए कह रहे हैं। भगवान विष्णु कैसे हैं, श्री और भू दारा वाले हैं, दारा माने पत्नी, संस्कृत में पत्नी को क्या बोलते हैं, दार। तो श्रीदार भूदार दो पत्नी वाले हैं भगवान विष्णु, तो आप विष्णु क्यों नहीं हो पाए है? एक पत्नी हो गए ना इसीलिए आप एक पत्नी हो गए, खाली श्रीदार हो गए आप, है ना, संपत्ति तो है भूधार नहीं है, या फिर भूधार हो गए, फ्लैट तो जैसे तैसे मां बाप ने बना के रख दिया था, पैसा नहीं कमा पाए। हाँ सूचक भाई भूधार तो पिता से मिल गया होगा आपको, है ना, फ्लैट पिताजी का खरीदा हुआ है कि अपना खरीदा है? अपना है तो आप भूधारा है ना, भूधारा तो हो गए, श्रीधारा नहीं हुए। संपत्ति है, पैसों छे मने आपो है तो भूधारा श्रीधारा तो वही कहा गया। श्री भूधारा क्या किया उन्होंने? श्री भूधारा ने है श्री लक्ष्मी और भू पृथ्वी दो धारा वाले भगवान विष्णु ने क्या किया? भूधारताम उदवहत, भू का उद्धार किया। भूधार माने पृथ्वी, भू धार माने बराहा, भूधार माने बराहा सुअर। सुअर का काम क्या है? भू उदार, पृथ्वी का उदार करते हुए चलता है, उधेड़ता है वो, उधेड़ना, हिंदी में उधेड़ना बोलते हैं ना, पृथ्वी को चीरता हुआ चलता है ना, वो सूंड से पृथ्वी को चीरता हुआ चलता है, उसको भू उधेड़ना बोलते हैं हिंदी में, उधार बोलते हैं संस्कृत में। भू उदार ताम यानी बराहा रूप धारण किया। किसने? श्री भूधारण ने भूदारता का रूप धारण किया। किसके लिए महाराज? ऐसे शब्द क्यों प्रयोग कर रहे हो? यद अपेक्षा, जिसकी अपेक्षा से भगवान विष्णु ने बराहा का रूप धारण किया। क्यों धारण किया, करना पड़ा बराहा का रूप? तो दो प्रसंगों में भगवान विष्णु ने बराहा का रूप धारण करना पड़ा, दो जगह ये प्रसंग आता है। एक तो हिरण्याक्ष ने पृथ्वी पाताल में ले गया, तो सारे सृष्टि का विस्तार करने का जो आधार है धरती, वो धरती ही नहीं है, तो सृष्टि का विस्तार कहां करें? तो भू आधार के बिना सृष्टि कहां से करेंगे ब्रह्मा जी? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज तुम सृष्टि का विस्तार करो तो कहते हो, लेकिन सृष्टि का विस्तार करूं कहां, पृथ्वी तो है ही नहीं, इसलिए मैं कमल के पत्ते में रह रहा हूं। पृथ्वी होती तो पृथ्वी में रहता, पृथ्वी तो है ही नहीं है, इसलिए मैं कमल के पत्ते में रह रहा हूं। देख लो, बोले पृथ्वी कहां गई? बोले हिरण्याक्ष ले गया पृथ्वी को, हिरण्याक्ष ले गया पाताल में। तो जब तक तुम उस पृथ्वी को पाताल से लाकर यहां प्रतिष्ठापित नहीं करोगे, तब तक मैं सृष्टि का विस्तार नहीं कर सकता महाराज। तो अच्छा भाई, पृथ्वी को मैं ला देता हूं। तो ब्रह्म का रूप धारण किया और गए पाताल में, और हिरण्याक्ष से लड़ाई करके उसको मार के पृथ्वी को लाकर स्थापित की। उसके बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि का क्रम आरंभ किया, मानस सृष्टि, तब सनत कुमारों को सबसे पहले उत्पन्न किया, नारद जी को उत्पन्न किया, सनत कुमारों को उत्पन्न किया। सनत कुमारों ने कहा कि महाराज हमारा नाम और काम बताओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम हमेशा कभी भी बूढ़े न होने के कारण तुम्हारा नाम कुमार है, मेरी आशीर्वाद, मैं कृपा, मैं आशीर्वाद देता हूं तुम कभी बूढ़े न होगे, इसलिए तुम कुमार रहोगे। काम क्या करना है हमने? बोले भगवान की आज्ञा है सृष्टि का विस्तार करो, तो तुम लोग सृष्टि विस्तार में लग जाओ। सनत कुमारों ने कहा कि नहीं बाबा, हम ये प्रपंच में पढ़ने वाले नहीं हैं। ये भागवत का प्रसंग है, हम ये प्रपंच में नहीं पढ़ेंगे। तो वो चल पड़े लंगोटी लगाकर। तो ब्रह्मा जी को आ गया गुस्सा, मेरा बेटा, मेरे बच्चे और मेरी बात नहीं मानते हो। तो उनके जाने के बाद ब्रह्मा जी को जो गुस्सा आया, उससे फिर यहां से एक पानी का बूंद निकला, पसीना निकला, और जमीन में पड़ते ही बच्चे का रूप धारण करके जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा ब्रह्मा जी से, मेरा नाम बताओ और मेरा काम बताओ, मुझे क्यों पैदा किया है, काम बताओ, मेरा नाम क्या है, नाम बताओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तू पैदा होते ही रोने लग गया, इसलिए तेरा नाम रुद्र, जा काम क्या करें। बोले सृष्टि का विस्तार करो, भगवान की आज्ञा है, सृष्टि करना है, तुम मदद करो, सृष्टि विस्तार करो। बोले ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। बास रुद्र सृष्टि शुरू कर दिए तो सब है? रुदति रोदयति इति रुद्र है? खुद भी रोए दूसरों को भी रुलावे रुद्र। तो जहां गुस्से से पैदा हुआ है वो सृष्टि कैसे होगी, है ना? पूरे रुद्र सृष्टि मारो काटो लूटो। तो भगवान विष्णु ने कहा कि हे ब्रह्मा, ऐसी सृष्टि करने के लिए तुझे नहीं कहा था, ये क्या सृष्टि कर दी, बंद करो ये। तब नारद जी ने रुद्र को, माने ब्रह्मा जी ने रुद्र को बुलाया, हे बेटा इधर आ। बोले हम पिताजी, ये कैसी सृष्टि कर दी तुमने। बोले हम जैसा जानते थे वैसे कर दी, बंद करो ऐसी सृष्टि, परमात्मा को मंजूर नहीं है, फिर हम क्या करें। तो बच्चा राख लपेट के हिमालय में। बोले जो आ गया। तो रुद्र चले गए हिमालय। अब ब्रह्मा जी को चिंता हुई कि दो दो बार सृष्टि की, सनत कुमार भाग गए, रुद्र भी गया तपस्या करने, अब मैं कैसे सृष्टि का विस्तार करूं, ये चिंता में लग गए ब्रह्मा जी, तो शरीर फट गया। भागवत सुनी है ना तुमने, शरीर फट गया। तो बाएं भाग से सतरूपा, दाहिने भाग से मनु, फिर वहां से मनु और सतरूपा के माध्यम से यह युग्म सृष्टि का आरंभ हुआ। तो तब से जो पैदा हुए सब मनुष्य हो गए, है ना? तो प्रसंग वहां भूधारता की, विष्णु ने वराह रूप धारण क्यों की, सृष्टि विस्तार करने के लिए आधार चाहिए था, उसको लाने के लिए वराह का रूप धारण करना पड़ा। दूसरे बार फिर विष्णु ने वराह का रूप धारण किया, कब, जब ब्रह्मा और विष्णु दोनों के आपस में विवाद हो गया। शिव पुराण का प्रसंग पहले सुनाया, विष्णु भागवत का प्रसंग, अब शिव पुराण का प्रसंग। किस बात को लेकर कि अहम ज्येष्ठा अहम श्रेष्ठा, मैं तेरे से बड़ा हूं, तू मेरे से छोटा है, तो छोटा होने के कारण पहले मुझे अभिवादन करना पड़ेगा, तू कर। अब विष्णु कहते हैं कि तू छोटा है, मुझे अभिवादन कर। ब्रह्मा कहते हैं कि तू छोटा है, पहले मेरा अभिवादन कर। कौन छोटा और कौन बड़ा निर्णय कैसे करे, इस विवाद को समाधान कैसे करें, कौन करेगा। दो व्यक्ति यदि परस्पर विवाद करे किसी मुद्दे को लेकर, तो तीसरा निरपेक्ष व्यक्ति ही उसका समाधान कर सकता है। शिवपुराण में कथा आती है, पुष्पदंताचार्य जी ने शिव महिमनि स्तोत्र में इसका संकेत भी कर दिया। तो उसी दोनों के विवाद के बीच में एक अनलय स्कंद बपुषा, अग्निमय स्तंभ वहां खड़ा हो गया दोनों के बीच में, अनलय स्कंद बपुसा और ब्रह्मा और विष्णु के देखते देखते ही ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र, विष्णु का सुदर्शन चक्र, दोनों ही उस अग्नि स्तंभ में गायब हो गए, लुप्त हो गए। तब ब्रह्मा और विष्णु ने विचार किया, क्या है हम दोनों के विवाद के बीच में, ये कहां से आ गया, क्या चीज है और हमारा अस्त्र गायब हो गया। पहले तो इसको पता लगाए कि है क्या चीज और अपना हथियार वापस ले ले, तब फिर विवाद करेंगे, लड़ के जितना होगा तो भी जीतेंगे। तो ठीक है, सहमति हुई। यदुपरि विरिंची हरिराधा, तो वह जो अग्निल स्कंद पपु ज्योतिर्मय लिंग, वह कहां से शुरू हुआ और कहां समाप्त हुआ इसका पता कौन लगाए। बोले ऊपर की तरफ हम जाएंगे, ब्रह्मा जी कहने लगे हम जाएंगे ऊपर कहां समाप्त हुआ है, अंतिम छोर का पता लगा के आएंगे हम, तुम नीचे जाओ कहां से शुरू हुआ है। विष्णु कहा कि हां ये तो नीचे जाने का काम हमने पहले भी किया है, हम चले जाएंगे। तो फिर वहां भी उस शिवलिंग का, ज्योतिर्मय लिंग का आदि को पता लगाने के लिए श्री भूदार ने, किसने, श्री भूदारा वाले ने, केवल लक्ष्मीपति नहीं भूपति, हाँ दो पत्नी है ना, इसीलिए भूपति लक्ष्मीपति, इसीलिए दोनों को जोड़ दिया शंकराचार्य ने, सी श्री भूदारा, श्रीदारा और भूदारा वाले श्री भूदारा, विष्णु ने बराह का रूप धारण करके क्या क्या, भूदारताम बराह का रूप धारण करके उद्वहन थी, नीचे चले गए पता लगाने के लिए। लेकिन बहुत नीचे जाते जाते पाताल तक तो गए, लेकिन वहां भी उसका अंत या आदि कुछ भी पता नहीं चल रहा है, उसके आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो वहीं से विष्णु तो वापस आ गए, यह अनिर्वचनीय है, आ गए। ब्रह्मा ऊपर के चले गए ब्रह्मलोक पर्यंत, लेकिन उसका तो कोई अंत ही नहीं, और आगे गया है, अत्यतिष्ठ दशांगुलम मां है, वो तो और आगे गया है। अब आगे कहां जाएं हम, लौट के जाना पड़ेगा। लेकिन बड़ा होने का जो ख्वाब था ब्रह्मा को, उसने झूठ का आश्रय लिया। सुप्राण सुनिए आप लोगों ने, कई बार जाके उसको कह देता हूं मैंने पता लगाया, और कह देने से मैं बड़ा होता हूं तो हर्जा क्या है, लगाया कि नहीं लगाया, या और तो कोई है ही नहीं साक्षी, लेकिन तुमने लगाया कि नहीं लगाया पूछ लिया, साक्षी कौन है, तो कोई साक्षी भी लेके जाना चाहिए। गलत आदमी गलती करने से पहले बचने की बड़ी फॉर्मूले तैयार करता है, पहले सोच लेता है वो, यदि पकड़ा गया तो मैं क्या कहूं, क्या करूं, कैसे करूं, है ना, करता है कि नहीं बोलो, भगवान श्री कृष्ण ने किया कि नहीं बोलो, महाभारत युद्ध में, युद्ध भूमि में है, युद्ध भूमि में जब कर्ण के पास जाना था तो साड़ी पहन के गए कि नहीं बोलो, कुंती को साथ में लिया और कुंती के साथ ही सहेली बनकर साड़ी पहन कर गए हैं, कहीं पता ना चले। कृष्ण स्वयं कर्ण कहां गए ये बात और को और लोगों को पता ना चले, रात के समय में कुंती तो महिला है स्त्री है साड़ी पहनी है, और कृष्णा ने भी साड़ी पहन ली, क्योंकि गलत काम करना था ना, इसलिए वो छुपने की पहले सोच लिया, ऐसा करके जाऊं तो मुझे कोई नहीं पहचानेगा। बोले कि चप्पल की आवाज आ रही है भाई, कोई जग जाएगा तो क्या करें महाराज। बोले लाओ चप्पल, हम ले लेते हैं बगल में। अपने आप तो होशियार थे कृष्ण, इसलिए खाली पांव गए, कुंधी चप्पल लाकर गई, पहन कर गई थी, और चप्पल के आवाज आने लगा तो बोले लाओ वो चप्पल हम ले लेते। तो कुंती ने चप्पल खोली, कृष्ण ने चप्पल को बगल में दबा लिया, साड़ी पहने हुए गए कर्ण के पास जाकर। ये क्या रूप बनाया, क्यों आए हो? बोले बेटा तुमने जो प्रतिज्ञा कर ली कि कल सुबह मैं मारूंगा, तो तुम जो है मेरे बेटे हो, तुम कौंतेय हो, ये समझाने के लिए आए। हाँ, ये समझाने के लिए आए कि तेरी मां कुंती, बोलो इसी से सुन ले, इसी के मुख से सुन ले कि तू इसका बेटा है कि नहीं। अर्जुन युधिष्ठिर जैसे इसके बेटे हैं, कौंतेय हैं, तू भी कौंतेय। कुंती ने कहा कि हां बेटा, तुम मेरा ही बेटा है, इसीलिए तू अपने भाइयों को मत मारो, युद्ध बंद करो। कर्ण ने कह दिया ठीक है मां, शास्त्रों में लोक में सर्वत्र यही प्रसिद्ध हुआ है, प्रसिद्धि हुई है कि तुम पांच बेटे की मां हो, कुंती के पांच पुत्र हैं, तो मैं तुम्हारे सामने ये प्रतिज्ञा करता हूं, अर्जुन के बायक और किसी को मारूंगा नहीं। मेरे द्वारा अर्जुन मर गया तो भी पांच पुत्र के पांच ही रहेंगे, तुम पांच पुत्र की मां रहोगी, और अर्जुन द्वारा मैं मर गया तो भी तुम पांच पुत्रों की मां रहोगी। इतने ही वचन तुम्हें दे सकता हूं मैं कि मैं अर्जुन के अलावा और किसी को मारूंगा नहीं, और तुम ना आती तो मैं और को भी मार देता है, मैं युधिष्ठिर को भी मार देता, नहदेव, नकुल, सहदेव, भीष्म, भीम, सबको मार देता, मार भी सकता। लेकिन अब यह बात पक्की है कि चार पुत्र बचेंगे, तो या मैं मरूंगा इस महाभारत में या अर्जुन मरेगा। तो इतनी फायदा हुआ कि नहीं कृष्ण के कपट से, बोलो? तो बदमाशी करने वाला पहले ही प्लान बना लेता है। बोधारतम, ब्रह्मा जी ने बदमाशी करनी थी इसलिए प्लान बना ली। तो एक नंदी को, कामधेनु गाय को ले लिया, चल कहां जाना है महाराज? तो कामधेनु गाय तो स्वर्ग में थी, रस्ते में आते ब्रह्मलोक से आते समय स्वर्ग में घुस के कामधेनु गाय को लेके आए, चल नीचे पाताल में, नहीं भूतल में, क्यों महाराज? बोले ब्रह्म विष्णु वहां बैठा हुआ है, उसके सामने मेरे पक्ष में तूने बयान देनी है। क्या बयान महाराज? बोले ब्रह्मा ने ये ज्योतिर्लिंग का पता लगाया, ये मैंने देखा है, ये साक्षी करना। नहीं महाराज, विष्णु के सामने, शिव के सामने मैं झूठ कैसे बोल सकता? झूठ नहीं बोलेगी, मेरे लिए तू इतना भी नहीं करेगी तो मैं अभी श्राप देकर मार डालूंगा। तो बिचारी कामधेनु गाय डरने लगी, तो मरना है इसके श्राप से, मरने की अपेक्षा तो जाती हूं विष्णु के आगे, शिव के आगे, कुछ न कुछ तो करेंगे ही। तो नीचे आए, ब्रह्मा ने कहा, विष्णु से पूछा, पता लगाया? विष्णु ने तो कहा कि नहीं महाराज। बोले आपने पता लगाया? बोले हां, और क्या? अच्छा भाई साक्षी कौन है? बोले ये। विष्णु ने गाय से पूछा, कामधेनु से, सचमुच ये बुढ़े ने पता लगाया है ऊपर? तो ब्रह्मा के तरफ मुंह करके हां कहा, कह दिया, और विष्णु के तरफ पूछ करके नहीं हाथ हिला दी। नहीं, बड़ी चलाक थी वो, पूछ करके कह दिया नहीं है। कई चिन्ह है, कई लक्षण देकर निषेध कर दिया, पूछ हिलाया नहीं, गोबर कर दिया नहीं, डर के मारे पेशाब कर दिया नहीं है, दूध दिया नहीं। तो सत्य का आश्रय जिन जिन ने लिया वही अमृत हो गए। तो पंचामृत के लिए क्या क्या चाहिए बोलो? दूध दही। और पंचगव्य के लिए क्या चाहिए शुद्धिकरण में? और गोबर भी चाहिए। पंचगव्य, दूध दही घी। नहीं नहीं, पंचगव्य में मद नहीं पड़ता है, तुम लोगों को पता ही नहीं है। पंचामृत में मद पड़ता है, पंचगव्य में मद नहीं पड़ता है, क्योंकि मद गव्य नहीं है ना। गव्य का अर्थ क्या होता है? गाय का विकार को गव्य बोलते हैं। मद कहीं गाय से पैदा करती है? दूध दही घी ये गव्य है, और गोमूत्र और गोबर, ये पांच चीज मिलाते हैं तब पंचगव्य होता है। अब तुम लोग बंबई वासियों को क्या पता पंचगव्य क्या है? हैं? सूतक और पातक की शुद्धिकरण के लिए पंचगव्य के बिना सूतक दोष और पातक दोष की निवृत्ति हो ही नहीं सकती। लेकिन आजकल तो क्या करते हैं, तुलसी पानी छिड़क दो जहां भी शुद्धि हो गई, गंगा जल छिड़क दो, नहीं होता। शास्त्र प्रमाण है, पंचगव्य सेवन करना पड़ता है, हाँ, तब जाकर पातक दोष, पातक माने कोई मरा हुआ हो परिवार में, उसकी जो कर्म करने उसको पातक बोलते हैं। कर्म विधि पूरा करके फिर शुद्धिकरण करने का दिन आता है तो पंचगव्य सेवन करके शुद्धि होती है। कोई पैदा हुआ परिवार में, बहू का बेटा हुआ तो, या अपनी पत्नी का बेटा हुआ, अपने बेटा हुआ या बहू का बेटा हुआ, तो वो होगा सूतक। तो अमुक दिन वो दोष लगता है, अमुक दिन, दस दिन का विधान है हमारे सनातन धर्म में, दस दिन तक सूतक रहता है और तेरह दिन तक पातक दोष रहता है। तेरहवीं दिन में पंचगव्य सेवन करके पातक दोष से निवृत्ति, दसवें दिन में पंचगव्य सेवन करके सूतक दोष की निवृत्ति होती है। क्योंकि ये पांचों चीज गाय के पृष्ठभाग से सत्य के आश्रय के प्रतीक में गाय के शरीर से निकले थे, इसलिए सनातन धर्म ने उनको शुद्धिकरण पवित्रता के रूप में ग्रहण किया। लेकिन मुख से जो झूठ बोला था, इसलिए गाय का गोबर शुद्ध हो सकता है, गाय का जूठा शुद्ध नहीं होता। भगवान को भोग लगाने के लिए भोजन बनाया था, प्रसाद बनाया था, गाय ने खा ली, तो वो अब भगवान को भोग नहीं लगेगा, समझे कि नहीं? हाँ, वो जूठा हो गया अपवित्र, क्योंकि उसका मुख असत्य का भाषण किया था। तो पूंछ ने भी सत्य का आश्रय लिया, ये ब्रह्मा ने झूठ बोला, तो वैतरणी उसी के आश्रय से तुम लोग तरते हो। वैतरणी में क्या समझ, क्या पकड़ते हैं? गाय के पूंछ, सिंह क्यों नहीं पूंछ पकड़ते हो? वो अशुद्ध है, मुख का भाग अशुद्ध है, कान नहीं पकड़ा जाएगा, सिंह नहीं पकड़ा जाएगा। भूधारतामुदहमपेक्ष श्रीर भूधार एव किमत सुलभे सुमते लभस्व केदारमा कलित मुक्ति महौषधीनाम पादारविंद भजनम परमेश्वरस्य सुमते। ये संबोधन है, मन को समझा रहे हैं, बुद्धि को समझा रहे हैं। हे सुमति, हे बुद्धि, सद्बुद्धि, तुम मुक्ति महौषधीनाम, मुक्ति रूपी महान औषधि की खेती करनी है, औषधि तैयार करना है तुमने। कौन सी औषधि बोलो? शुगर हटाने के लिए कि जन्म मृत्यु हटाने के लिए? मधुमेह हटाने के लिए कि जन्म मृत्यु हटाने के लिए? है, जांबू फल खाओगे जन्म मृत्यु हटेगा कि मधुमेह हटेगा? अरे भाई, एक जन्म का मधुमेह हटे तो दूसरा जन्म होगा तो फिर मधुमेह आ जाएगा, तो जन्म मृत्यु ही हटाओ ना भाई। ऐसा कोई औषधि है तुम्हारे पास? नहीं है महाराज। तो फिर खेती करो। महाराज, मेरे पास खेत तो है ही नहीं, खेती कहां करें? केदारम, केदार माने खेत, केदारम आकलित, केदार का आश्रय लो, जिस खेत में मुक्ति महौषधि का निर्माण उत्पादन किया जा सके। कौन सी औषधि है वो? पादारविंद भजनम केदारम, भगवान शिव का जो चरण है उसका ग्रहण करो, वही खेत हो जाएगा। भगवान शिव के चरण रूपी खेत में मुक्ति रूपी महौषधि की खेती करो। परमेश्वरस्य पादारविंद भजनम केदारम, है, उसी में ही मोक्ष रूपी परम औषधि की खेती हो सकती है, अन्यत्र नहीं। जैसे कहा जाता है ना, असली केसर की खेती कश्मीर में ही हो सकती है ना? सेफ्रॉन, केसर, वो कश्मीर में जो केसर हो सकता है और दुनिया में कहीं नहीं हो सकता है, वो क्वालिटी, उस जमीन की खासियत है। तुम्हें खुद केसर खरीदना हो तो खरीद लो, खुद केसर की खेती करनी हो तो कश्मीर की भूमि चाहिए कि नहीं? इसी तरह भोग विलास यलोक परलोक जो कुछ भी प्राप्त करनी हो तो अन्य पुरुषार्थ से तुम प्राप्त कर सकते हो, लेकिन मोक्ष रूपी महा औषधि तैयार करनी हो तो परमेश्वरस्य पादारविंद भजनम केदारम, परमात्मा के चरण का आश्रय लिए बिना मोक्ष रूपी महा औषधि तुम प्राप्त नहीं कर सकते हो। हे सुमते संबोधन, इसलिए उसी का आश्रय लो और मोक्ष औषधि प्राप्त करो, तो जन्म मृत्यु से तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा भाई। और क्या कहेंगे, कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।
2: ओम नमः शिवाय।
0: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
3: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shiva Mahimna Stotra in Hindi, presented by Swami Sri Dharmanandiji. Thank you. Om Namah Shivaya.
4: जो सुनने में तो बहुत बढ़िया लगे, समझ में आ जाए पर विचार करने के बाद झूठी सिद्ध हो उसका नाम कुतर्क है। तो कुतर्क कुतर्क करते हैं। जगतः मतलब संसार के विषय में मोहाय हतधियः, जो भ्रम में डालने वाला है, जिनकी बुद्धि मारी गई है, कांश्चित मतलब ऐसे कुछ एक लोग हैं, मुखरयति ऐसे लोगों को यह कुतर्क बकवासी बना देता है। खलु मतलब लेकिन, अयम मतलब यह जो कुतर्क है, अनवसर दुस्थ, अनवसर दुस्थ का अर्थ है अवकाश रहित है, बिना अवकाश के ही बिना कारण से ही इस प्रकार का वे तर्क वितर्क किया करते हैं। ये तो हो गया आपका एक एक पद का शब्दार्थ। अब इस पर विचार करते हैं। तो पहला शब्द है किमी है, यह शब्द का अर्थ होता है चेष्टा। यह चेष्टायाम धातु से यह शब्द बना है। ये मतलब उसकी कौन सी चेष्टा, इच्छा और प्रयत्न के बीच में चेष्टा होती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास अभी रसगुल्ला नहीं है, तो रसगुल्ला खाने की इच्छा होगी, पहले रसगुल्ला विषय ज्ञान होगा, क्योंकि तो नियम है जानाति इच्छति यतते करोति। जब कोई भी हम कार्य करते हैं तो कार्य की भूमिका है जानाति, पहले सामान्य ज्ञान होता है, ज्ञान के बाद इच्छा होती है, इच्छा के बाद चेष्टा प्रयास होगा, इसके बाद कार्य को संपादित करते हैं। तो हमें रसगुल्ला खाना है, रसगुल्ला का ज्ञान है, मन में इच्छा हुई, इच्छा होने के बाद फिर चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं, प्रयास के बाद बाजार से ले आकर के फिर हम जो है उसको खाते हैं। परंतु जो परमात्मा है, परमात्मा के विषय में शास्त्र कहता है आप्त काम, परमात्मा के अंदर कोई कामना नहीं, जब आप्त काम है तो उसके अंदर चेष्टा इच्छा असंभव है, अल्पज्ञ के अंदर चेष्टा होती है। यह जो तर्क है कि उसने किस इच्छा से किस चेष्टा से संसार को बनाया, यही खंडित हो जाता है। ये मनुष्य अपने ढंग से चिंतन करता है कि जैसे हम कोई भी जब काम करते हैं तो काम करने के पहले इच्छा करते हैं। जैसे आपको एक मकान बनाना हो तो मकान बनाने के पहले मन में इच्छा होगी, इच्छा के बाद कारीगर को बुलाएंगे, बुलाने के बाद सामग्री एकत्रित करेंगे, तब जाके मकान बनेगा। इसी प्रकार से सोच रहा है उस परमात्मा ने जब संसार को बनाया तो बनाने के पहले उसने किस प्रकार से इच्छा किया। जो पहाड़ की ऊंचाई है, सागर की गहराई है, धरती इतना समतल है, इसको बनाने के पहले उसने किस प्रकार से संकल्प विकल्प किया, इस प्रकार से तर्क वितर्क करता है। इसके बाद वह किम कायः, उसका शरीर कैसा है, बिना शरीर के इच्छा संभव है, इच्छा के बाद में सोता उसका शरीर कैसा है। यदि देखा जाए तो भगवान की तो बात छोड़ दीजिए, वो तो आप्त काम सत्य काम है, श्रुति कहती है भगवान के उपासक भक्त भी सत्य काम होते हैं। स्वयं श्रुति माता है ऋषीणाम पुनराद्यानाम वाचम अर्थोनुधावती, ऋषियों के वाणी का अनुकरण पदार्थ करते हैं। जिसने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया, बहुत हम आपको वर्तमान दृष्टांत देते हैं कलयुग का। जब बौद्धों के साथ सनातन धर्म का साक्षात्कार हो रहा था कि जगत का कारण परमात्मा है, चैतन्य है कि शून्य, बौद्धों का पक्ष था कि संसार का कारण शून्य है, शून्य से संसार उत्पन्न हुआ। पर कुमाइल भट्ट कहते थे कि जगत का कारण चैतन्य है, ब्रह्म है, परमात्मा है। बहुत दिन साक्षात्कार चलता रहा, जब निर्णय नहीं हो पाया तो बौद्ध राजा ने कहा कि साक्षात्कार का निर्णय मैं कल करूंगा, और बौद्ध राजा ने चुपके से घड़े में काला नाग रख करके और प्रातः काल जब सत्र प्रारंभ हुआ तो सभा के बीच में रखवा दिया। दोनों पक्षों से निवेदन किया कि आप अपने शास्त्र से, ज्ञान से, अनुभव से बतलाइए किस घड़े में क्या है। जो सही सही बतला देगा वह जीत जाएगा, नहीं बतलाने वाले की हार हो जाएगी। चूंकि राजा बौद्ध था इसलिए बौद्ध पंडितों को खबर लग गई थी कि उसमें काला नाग रखा है। बस जैसे राजा घोषणा किया, घोषणा करते ही तुरंत बौद्ध पंडित चिल्लाकर बोले इसमें काला नाग है। कुरमाइल भट्ट ने सोचा यदि मैं भी हां में हां मिला दूं तो क्या बोले कि पहले इन्होंने बोला और बाद में आपने बोला था आप बौद्ध धर्म को स्वीकार करो। कुछ देर तक नहीं बोले। जब राजा ने कहा कि आप सोचते कि आप बतलाइए क्या है, कुमाइल भट्ट ने कहा सोच विचार कर इसमें जो है खिलता हुआ कमल का फूल है। राजा जोर से हंसा, कहा कि आज तो हमारी विजय हो गई। रानी थी सनातनी धर्मपत्नी, बहुत दुखी हुई कि क्या इन्होंने कह दिया, इन्हें कहना था काला नाग। कुमाइल भट्ट ने कहा आप घड़ा खोल के देखिए पहले इसमें क्या है। जैसे ही घड़ा को खुलवाया उसमें खिलता हुआ कमल का फूल। राजा को बड़ी हैरानी हुई, हमने स्वयं रखवाई थी इसमें काला नाग की जगह काला फूल कहां से आ गया। उसने पूछा कि अदला बदली कैसे हो गई। कुमाइल भट्ट ने कहा कि मुझे मालूम था इसमें काला नाग है, परंतु हमने इस काले नाग की भावना करते करते परमाणु तक ले गया और परमाणु को हमने चैतन्य में विलीन कर दिया। जगत जब नष्ट हो होता है तो परमाणु रूपता को प्राप्त होता है और परमाणु जो है परमात्मा में विलीन होता है। परमाणु का आकाश का आधार है परमात्मा, तो उस परमात्मा तक पहले ले गया, उस परमात्मा में संकल्प किया, वहां से संकल्प करने के बाद धीरे धीरे परमाणु देणु के क्रम से ये जो खिलता हुआ कमल बन गया। जब ऋषियों के वाणी को, कुमाइल भट्ट के वाणी को अनुकरण किया, पदार्थ पदार्थ मतलब कमल का फूल, ये कलयुग की घटना है, इतनी उनकी सूक्ष्म दृष्टि थी, भावना संकल्प था कि संकल्पानुसार उस काले नाग को परिणत होकर फूल बनना पड़ा। तो जब भक्तों में इतना सामर्थ्य है तो परमात्मा अपने संकल्प से क्या नहीं कर सकता है। पर ज्ञानी जी तरह तरह की शंका करते हैं। पहले लोग महाभारत के ऊपर बहुत शंका करते थे। महाभारत में वेदव्यास ने जो लिखा है कलयुग का वर्णन, भागवत में भी है कि अट्ठशूला जनपदा कामिन्य के सुलिन्य। तो अट्ठशूला का अर्थ नहीं लगता, तो अट्ठशूला चीज क्या होती है। आज सबको लग रहा है अट्ट बोलते हैं अटारी, जो बड़ी बिल्डिंगें होती है ना 10-20-50 मंजिल की, उस पर देखना त्रिशूल की तरह से वो बना रहता है ताकि ऊपर से बिजली को कैच कर सके। पर उस जमाने में जब महाभारत लिखी गई तो किसी को समझ में नहीं आया, वहां पर लाल चिन्ह लगा दिया। पर आज प्रत्यक्ष हो गया कि गगन चुम्बी जो इमारतें हैं उसके ऊपर अट्ठशूला मतलब ऊपर शूल लगाते हैं। तो ऋषि लोग तो लिखते हैं पर वर्तमान में समझ में नहीं आता है, कालांतर में प्रत्यक्ष होता है। कामिन्य के शून्य भी लिखा है, प्राचीन काल में स्त्रियां केश को काटती नहीं थीं। केश काटना मतलब कि अपने सौभाग्य को नष्ट करना।

वह तो जीव के हित के लिए संसार को बनाया, किम काया उसका शरीर कैसा है। यदि हम ऐसा कहें कि वह अपने शरीर से संसार को उत्पन्न किया तो शंका हुई कि उसका शरीर किसने उत्पन्न किया। ईश्वर को भी शरीरी मान ले अपनी तरह साढ़े तीन हाथ का, तो शंका होगी कि उस शरीर को किसने बनाया, फिर उसके शरीर को किसने बनाया, तो कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगी, अनवस्था दोष हो जाएगा। और यदि कहीं अपरिच्छिन्न तो कहता है कि वो शून्य है जब दिखाई नहीं पड़ता है, तो इस तरह से उसके शारीरिक विषय में शंका करते हैं। कदाचित मान भी लें कि उसका कोई शरीर है, संकल्प है, तो फिर शंका करते हैं कि किमु पाय, कौन सा औजार, जैसे जुलाहा जब कपड़ा बनाता है तो कपड़ा बनाने के लिए एक लकड़ी विशेष होता है, और जब कुम्हार घड़ा बनाता है तो उसके लिए चाक चीवर होते हैं, उस पर रखकर घड़ा को बनाता है। तो परमेश्वर ने इतनी बड़ी जो दुनिया है उसको किस औजार हथियार से बनाया, इस प्रकार से तर्क वितर्क करते हैं। किमाधारा, जब बनाया तो उसका आधार क्या बना है, किस जगह बनाया, कहां बैठकर, ये भी शंका करते हैं। ऋषिकेश में नीलकंठ महादेव है, तो वहां पर एक बार मैं गया हुआ था, तो बहुत से लोग वहां पर तर्क वितर्क कर रहे थे कि पुराणों में चर्चा है कि सागर का मंथन हुआ, मंथन के बाद हलाहल विष निकला, तो हलाहल विष को भगवान शंकर ने पान किया तो उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। तो नीलकंठ तो ये हिमालय की तलहटी में ऋषिकेश में है, और समुद्र तो बहुत दूर है, इसे बंबई में समुद्र है, तो भगवान शंकर वहां बैठ के हलाहल विष का पान किए कि यहां पान की, तरह तरह की जो शंका करते हैं। भाई भगवान समर्थ है, चाहे वहां से पान कर लें चाहे ऋषिकेश नीलकंठ से कर लें, क्या फर्क पड़ना है, परंतु अज्ञानी शंका करता है। तो वहां पर जो नीलकंठ महादेव, वहां फोटो ही बना रखा है कि समुद्र का मंथन हो रहा, हलाल विष निकल रहा, वाम हस्त भगवान विष पान कर रहे हैं। तो जो नीलकंठ भगवान, उनका आधार क्या बना, जहां पर बैठ के हलाल का पान किया, ऐसे ही उस परमात्मा ने किस आधार पर कहां बैठ करके संसार को बनाया, यहां भी शंका होगी कि जिस आधार पर बैठकर संसार को बनाया वह तो उसके पहले मौजूद था, उसको किसने बनाया, शंका होगी ना। तो इस तरह के तर्क करते हैं। इसके बाद आता है किमु उपादान, क्या उपादान, जैसे घड़ा बनाने के लिए उपादान है मिट्टी, कपड़ा के लिए सूत, वैसे ही संसार बनाने के लिए उपादान क्या, सामग्री क्या थी जिससे बनाया। इस प्रकार से बेचारे तर्क वितर्क करके हतधियः, उनकी बुद्धि कहते कि नष्ट हो जाती है, तरह तरह के तर्क वितर्क करते हैं। हालांकि परमात्मा के स्वरूप को स्वयं ही बतला दिया है कि सर्वम खलमिदम ब्रह्म, वह सब में बैठा हुआ है, सब कुछ उसमें है, जैसे आकाश है। इस आकाश में ये जो है ना बंबई नगरी निर्मित है, और इसके बीच भी बंबई आकाश है, आकाश के अंदर बंबई है, अब बंबई के अंदर भी आकाश है, दोनों। आकाश न हो तो बंबई बन नहीं सकता है, और बनने के बाद भी उसके अंदर भी आकाश है। इसी प्रकार से परमात्मा बाहर भी है, भीतर भी व्यापक है, सर्वत्र है। इसलिए हमारे यहां कहा है कि मातृ देवो भव, माता में साक्षात परमात्मा की भावना करें। यदि हम निर्गुण निराकार अपरिच्छिन्न परमात्मा का अपने मन बुद्धि से अनुभव नहीं कर सकते हैं, इसलिए भी अनुभव नहीं आता है क्योंकि हमारे पास जो भी यंत्र है वह माइक है, पांच भौतिक है। जो हमारे यंत्र है ना, आंख नाक कान त्वचा हस्त पाद पायुपस्थ या मन बुद्धि, ये सब जो है ना माइक है। माइक होने के नाते ये माइक वस्तुओं का ही अनुभव कर सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं। और परमात्मा अमाइक है, इसलिए अमाइक तत्व मन बुद्धि का विषय नहीं होता है, तरह तरह की शंका होती है।

0: इसलिए उसी परमात्मा ने क्या किया, आपके हित के लिए तत्सृष्ट्वा तदेवा अनुप्राविशत, इस संसार माइक संसार को बनाकर उसमें प्रविष्ट हो गया। तो यदि आप निर्गुण निराकार परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं तो शास्त्र कहता है कि आप अपनी मां को देख रहे हैं, पिता को देख रहे हैं, उनमें भी परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं परमात्मा बुद्धि से। कल हमारे गिरीश भाई ने बड़ा अच्छा शंका किया था, ये सबका शंका है कि जो है पत्नी तो पति को पति देव माने, पति परमेश्वराय नमः दृष्टि रखे, परंतु पति क्या करे, है ना। ये शंका एक बार हमारे कैलाश में पूज्य महाराज श्री दशम पीठाचार्य से विद्यानंदी जी महाराज से किसी ने पूछा कि भगवान शंकर किसका ध्यान करते हैं, किसकी पूजा करते हैं। भगवान शंकर की सारी दुनिया पूजा कर, जो भी आंख बंद करके बैठे हैं। तो महाराज श्री ने उत्तर दिया था अपने स्वरूप का, परंतु उस समय बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई थी, उसमें बाल बुद्धि थी हमारी, करीब 20 वर्ष पुरानी घटना होगी, कि स्वरूप क्या है। यदि ऐसा को उत्तर दे कि भगवान शंकर अपने स्वरूप का चिंतन करते हैं, खैर आप लोग तो समझदार हैं, समझ सकते हैं, पर सामान्य व्यक्ति समझ नहीं पाएगा स्वरूप क्या होता है। तो पति जो है ना अपने स्वरूप का सुमिरन करे, चिंतन करे, उपासना करे। यहीं पर आता है कि वह जो पुरुष है ना पूर्णत्वात पुरुष, पत्नी में पुरुष में व्युत्पत्ति अलग अलग है। पुरुष शब्द की व्युत्पत्ति है जो वैदिक व्याख्यान है कि पूर्णत्वात पुरुष, ये पुरुष क्या है, पूर्ण है, जैसे आकाश परिपूर्ण है, व्यापक है। तो पुरुष जब परिपूर्ण है तो यह अपने परिपूर्ण आत्म स्वरूप का चिंतन करता है, और पत्नी जो है पति में जो है परमेश्वर का दर्शन करती है। अब बालक होगा, वो बालक जिसका शादीशुदा नहीं हुआ है वो माता पिता में परमेश्वर का दर्शन करता है। तो सर्वत्र आप परमेश्वर की दृष्टि से उसको उपलब्ध हो सकते हैं, परंतु नास्तिक तर्क वितर्क के जाल में पड़ करके पहचान नहीं पाते हैं। अभी आप लोगों ने श्रवण किया स्वाध्याय में, तर्का प्रतिष्ठाना सूत्र आया था ना, उसमें स्पष्ट कर दिया था कि तर्कों की प्रतिष्ठा नहीं। यदि आप एक तर्क से सिद्ध करते हैं कि जगत का कारण शून्य है, दूसरा आएगा खंडन करके कहेगा क्षणिक विज्ञान है, तीसरा बोलेगा प्रधान है, चौथा खंडन कर देगा कि ईश्वर कारण है, तो तर्कों की प्रतिष्ठा कभी नहीं होती है। ये तर्क क्या है, दुधारी तलवार है। दुधारी तलवार जानते हैं ना, दुधारी मतलब कि दोनों तरफ धार होते हैं। यदि आप तलवार चलाने में कुशल हैं तब तो दुधारी तलवार से शत्रु का संहार कर सकते, अन्यथा मनुष्य अपना ही संहार कर लेता है। इसी प्रकार से तर्क के द्वारा हम परमात्मा को समझ भी सकते हैं और तर्क के द्वारा भटक भी सकते हैं, इसलिए तर्क की प्रतिष्ठा नहीं होती है। देव पुराण में आता है ज्ञान नाम पिहिसा देवी भगवती बलादा कृष्ण मोहाया महामाया प्रयच्छति। कितना सोच समझ के वेद व्यास ने शब्द का प्रयोग किया है, ज्ञान नाम पिहि चेतांशी भगवती हिसा, हिसा मल्ल सा मल्ल वही वेद प्रतिपाद जो चैतन्य है, जो भगवती के पिंड में देवी के पिंड में है। ज्ञान नाम पी ज्ञानियों के चेतांशी चित्त को बलादा कृष्ण मोहाय बलपूर्वक मोह में डाल देती है। देखो मूर्ख लोग ज्यादा जो है ना भ्रमित नहीं होते हैं, तर्क वितर्क नहीं करते हैं। आप किसी सामान्य व्यक्ति को बतला दो तो बस एक पिंड को भगवान शंकर मानकर जल चढ़ा तो बिल्कुल सच्चे दिल से करेगा, जरा संशय विकल्प तर्क वितर्क नहीं होगा। पर पढ़े लिखे को बोलो तो तरह तरह का तर्क करेगा। इसीलिए वेद व्यास ने कहा कि ज्ञान नाम पी चेतांशी, ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक तर्क वितर्क के जाल में वही देवी माया देवी फंसा देती है ताकि संसार चलता रहे। मान लो कोई आपके घर में बहुत दुधारू गाय हो, दुधारू गाय का रस्सी खुल गया, अब बेचारी आगे भगने लगी तो आप क्या करेंगे, उसको बढ़िया घास डाल करके रोक देंगे। ऐसे ही ज्ञानी क्या है ना, दुधारू है गौ के समान। तो महामाया क्या करती है, तर्क वितर्क के जाल में मोह में फंसा देती है, ताकि जो है ये संसार का व्यवहार चलता रहे, परंतु जो प्रौढ़ होगा वो तर्क वितर्क से आगे निकल सकता है। काश्चिन मुखरेत, यहां काश्चिन शब्द का प्रयोग है, मतलब सबको नहीं, किसी किसी को यह तर्क वितर्क मुखर बना देता है। काश्चिन मुखरेत। अब देखो अगले छठवें श्लोक में विचार किया है कि वास्तव में ये जो नास्तिक दार्शनिक हैं, ये किस प्रकार से चिंतन करते हैं और जगत का कारण क्या मानते हैं, इस बात को छठवें श्लोक में बदलाया है। नास्तिक कुल मिला के छह दर्शन है, छह में से पहला है चार्वाक दर्शन, दूसरा है जैन दर्शन, तीसरा है बौद्ध दर्शन। बौद्ध के चार भाग हैं, माध्यमिक, सौत्रांतिक, योगाचार, वैभाषिक। तो शिष्ट नास्तिक तो आपके जैन बौद्ध है, और अशिष्ट है चार्वाक। अशिष्ट मतलब कि कुछ भी नहीं मानना, अशिष्ट का अर्थ होता है कि लोकव व्यवहार को भी तिलांजलि दे देना। जैसे वो कहते हैं यावत जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमनम। ये अशिष्ट नास्तिक है। जब तक जीना है तब तक खूब ऋण लो बैंक से और मौज करो खाओ पियो, मरने के बाद कौन देखा स्वर्ग, यही शरीर स्वर्ग यही नरक। हमको बहुत लोग ट्रेन में ऐसे बोलते भी मिले, कई लोग मिले कि कहीं स्वर्ग नहीं कहीं नरक नहीं, बस यही शरीर स्वस्थ हो तो स्वर्ग है, वैकुंठ है, ब्रह्मलोक है, और यही बीमार पड़ जाए हॉस्पिटल में तो नरक है। इससे बाहर कुछ स्वर्ग नरक नहीं, न कोई ब्रह्म है न परमात्मा है। ये बेचारे हैं अशिष्ट नास्तिक, मतलब कि शरीर में ही केवल दृष्टि केंद्रित रहती है। आजकल की सरकारें भी ब्याज पर ब्याज, कर्जा के ऊपर कर्जा ले रही है। यदि पूछो कि तुम्हें चुकाना पड़ेगा बड़ा महंगा पड़ेगा तो क्या बोलते हैं, हमें चुकाना नहीं है, बस लेते जाओ अमेरिका से स्विट्जरलैंड से। ये है आपके नास्तिक। दूसरे शिष्ट हैं जैन बौद्ध। इनका कहना है कि संसार जो है परमाणुओं के पुंज से बना, शून्य से बना, क्षणिक विज्ञान से बना। देखिए जैन दर्शन मानता है कि परमाणुओं के पुंज से संसार बना, ईश्वर नामक कोई पदार्थ नहीं। बौद्ध भी यही मानता है ईश्वर नामक कोई चीज नहीं है, शून्य से यह संसार बना। ये शिष्ट नास्तिक हैं। ये लोग इतना मानते हैं कि तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे, इनकी मान्यता है। इसीलिए सत्कर्म करना चाहिए, बढ़िया कर्म करना चाहिए। बढ़िया कर्म करोगे सुखी रहोगे और घटिया कर्म करोगे तो दुखी रहोगे। इस प्रकार से शिष्ट नास्तिकों जैन बौद्ध की मान्यता है और वास्तविकता भी है कि इंसान जैसा करता है वैसा उसको भोगना पड़ता है। एक बार अकबर भरी दरबार में बीरबल को एक तमाचा जोर से मारा। बीरबल बहुत होशियार थे, उन्होंने पीछे मुड़ के वजीर को मारा। वजीर बेचारा आंख लाल लाल करके देखने लगा, बोला कि तू देखता क्या है, इसको आगे बढ़ा, इसको जो है साहिबा तक पहुंचाना है। अब वजीर दूसरे को मारा, दूसरा तीसरे को, चौथे को, फिर दीवान को लगा। दीवान तिलमिला गए, बोले क्यों मारा मुझे, बोले कि अकबर ने बीरबल को दिया, बीरबल ने वजीर को, और इस तमाचे को साहिबा बेगम के पास पहुंचाना है राजमहल में। अब मरा दीवान जी सीधे सीधे जो है राजमहल गए, जाके अकबर की धर्मपत्नी को एक तमाचा जोर से मारा। बोली ये क्या तू कर रहा, बोले ये पति देव ने आपको दिया है, आएंगे तो उनको वापस करना। बोले ठीक है भाई। रात को जैसे अकबर आए बस तमाचा लग गया। तो ये संसार ऐसा ही है, जैसा आप करते हैं ना वैसा ही मिलता है। ये मान्यता जैन बौद्ध आस्तिक सिख दार्शनिकों की है। इसका उच्चारण कर ले कम से कम, व्याख्यान तो कल हो पाएगा। अजन्मानो लोका किम वयवबन्तोऽपि जगता मधिष्ठातारं किं भव विधिरनादृत्य भवति अनीशो वा कुर्याद् भुवन जनने कपरिकरो यतो मन्दास्त्वं प्रत्यमरवर संशेरत इमे। वे कहते हैं कि अजन मानो लोका कीमा अवयवंत, अवयव मतलब परमाणुओं के अवयव से पुंज से बिना उत्पत्ति के ये जगत बना है, उनकी मान्यता है। जैसे कि हमारे शरीर का अवयव है हस्त पाद पायु पस्त अवयव से शरीर बना, ऐसे परमाणुओं के द्वारा उसके पुंज पृथ्वी है, वायु भी एक परमाणु का पुंज है, अग्नि भी परमाणु का पुंज है। जिस प्रकार से एक घड़ा जो है मिट्टी के पुंज से समूह से बनता है, इसी प्रकार से संसार भी परमाणुओं का अवयव का पुंज है, ऐसी उनकी मान्यता है। तो शंका करते हैं जगत्ताम अधिष्ठारा तारा किम, ये जो भव विधि है उत्पत्ति विधि, उस या उत्पत्ति विधि परमात्मा का तिरस्कार करके क्या संभव है? कहते संभव है। यह जो अनिष्ट जीवात्मा है यह भी क्या संसार को बना सकता है? तो कहते यह अनिष्ट जो जीवात्मा है सामर्थ्यहीन, यह भी संसार को नहीं बना सकता है। इस प्रकार से मन बुद्धि वाले तरह तरह की शंका करते हैं उस तत्व के ऊपर। अब कल विचार करेंगे, समय हो गया। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की।
1: ओम नमः शिवाय। Dear listeners of Shaivam.org Radio, the size of our audio collection continues to grow day by day. We now host more than 25,000 audio recordings. In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
2: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Atharvana Veda, Saunaka Shaka, Kandam 2, Sukta 17. Thank you.

0: Shivaya. You're listening to Shaivam.org Radios, 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: अविद्या जो हमारे लिए हानिकारक है, जो हमें दुख में ले जाने वाला, लेकिन उसमें हमारी प्रसन्नता है तो वो भी अविद्या हमें देती है। लेकिन विद्या क्या करेगी? विद्या उससे तुम्हें निवृत्त करेगी, विद्या वह देगी नहीं। ये दोनों में अंतर है। लेकिन संकेत कर दिया, ये तो विद्या विद्या का और जो है अंतर है। तो अविद्या तो इस प्रकार से करेगी, लेकिन जिसने विद्या विद्या को दोनों को जान लिया, क्या कर लिया? विद्या को भी जान लिया और अविद्या को भी जान लिया। और जो जानने वाला होगा तो वो क्या करेगा? यदि वो पुत्र जानने वाला हो, छोड़ो, वह पुत्र ये जान ले कि ये विद्या है, ये अविद्या है। और ये जब उसका ज्ञान हुआ तो कभी भी उसके अंदर ये नहीं आएगा कि मां हमारा अहित चाहेगी। और जब ये नहीं आएगा तो मां के द्वारा निषिद्ध किए हुए कार्य को अस्वीकार कर लेगा। ऐसे ही संसार के अंतर्गत भी यह जीव भी अविद्याकृत जितना भी कार्य है, प्रकृतिकृत जितना भी कार्य है, उस सारे कार्य को वह स्वीकार करता है। लेकिन जब वह समझ लेता है तो वह प्रकृति के सारे कार्यों को स्वीकार, उतने ही कार्य को स्वीकार करता है जो उसके लिए उपयोगी। और फिर कैसे करता है तो उसकी भी विशिष्टता वैशिष्टता है। वो वैशिष्टता क्या है? तब वो देखता है कि इस अविद्या और विद्या का भी एक आश्रय है। वो आश्रय क्या है? जिसके आश्रय ये विद्या है और अविद्या है, और उस आश्रय को लेकर के ही हमारी भी सत्ता है। पुत्र की सत्ता कब होगी? भाई पिता की भी सत्ता तो चाहिए है? आप गीता में पढ़ते तो रहते हो, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। जो प्रकृति जो है केवल कुछ करने में समर्थ नहीं, लेकिन कब करती है? करती सब प्रकृति, लेकिन कब करती है? तो उसे अध्यक्ष बनाकर। और अध्यक्ष का तो अर्थ ही है अधिकरण में रह करके जो दृष्टि वाला है उसे क्या कहते हैं? अध्यक्ष कहते हैं। तो अब जो है यहां पर कोई पिता है, इसके आश्रय को लेकर मेरी भी सत्ता है, और ये दोनों भी उसके आश्रित हैं। और जब ये उसे ज्ञान आएगा तब वो देखेगा कि यहां पर जो है विद्या हमारे लिए क्या करने वाली है और अविद्या क्या करने वाली। और ऐसा जब उसे ज्ञान होता है तो वो समझ लेता है कि अविद्या जो है वो हमारे हित का कार्य करने में समर्थ नहीं, वो तो हमारे में संवर्धन नहीं कर पाएगी, हमारे में विभाग ही करती जाएगी, हमारे में खंड करती जाएगी, हमारे खंड में नवीनता कभी ला सकेगी नहीं। ये नवीनता कब आएगी? तो कहने लगे ये नवीनता तो आएगी विद्या के द्वारा। नूतनता कब आएगी? स्वस्थता कब आएगी? अपने में स्थिति कब होगी? तो कहने लगे ये होगी विद्या के द्वारा। तो विद्या को अब जब जो है इस प्रकार से वो ग्रहण करेगा तब क्या करेगा? तब साथ में ये भी देखेगा कि ये विद्या भी आश्रित किसकी है, उस सत्ता को भी वह ध्यान में रखेगा। और जब उस सत्ता को ध्यान में रखेगा तब उसके अंतर्गत विचार क्या आएगा कि इस विद्या की भी सत्ता या इसकी भी क्रिया किसके ऊपर निर्भर है? तो कहा इस पिता के ऊपर। ऐसे ही संसार के अंतर्गत जितने भी आप पद पदार्थ स्वीकार करते हो, जितने भी खंड विभाग स्वीकार करते हो वो सारे कैसे हैं, तो आप क्या कहते हो? सारी सृष्टि पंच भौतिक है। सारी सृष्टि कैसी है? पंच भौतिक है। तो पंच भौतिक का मतलब पांच भूतों से निर्मित है। पांच भूतों से यदि सृष्टि निर्मित है, तो अब जो पांच भूतों की सृष्टि है और पांच भूतों में आप हो कि नहीं, विचार करना होगा। उन पांच भूतों के अंतर्गत मैं है कि नहीं, तो क्या कहोगे? पांच भूतों में ही मैं है, अभी मैं करके ही जानता हूं। क्योंकि अहंकार कहां से हुआ? आप प्रक्रिया जो पढ़ते हो तो अहंकार की सत्ता भी कहां से आई? आप प्रकृति अव्यक्त आदि क्रम से लेते हो, महत्व तत्व अहंतत्व इत्यादि करके और पंचभूत आदि स्थूल रूप से, पहले सूक्ष्म रूप से लेते, तो ये सब अहम भी क्या है? ये जो मेरा मैं है जिसे जागृत में आप पकड़े हो, विभाग करके खंड किए करके हो, तो वो क्या है? तो वो भी किसका कार्य? प्रकृति का कार्य। अब जब वो प्रकृति का कार्य है, तो प्रकृति के कार्य में वह मैं भी प्रकृति से बना, और मैं जिसको दृश्य बना रहा है वो किससे बना? मैं जिसे दृश्य बना रहा है, मैं दृष्टा बन रहा है जिस समय, उस समय दृष्टा बन रहा है, तो जिसे दृश्य बना रहा है वो दृश्य किससे बना? वो भी पंचभूतात्मक। हम इस पुष्प को देख रहे हैं तो पुष्प क्या है? पंचभूतात्मक। और हम भी क्या है? पंचभूतात्मक। तो ये कार्य किसका किसमें हो रहा? पंचभूतों का पंचभूतों में ही ये तो हो रहा। ये जब स्थिति देखते हैं तो ये सब की सब स्थिति है, लेकिन ये कब हो रहा है? तो इसमें मूल क्या कहा? का अध्यक्ष कौन है? किसकी सद? प्रकृति स्वतः तो कर नहीं सकती। तब प्रकृति किसके माध्यम से करती है? ये आश्रय किसका लिए हुए है? तो क्या कहोगे? कहा वही है परमात्मा। वो क्या है? परमात्मा। अब जो परमात्मा है या आत्मा है या ब्रह्म है या कोई भी सत्ता दे लो, ये भी नाम हम लोगों के दिए हुए, वास्तव में वो क्या है? कोई न कोई शक्ति, या उसी को कह दिया तुर्य। उसको क्या कह दिया? तुरीय है, माने वो पूर्ण है, बस ये कह दिया, माने पूर्ण है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन, परिवर्तन ये तीन अवस्थाओं तक है, उस अवस्था में जाकर के कोई परिवर्तन नहीं। ये विभाजन जो है, खंड जो है, इन तीन अवस्थाओं को लेकर के है, और इनमें विभेद भी है, लेकिन वहां पर जाकर के कोई भेद और कोई खंड नहीं, वो इसका आश्रय। अब जो इसका आश्रय है उसमें कोई विभाग संभव नहीं, कोई खंड संभव नहीं, लेकिन उसके आश्रय के बगैर ये भी खंड संभव नहीं, ये भी संकेत किया। और ये जब दृष्टि आ गई तो अब ये देखना होगा कि वो आश्रय है, तो आश्रय कभी भी आश्रित से पृथक नहीं होता। आश्रय कभी भी आश्रित से पृथक नहीं होता, ये नियम है। पृथ्वी क्या है? मूल रूप से हम लोग लें, जितने भी जीवधारी हैं, इनका आश्रय क्या है? पृथ्वी। तो क्या पृथ्वी को छोड़ के आप लोग रह सकते हो? जितने भी पार्थिव पदार्थ हैं, ये मान लो, वो पृथ्वी को छोड़ करके कभी रहे ही नहीं सकते। लेकिन वो पदार्थ न रहे तो पृथ्वी रहेगी कि नहीं रहेगी? पृथ्वी की सत्ता तो रहेगी। ऐसे ही जितने भी ये जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था है, ये संपूर्ण अवस्थाएं उसको छोड़ करके रहने में समर्थ, उसके आश्रय में ये रहने वाली हैं, और उसी के आश्रय में रह करके क्या हो रही? क्रियान्वित हो रही। जैसे ये पुष्प है, ये पुष्प में ये नवीनता, ये सौंदर्यता कब आई? तो क्या कहो? सीधे सीधे तो नहीं आ गई, उसके लिए भी प्रक्रिया। बीज का जो है पृथ्वी के अंतर्गत बपन किया गया, पौधा बना, फिर उस पौधे में क्रम से जो है पत्ते, टहनी और पुष्प आदि तब आए, तो ये कब आए, तो पानी भी इसे मिला, सूर्य का प्रकाश भी इसे मिला, जमीन से अंश भी मिला, और ये सब जो है तेज आदि सब इसको जब मिले तब जाकर के ये कहीं पुष्प रूप में निर्मित हुआ। और ये पुष्प होकर के भी और फिर जर जाएगा, फिर नहीं रहेगा, फिर परिवर्तन हो जाएगा। तो अब पुष्प जो है, तो इस पुष्प में जो भी ये पांच भूत हैं, उन पांचों भूतों की सत्ता, लेकिन वह सत्ता जो है वो कैसी है, परिवर्तनीय है। खंड से होकर के इसमें आई, लेकिन वो भी सत्ता कब आई इसमें, उसका भी मूल आश्रय क्या है, तो उसका प्रकृति का मूल आश्रय क्या कहा, आत्मा। आत्मा के बगैर ये जो है सब संभव, उस चेतना के बगैर, उस पूर्ण के बगैर ये सब संभव नहीं। तो संसार में जितनी भी अवस्थाएं हैं या जितने भी खंड हैं, उन खंडों में वह जिसे हम चेतन शक्ति कह देते, कहीं रूह कह देते, यदि उसका आश्रय न रहे तो क्या किसी पदार्थ की सत्ता हमें प्रतीत होगी, सत्ता प्रतीत नहीं। और सुसुप्ति में तो आप जान लेते हो कि इस अहम का भी अभाव हो जाता, इसलिए अहम कैसा हो गया, अहम एक वस्त्र की तरह हो गया, ऐसा मान लो हमने जागृत में वस्त्र धारण कर लिया और शाम को हमने वस्त्र को उतार दिया है? यही पंचदशी में जो है राज इत्यादि की भी चर्चा करते हैं, मुकुट आदि धारण करता फिर उतार दे, ऐसे ही अहम को हमने एक अवस्था विशेष में धारण किया और फिर उसको उतार भी दिया, लेकिन जिस समय उतारा उस समय कोई है कि नहीं, उस समय जो है उसी की दृष्टि है व्यापक। उसकी दृष्टि कैसी है, इसी को आप कहते हो है? कि दृष्टा जो है उसकी दृष्टि का परलोप नहीं होता, अन्य की दृष्टि का परलोप हो जाएगा लेकिन दृष्टा की दृष्टि का परलोप कभी नहीं होता। तो अब वो परलोप नहीं होता है तब कैसे समझा जाए, तो उसी के लिए गीता में आप पढ़ते भी हो है? पश्चन श्रवण हाँ, ये सब कुछ करते हुए भी और कुछ भी नहीं करता, ये बड़ी विलक्षण बात है। लेकिन कब, जिस समय इस आश्रय को अजान लेता, किसी को अन्यत्र भी कहा, सैव धन्य या आत्मज्ञ सर्वभावेशु समः, जो सर्वत्र उस आश्रय को देख लेता है, उस आत्म तत्व को देख लेता है, कहने लगे वो ही है सम, उसे क्या कहेंगे सम, उस मूल सत्ता को जो सर्वत्र देखने वाला है, तो कहने लगे जो सर्वत्र मूल सत्ता को देखने वाला है तो वो मूल सत्ता क्या है, इसी का नाम आत्मा कह दिया। क्यों, क्योंकि उसके अंदर व्यापकता, उसके अंदर कभी भी अभाव नहीं, वो अबाधित है। तो ऐसे सत्ता को देखने वाला जो है वही क्या है, कहा धन्य है, कहा धन्य है, क्यों है धन्य, कहा जब उसने ऐसी सत्ता को देख लिया और उसका निश्चय कर लिया, निश्चय को ध्यान रखना, और उसका जब उसे निश्चय हो जाता है तब वो क्या करता है, सर्वभावेशु क्षमा, संपूर्ण भावों में वह उसी मूल को देखता, तब विद्या में भी उसी को देख रहा है, अविद्या में भी, विद्या भी उसी के आश्रित है और अविद्या भी उसी के आश्रित है, उसके बगैर न विद्या हो सकती है न अविद्या हो। तो विद्या और अविद्या, संकल्प और विकल्प, निश्चय और अनिश्चय, ये भी सब कहां हैं, उसी एक ही सत्ता, उसका आश्रय वही। और ऐसा जिसने जान लिया वह आत्मज्ञा, ऐसा उस आत्म तत्व को जानने वाला, ऐसा आश्रय को जानने वाला, संपूर्ण भावों में क्या हो जाता है, सम्माने उसी आत्मा का निश्चय करने वाला हो जाता। और जो आत्मा का निश्चय करने वाला हो जाता है उसके लिए क्या होता, क्वेश्चन श्रवण स्पर्शन जिग्रन अस्नन निस्तर्ष मानसः, यह अन्यत्र का श्लोक, यह गीता का नहीं, दूसरे गीता का। तब क्या होता है, तो होता यह है, कहने लगे जब इस प्रकार से उसका उसे निश्चय हो गया, तब पश्यन माने देखता हुआ और नहीं देख रहा, और न देखता हुआ देख रहा, ये दोनों ही बातें दोनों तरफ से, देखता हुआ नहीं देख रहा और न देखता हुआ भी वह देखता, क्योंकि वो आश्रय रूप उसकी दृष्टि, लेकिन कैसे देखता है और सबका व्यवहार वाली बातों कह दिया तो संकेत आकर गया निस्तर्ष मानसः, क्योंकि अब उसके अंतःकरण में कोई भी एषणा कोई भी ईहा नहीं रही। और एषणा का ईहा का समापन कब होता है? जब तक खंड रहेगा तब तक ईहा रहेगी, जब तक द्वैत रहेगा तब तक ईहा रहेगी। द्वैत को लेकर के ही सत्यता और आवश्यकता, असक्तता आवश्यकता ये सब रहते हैं। और जहां द्वैत ही नहीं है तो वहां सत्यता तो है लेकिन आवश्यकता नहीं, क्यों? वहां न्यूनता ही नहीं। तो इस प्रकार से जहां न्यूनता की प्रतीति होती है, आवश्यकता की प्रतीति होती है, वहीं पर जो है ईहा आदि होती। लेकिन जब ऐसे आश्रय को, अखंड को जब उसने निश्चय कर लिया कि उसी आश्रय में ये सब कुछ है, तब जो है वो क्या देख रहा है? कहा अब उसके अंदर जो है जब वही सब कुछ है, उससे भिन्न कुछ नहीं है, अन्य तो परिधान किए हुए हैं, तो ऐसे अखंड में रहने वाला जो है फिर उसके अंदर कोई ईहा होती नहीं। और ये भाव जब आ जाएगा तब जो है जहां पर भी वह देखेगा तो मूल सत्ता का निश्चय जिसके जीवन में हो गया, तो चाहे वो शत्रु हो चाहे मित्र हो और चाहे वो हाथी हो चाहे गऊ हो, उसमें मूल देखेगा और सब क्या देखेगा? ये जो पुष्प है ये पुष्प कैसे हुआ? कहा उसी के माध्यम से हुआ, उसी की सत्ता को लेकर के हुआ। और ये पुष्प जो है पुष्प आकार तो है लेकिन नहीं भी रहेगा, ये भी निश्चय, लेकिन इसमें मूल सत्ता किसकी? ये निश्चय यदि उसको बना रहेगा तो उन पदार्थों में उस सत्ता को देखेगा, उनके रूप आदि को देख करके प्रसन्न भी होगा कि कितनी सुंदर उसकी कला है, तब उसके अंदर उसकी कला का। तो ऐसा निश्चय होना ये विद्यात्मक स्थिति, और इस विद्यात्मक स्थिति में वो जो है एक निश्चय पर होगा, निश्चय के समय उसे जो है इसी को जीवन मुक्ति कह देती। लेकिन जहां पर वह अधिष्ठान में अवस्थित हो गया, विद्या विद्या दोनों से रहित हो गया, उस समय क्या होता है? तो वो कैवल्य की स्थिति हो जाती, उसे क्या कह देते हैं? कैवल्य। तो इस प्रकार से अब जीवन के अंतर्गत यदि हम इसका ऐसा विवेक कर लेते हैं और विवेक करते हुए संसार के व्यवहार करते हैं तो हमारा है खंड, हमारा ये व्यवहार, ये तो खंड को लेकर के ही होगा, तो हमारा ये वर्ष भी कैसा होगा? खंड होते हुए भी यदि हमने ऐसा निश्चय कर लिया, ऐसा ज्ञान कर लिया, ऐसा ज्ञान करके हम वो जो है व्यवहारित होते हैं तो वो हमारे लिए दुखद नहीं, हमारे को सुख देने वाला होगा, हमारे अंदर नवीनता लाने वाला होगा। तो ये जब हमारे अंदर विचार आ जाता है तब तो बात बनती है, और ये विचार जब तक नहीं आता तो बात बनती। इसलिए भगवान शंकर के विषय में चर्चा आती, क्या थी? भगवान शंकर जो है जिस समय समाधि में बैठे हुए, आपकी सुसुप्ति उनकी समाधि ले लो, और समाधि में बैठे हुए तो क्या हुआ? देवताओं को जरूरत पड़ गई, इसलिए देवताओं ने जो है उनकी समाधि तोड़ने के लिए है प्रयास किया, साधना आदि इत्यादि करके सबको आगे करके। अब जब प्रयास किया तो वहां भगवान समान की समाधि जब टूटी, जैसे भी वो पूरी कथा नहीं, और जब टूटी तो क्या स्थिति थी? तो वहां एक बड़ा सुंदर कवि ने लिखा, एकम योग समाधिना मुकलितम नेत्रम द्वितीयम पुनः, संकेत किया, एकम योग समाधिना मुकलितम, मुकलित होना माने अभी पुष्प पूरा खुला नहीं, अध खुला, ठीक है ना? तो उसे क्या कहते हो? मुकलित। उसे क्या कहते हो? मुकलित, माने कली अभी मुकलित हुई, अभी खिली नहीं, खिली तो पुष्प हो गई, तो मुकलित। तो वैसे ही भगवान की जब समाधि टूटी और तुड़वाई जब, तो क्या हुआ भगवान शिव का? कहने लगे एकम योग समाधिना मुकलितम, उस योग समाधि से भगवान का एक नेत्र मुकलित हुआ। और मुकलित हुआ का मतलब मैंने भी पूरा खुला नहीं। आप भी जब नींद में होते हो और कोई जगा देता है तो प्रारंभ में जो है पूरे नेत्र खुलते, क्योंकि वह नींद की खुमारी चढ़ी रहती। ऐसे ही भगवान जिस समाधि में थे और जिस अवस्था में थे, उस अवस्था की खुमारी उनमें थी, उनका नेत्र खुला तो लेकिन पूरा। और फिर कहने लगे नेत्रम द्वितीयम पुनः, दूसरा नेत्र खुला। तीन नेत्रों की कल्पना की गई उनकी है, त्र्यंबकम यजाम, इसलिए उन्हें त्र्यंबक भी कहा गया। अब जो है दूसरा नेत्र खुला तो कहने लगे श्रृंगार भारा लशक, दूसरा नेत्र खुला तो भगवान की दृष्टि कहीं अन्यत्र नहीं गई, देवताओं पर नहीं गई, अन्यत्र नहीं गई, कहां गई तो पार्वत्या, पार्वती के श्रृंगार को देखने लगे। क्या मतलब, पार्वती क्या प्रकृति? एक नेत्र खुला होता है तो कहने लगे भगवान जो है अपनी उस समाधि की खुमारी में ही, अभी जो है इधर उधर कहीं संकल्प विकल्प नहीं। लेकिन जैसे ही दूसरा नेत्र खुला तो अन्यत्र नहीं देख रहे, उस प्रकृति के श्रृंगार को देख रहे, प्रकृति के सौंदर्य को देख रहे। और प्रकृति क्या है? प्रकृति भी कोई दूसरी चीज नहीं,